सुप्रभात, आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 11वीं तिथि, तदनुसार 1 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

0: पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 18 तारीख को होगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंदतेग चेगलिंग मठ में अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुक की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है ज्ञान ज्योति। ज्ञान वह प्रकाश है जो ज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। जिस प्रकार अमृत जीवन को अमरता प्रदान करता है, उसी प्रकार ज्ञान हमारे जीवन को सफलता, संस्कार और सही दिशा प्रदान करता है। इसलिए इसे जीवन का सबसे बड़ा धन कहा गया है। विद्या है हमें केवल पढ़ना लिखना ही नहीं सिखाती, बल्कि अच्छे बुरे में अंतर करना भी सिखाती है। ज्ञान के बल पर ही मनुष्य नई खोजें करता है, समाज को आगे बढ़ाता है और अपने सपनों को साकार करता है। तो आइए हम सभी ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ उसे अच्छे कार्यों में भी लगाएं, ताकि हमारा जीवन और समाज दोनों बेहतर बन सके। ज्ञान ज्योति। श्रोताबली जी प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। आइए प्रभु मनन करें, प्रभु चिंतन करें और दिन की शुरुआत करें ईश्वर वंदन से। कहते हैं किसी भी कार्य की शुरुआत यदि ईश्वर वंदन से हो, गणपति वंदन से हो, तो निश्चित ही वो कार्य सफल होता है। तो इसी सफलता की कामना के साथ आइए करते हैं वंदना कार्यक्रम की शुरुआत।

प्रभु का नाम एक ऐसी शक्ति है जो दूसरों के दुखों को समझती है, दुखों को सहने का साहस और सुखों में विनम्र बने रहने की प्रेरणा देती है। मनुष्य स्वयं को असहाय महसूस करता है तो ईश्वर का स्मरण उसे नई आशा देता है।

ईश्वर पर विश्वास वो शक्ति है जो अंधकार में भी प्रकाश की किरण दिखाती है। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग सच्चा प्रेम और सेवा है। जहाँ विश्वास है वहाँ ईश्वर का वास है। और वैसे भी प्रभु का नाम जीवन की हर कठिनाई को सरल बना देता है।

एक छोटी सी बात में जीवन का एक गहरा सत्य छिपा है। जहाँ करुणा है वहाँ प्रेम है, जहाँ सेवा है वहीं भगवान है। प्रभु केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि हर जीव में विद्यमान है। सत्य बोलना, माता पिता का सम्मान करना, जरूरतमंदों की सहायता करना और अपने कर्तव्यों का पालन करना प्रभु भक्ति का सबसे पहला पाठ यही है।

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य तनाव और चिंताओं से घिरा है। ऐसे में प्रभु का स्मरण मन को शांति देता है। यदि हम हर परिस्थिति में प्रभु को याद रखें तो जीवन में संतुलन बना रहेगा हमेशा।

प्रभु की महिमा अपरंपार है, वही तो जीवन का आधार है। दुख में सहारा बन जाता है और सुख में विनम्रता सिखलाता है, हमें सच्ची भक्ति सिखाता है।

आप सुन रहे हैं वंदना आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब सुनें श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ करते हुए संत गुरु तथा देव समाज की वंदना के साथ गोस्वामी तुलसीदास ने उसी विनीत भाव से खल वंदना भी की है। उन्होंने दुष्टजन को विनम्र प्रणाम किया है जो बिना प्रयोजन ही हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, जिनको दूसरे के उजड़ने से हर्ष तथा बसने से विषाद होता है। दुष्टों की ये रीति है कि वे शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर ईर्ष्या की आग में जल उठते हैं, किंतु संतों और दुष्ट जन में एक लक्षण समान होता है। जहां संत जन का विछोह प्राण हर लेने वाला होता है, वहां असज्जन का मिलना दारुण दुख देने वाला होता है। गोस्वामी तुलसीदास ने खल वंदना तो की है, किंतु अत्यंत प्यार से पाले जाने पर भी क्या कौवे मांस खाना छोड़ देते हैं?

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। संगीत सतीश भाटिया का था। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले किए जाने वाले आज की सभा के शेष कार्यक्रमों का विवरण। अब से बस थोड़ी ही देर में यानी 6:55 पर संस्कृत समाचार और 7:00 हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 7:05 पर समय रहेगा हमारे दैनिक कार्यक्रम का। कार्यक्रम रहेगा सुप्रभात हमीरपुर। 8:00 समाचार प्रभात का अंक और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएंगी। और 8:30 पर आप सुनेंगे हिमाचल डायरी का आज का अंक। 8:35 से हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्र प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। और 8:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम कानून की बात। 9:20 पर प्रादेशिक समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। और 9:30 से सुबह 10:00 तक हमारे केंद्र से आप सुन सकते हैं विविध भारती राष्ट्र प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। सुबह 10:00 हिंदी समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। 10:05 पर सुनिएगा लघु वार्ता। कुछ तुम चलो कुछ हम चले ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे 10:15 पर। कार्यक्रम लोक रंग का समय रहेगा 10:45। 11:00 प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। और 11:05 से दोपहर 12:00 तक हमारे केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्र प्रसारण सेवा। दोपहर 12:00 सुनिएगा कार्यक्रम वनिता मंडल। और रोजाना दोपहर 12:30 से आप सुनते हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए। दिन के 1:00 से लेकर शाम 5:00 तक हमारे केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्र प्रसारण सेवा। इन कार्यक्रमों के दौरान 2:00 मिड डे न्यूज़ और 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। और 3:00 प्रादेशिक समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। शाम 5:00 हिंदी समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

पाँच बजे से आप सुनेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में पद्म पुरस्कार 2026 का सजीव प्रसारण, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। युवा साथियों के लिए युवा मंच कार्यक्रम सुनेगा 5:30 पर। प्रादेशिक समाचार 6:00 आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। सफर सुहाने, गाने नए पुराने, कार्यक्रम सुनेगा 6:05 पर। 6:30 पर समय रहेगा कार्यक्रम खेती बाड़ी का। 7:00 हिंदी समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के शिमला दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। और 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम भक्ति संगीत, रौनका गराए दिया, ये कार्यक्रम सुनेगा 7:25 पर। 7:45 पर हमारे केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। 8 बजे सुनिएगा कार्यक्रम फिल्म संगीत, समाचार संध्या का अंक 8:45 पर, और 9 बजे न्यूज़ एट 9 अंग्रेजी समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे, और 9:15 से 10 बजे तक हमारे केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय प्रसारण सेवा। रात्रि 10 बजे सुनिए सुर संगम और चांदनी रातें 10:30 पर। यह था कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM 101.8 MHz पर। 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिना यू मिन आंग लाइंग इत्यनेन सह चर्चां करिष्यति। उभयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकानां सभ्यतानां च संबंधान इतोपि सुदृढीकरणाय वार्तालापः भविष्यति। वार्तालापावधौ म्यांमार भारतयोः मध्ये सुरक्षा संपर्कौ च समेत्य संपूर्णेषु विभिन्नेषु विषयेषु चर्चाः भविष्यन्ति। राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदः अजीत डोभालः गतरात्रौ दिल्ल्याम् अतिथिगणमान्यैः सह मेलनं विहितवान्। अवधेयं यत् म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः शनिवासरे भारतस्य 5 दिवसीय यात्रायां बिहारस्य गयानगरं सम्प्राप्तवान् आसीत्। म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतेः भारतस्य आधिकारिक यात्रायाः कारणात् उभयोः देशयोः मध्ये बहुपक्षीय सम्बन्धः इतोपि सुदृढः भविष्यति इत्यपेक्षास्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रकृतिसंरक्षणे, स्थानीयसमाह्वानानां निराकरणे, अन्यसामाजिककार्येषु च तेषां प्रेरक उपक्रमाणाम् उपलब्धीनां च विषये अनेकेषां नागरिकाणाम् उत्कृष्टयोगदानाय प्रशंसा कृता। आकाशवाण्याः स्वकीये मासिक कार्यक्रमे मन की बात इत्यनेन कार्यक्रमेण राष्ट्रम् अभिसंबोधयन् श्रीमोदी झारखण्ड राज्यस्य रांचीनगरे आयोजिते राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धायां उदयोन्मुख क्रीडकानां उत्कृष्ट प्रदर्शनस्य प्रशंसाम् अकरोत्। प्रवर्तमानायाः उष्णतरङ्गस्य स्थितिं प्रति चिन्तां प्रकटयन् प्रधानमन्त्रिणा जनान् अधिकृतान् उपदेशान् अनुसृत्य सुरक्षितं स्थातुं पूर्वसूचनानुसारं कार्यं च कर्तुम् उद्बुद्धवान्।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: पश्चिम बंगाल राज्यस्य मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अद्य स्वमंत्रिमंडलस्य विस्तारं करिष्यति। 35 नूतनाः मंत्रिणः मंत्रिमंडले समाविष्टाः भविष्यन्ति। शपथ ग्रहणं प्रातः 11 लोकभवने भविष्यति। नूतनेन समावेशेन शुभेंदु प्रशासने महत्वपूर्णरूपेण संवर्धनं भविष्यति, येन मई मासस्य 9 दिनांके पञ्चमन्त्रिभिः सह कार्यभारं स्वीकृतमासीत्। अनेन विस्तारेण राज्यमन्त्रिमण्डलस्य मन्त्रिणां कुलसंख्या 41 यावत् वर्धिता भविष्यति। निर्वाचनायोगेन 10 राज्याणां 24 राज्यसभासदस्यानां द्विवार्षिक निर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य घोषणा अद्य क्रियते। भूतपूर्वः प्रधानमन्त्री HD देवगौड़ा, केन्द्रीयमन्त्रिणौ जॉर्ज कुरियन तथा रवनीत सिंहश्च तेषु सदस्येषु अन्तर्भवन्ति। आन्ध्रप्रदेशे, गुजराते तथा कर्णाटके प्रत्येकस्मिन् राज्ये 44 आसनानि सन्ति। राजस्थाने तथा मध्यप्रदेशे प्रत्येकस्मिन् राज्ये 3 आसनानि सन्ति। झारखण्डे 2 आसने स्थः, मणिपुरे, मेघालये, अरुणाचलप्रदेशे च, मिजोरमे च प्रत्येकस्मिन् राज्ये 1 आसनं रिक्तमस्ति। आयोगस्यानुसारं जून मासस्य 18 मतदानं भविष्यति। मतगणना अपि तस्मिन्नेव दिने भविष्यति। महाराष्ट्रस्य, तमिलनाडुराज्यस्य, ओडिशाराज्यस्य च प्रत्येकस्य 1 आसनस्य कृते राज्यसभायाः उपनिर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य अपि आयोगेन घोषणा क्रियते। एतन्निर्वाचनमपि अग्रिममासस्य 18 भविष्यति। एकोननवति वर्षीया प्रख्यात गायिकायाः सुमन कल्याणपुरस्य मुंबई नगरे स्वनिवासस्थाने मृत्युः अभवत्। 50-29 शततमाद् वर्षात् 70-29 शततमं वर्षं यावत् चलचित्र संगीतस्य स्वर्णयुगे नैकासु भारतीय भाषासु कृत कार्याणां कृते एषा वयोवृद्ध गायिका प्रसिद्धा आसीत्। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे अन्तिमस्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलं 5 स्तोभैः पराजित्य गतविजेतृदलेन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्यनेन अस्य वर्षस्य श्रृंखलापि विजिता इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। सुमन 1950 से 1970 के दशक के फिल्मी संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में मधुर गायकी के लिए लोकप्रिय रहीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनीत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंधन तेगचिनलिंग मठ में अहर्त सारिपुत्र और अहर्त महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोदसुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के मोगली वेंकटरामन ने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। ये इस वर्ष की प्रतियोगिता में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। रिले स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। भूमिका, ताहुरा, सेहनूर और नीरू की महिला टीम ने 4x400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय टीम ने 3 मिनट 38.07 सेकंड के समय के साथ चैंपियनशिप का रिकॉर्ड भी बनाया। काजल, भावना, आरती और निपम ने 4x100 मीटर में 45.05 सेकंड के समय के साथ रजत पदक जीता। पीयूष राज, सैयद सबीर, रंजीत कुमार और मोहम्मद अशफाक की पुरुष टीम ने 4x400 मीटर में कांस्य पदक हासिल किया। ये चैंपियनशिप विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइंग इवेंट है। विश्व चैंपियनशिप 5-9 अगस्त तक अमरीका के ओरेगन में यूजीन में आयोजित होगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीता। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली ने नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। एफएम बैंड 101.8 MHz पर 7:05 हुए हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर।

सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को मधु का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, घड़ी खम्मा, दुआ वणकम, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दोस्तों, आप सभी के रेडियो सेट्स पर हम आ पहुंचे हैं। दस्तक दे चुका है कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर। कहते हैं कि एक अच्छा विचार जो होता है वो अच्छा दिन बना देता है, और अच्छा दिन यानी कि अच्छा मूड। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के करते हैं आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत। जिंदगी दरिया की तरह तेरा चलना तय था, चंद मुसाफिरों का रास्ते में मिलना तय था। इन आंखों में ठहरे हैं गिनती की कुछ मंजर, गाड़ी का तो हर मंजर से गुजरना तय था। जिसकी शाखों को फूलों ने नवाजा हो कभी, उस शजर का तो आंधियों में हिलना तय था। बहुत लोगों को दिखाया हो रास्ता जिसने, उस एक लौ का शहर तक जलना तय था। वक्त की तितली को मुट्ठी में पकड़ने के लिए उम्र का चलते चलते राह में फिसलना तय था। हुई तसल्ली जो कर ली हमने मर्जी दिल की, हुआ वही है जो दिल को पहले से होना तय था। न बद्दुआ न रंजिश उस शख्स के लिए जो किया है उसने, उसका करना तय था। जी हाँ दोस्तों, जो कुछ होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है। हमारे हाथ में तो सिर्फ और सिर्फ है संघर्ष, स्ट्रगल। तो बिल्कुल ये जो रिमोट है ये हमें बिल्कुल अपने हाथ में रखना है। वजूद में जब तक तेरे संघर्ष करने की जिद जिंदा है, तब तक तू कभी ना परास्त होने वाला जिद्दी परिंदा है। जी हाँ दोस्तों, तो बिल्कुल ये बात हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि बहुत सी चीज़ें हैं जो पहले से तय है, लेकिन जो हमारे हाथ में है वो है हमारी आस्था, हमारा विश्वास और हमारी मेहनत। क्योंकि वो जो इतना दूर तक लाया है हमें, हारने के लिए तो बिल्कुल नहीं लाया।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: है तो टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: आप इस वक्त जुड़े हैं FM हमीरपुर के साथ आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर और प्रोग्राम है सुप्रभात हमीरपुर। तो चलिए अब चलते हैं फ्लैशबैक में और जानते हैं क्या हुआ था। आज के दिन खास बता रहे हैं आपको आज का इतिहास।

दोस्तों, आज चेक गणराज्य प्रकाश प्रदूषण रोकने के लिए कानून बनाने वाला पहला देश बना था आज के दिन, जहां रोशनी को ऊपर फैलने से रोकने वाले कवच अनिवार्य किए गए थे। 1929 की अगर हम बात करें, भारतीय फिल्म अभिनेत्री नरगिस का जन्म कोलकाता में हुआ था आज ही के दिन। 1967 में बिटल्स ने सार्जेंट पेपर्स लोनली हॉट्स क्लब बैंड एल्बम रिलीज किया था आज ही के दिन। 1996 में HD देवगौड़ा देश के 11वें प्रधानमंत्री बने थे आज ही के दिन, यानी 1 जून को। और बॉलीवुड के लोकप्रिय संगीतकार वाजिद खान का निधन हुआ था 2020 में आज ही के दिन। भारत एवं इसराइल के बीच हवाई समझौता हुआ था 1992 में आज ही के दिन। ९९ में मध्य चीन के हुबी प्रांत में 770 से 256 ईसा पूर्व के 300 प्राचीन कब्रों की खोज और हवाई विश्वविद्यालय में नर चूहे का प्रतिरूप विकसित किया गया था आज ही के दिन। और आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ था 2008 में। अमेरिका राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बराक ओबामा ने शिकागो के ट्रिनिटी यूनाइटेड चर्च की सदस्यता इस्तीफा दे दिया था 2008 में आज ही के दिन। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त हुए बालकृष्णन को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वे मानवाधिकार आयोग के पहले दलित अध्यक्ष थे। आयोग के अध्यक्ष का पद पिछले एक वर्ष से रिक्त था।

0: 1996 में नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे प्रधानमंत्री, जिनका निधन हुआ आज ही के दिन 1 जून 1996 में। और बालराम नंदा, नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय के संस्थापक निदेशक एवं महात्मा गांधी पर कई किताबें लिख चुके इतिहासकार थे, जिनका निधन हुआ 2010 में आज ही के दिन। और आज है अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस और विश्व दुग्ध दिवस, जिसके बारे में हम हमारे अगले सेगमेंट में विस्तार से बातचीत करेंगे। फिलहाल यहाँ पर लेते हैं म्यूजिकल कम कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद लौट कर आते हैं आप सभी के रेडियो सेट्स पर। बने रहिए एफएम हमीरपुर के साथ आपकी अपनी फ्रिक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
5: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

जी बिल्कुल दोस्तों, हमारे सभी दोस्तों को हमारी उम्र लग जाए, क्योंकि हमारा और आपका रिश्ता है बेहद मजबूती का रिश्ता, सच्ची दोस्ती का रिश्ता, और इसीलिए आप और हम आपका साथ निभाते हैं हमेशा हमेशा। FM हमीरपुर है आपके साथ और इसकी डोर है 101.8 MHz। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। आपको बताना चाहेंगे आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। जी हाँ, रूस में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार सन 1949 में मनाया गया था और इसका निर्णय मास्को में अंतर्राष्ट्रीय महिला लोकतांत्रिक संघ की एक विशेष बैठक में किया गया था। बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना इस दिन का मुख्य उद्देश्य माना गया और इसीलिए हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस 1 जून को सालाना। दोस्तों, ये दिवस सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है जो 1950 से मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना और आज ही के दिन अनाथ, विकलांग और गरीब बच्चों की समस्याओं की ओर विशेष रूप से लोगों का ध्यान खींचा जाता है। बच्चों को तोहफे दिए जाते हैं और उनके लिए विशेष समारोहों का आयोजन किया जाता है। उसकी राजधानी मॉस्को में इस दिन भांति भांति की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं जिसमें बच्चों को पुरस्कार बांटे जाते हैं। नृत्य संगीत कार्यक्रम भी होते हैं और साथ ही विभिन्न प्रदर्शनियां तथा ज्ञानवर्धक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। 2007 से अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पर क्रेमलिन के महागिरजा चौक पर मॉस्को के स्कूल छात्रों के लिए घुड़सवार और पैदल प्रहरियों की ड्यूटी बदलने की समारोह परेड भी होती है जिसमें राष्ट्रपति रेजिमेंट के सैनिक भाग लेते हैं। और बात करें 2013 की तो इसमें क्रेमलिन अश्वारोहण विद्यालय के किशोर छात्रों ने भी इस समारोह में भाग लिया था।

और 200 आज मना रहे हैं विश्व दुग्ध दिवस। पूरे विश्व में मनाया जाता है और इस दिवस के पूरे उत्सव के दौरान दूध को एक वैश्विक भोजन के रूप में केंद्रित किया गया है, जिसे हम मनाते हैं 1 जून को ही। और दूध के संबंध में ध्यान आकर्षित करना एवं दूध उद्योग से जुड़ी गतिविधियों के प्रचार प्रसार के लिए अवसर प्रदान करना इसका उद्देश्य है। विभिन्न उपभोक्ताओं और दूध उपयोग के कर्मचारियों के भाग लेने के द्वारा कई देशों मलेशिया, कोलंबिया, रोमानिया, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, इन सब देशों में इसे मनाने की शुरुआत की गई थी। संपूर्ण विश्व में 1 जून को हम इस दिवस को मनाते हैं। इस उत्सव में वर्ष दर वर्ष भाग लेने वाले देशों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। पूरे विश्व भर में दूध और दुग्ध उद्योग से संबंधित क्रियाकलापों को प्रचार प्रसार में हर वर्ष ध्यान केंद्रित करने के लिए इसे मनाते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्सव संबंधित क्रियाकलापों की आयोजित करने के द्वारा इस उत्सव का राष्ट्रीयकरण भी किया जाता है।

0: हम मनाते हैं। प्राकृतिक दूध के सभी पहलुओं के बारे में आम जनता की जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे हम मनाते हैं। इसकी स्वाभाविक उत्पत्ति, दूध का पोषण संबंधी महत्व और विभिन्न दूध उत्पाद सहित पूरे विश्व भर में इसका आर्थिक महत्व, विभिन्न उपभोक्ताओं और दूध उद्योग के कर्मचारियों के भाग लेने के द्वारा कई देशों में इसे मनाने की जो शुरुआत है वो की गई थी, क्योंकि इसकी अपनी महत्ता है, ताकि इसे वैश्विक भोजन के रूप में केंद्रित किया जा सके। ऑनलाइन अपने वेबसाइट पर अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ के द्वारा ढेर सारे विज्ञापन संबंधी क्रियाकलाप, एक स्वस्थ और नियंत्रित भोजन के रूप में दूध के महत्व को बताना और पूरे दिन प्रचार संबंधी गतिविधियों के द्वारा आम लोगों के लिए दूध के महत्व को के संदेश को फैलाने के लिए एक साथ काम करने के लिए इसे उत्सव की तरह मनाया जाता है। और स्वास्थ्य संस्थाओं से विभिन्न सदस्य जो हैं वो भाग लेते हैं, ताकि लोगों को इसके महत्व के बारे में पता चल सके कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। दूध की सच्चाई को उनको समझाने के लिए विश्व दुग्ध दिवस उत्सव बड़ी जनसंख्या पर असर डालता है। दूध शरीर के द्वारा ज़रूरी सभी पोषक तत्वों का एक बहुत बड़ा स्रोत है दोस्तों, जिसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक, फॉस्फोरस, आयोडीन, आयरन, पोटेशियम, फोलेटस, विटामिन ए, डी और राइबोफ्लेविन, विटामिन B12, प्रोटीन, स्वस्थ फैट सभी मौजूद हैं। ये बहुत ही ऊर्जा युक्त आहार होता है जो शरीर को तुरंत ऊर्जा उपलब्ध कराता है, क्योंकि इसमें उच्च गुणवत्ता के प्रोटीन सहित आवश्यक गैर आवश्यक अमीनो एसिड और फैटी एसिड मौजूद रहते हैं। क्योंकि एक महत्वपूर्ण आहार है, इसलिए सभी को इसे रोज लेना चाहिए। इसके महत्व के बारे में आम लोगों के बीच विश्व दुग्ध दिवस उत्सव एक असरदार क्रांति लेकर के आया। नियंत्रित आहार में दूध को जोड़ने के बारे में नए संदेश को प्राप्त करने के लिए पूरे विश्व भर में हरेक के लिए हर वर्ष विश्व दुग्ध दिवस उत्सव के रूप में एक संपूर्ण मौका लेकर के आता है। कई सारे प्रचारात्मक गतिविधियों के द्वारा लोगों के बीच संदेश को भेजने के लिए, एक साथ काम करने द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघ के सदस्यों के द्वारा इसे मनाया जाता है, ताकि नियमित आधार के रूप में दूध और डेयरी उत्पादों के उपभोग के बारे में आम लोगों को बढ़ावा देने के लिए 2001 में संयुक्त राष्ट्र आहार और कृषि संगठन के द्वारा इस दिवस उत्सव की शुरुआत की गई थी। और पूरे विश्व भर में कई देशों में इस कार्यक्रम के द्वारा दूध के सभी पहलुओं को वार्षिक तौर पर मनाया गया। ज़्यादा प्रभाव लाने के लिए इसे उत्सव में भाग लेने के लिए देशों की संख्या हर वर्ष बढ़ती गई और दूध स्वास्थ्य और पोषण संबंधी फायदों के प्रचार के लिए बाजार आदि को लक्ष्य बनाने के लिए भी संप्रेषण कार्यक्रम जो हैं वो केंद्रित किए गए। और इनकी जो विशिष्ट थीम जो है वो है इस दिवस की, ताजा दूध पिएं, शरीर फिट रहे, दिमाग तेज, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के समृद्ध और स्वस्थ के लिए दूध। विश्व दुग्ध दिवस 2014 की थीम थी मानव के लिए पहला भोजन दूध है और विश्व स्तरीय पोषण। तो दोस्तों बिल्कुल ये एक बहुत महत्वपूर्ण आहार है, जिसे हमारे जीवन में रोजाना हमें इसे शामिल करना चाहिए। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तो चलिए, ये तो बात थी हमारे स्वास्थ्य की। और अब हम लेते हैं एक कमर्शियल कम म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद लौट कर आते हैं आप सभी के रेडियो सेट्स पर। बने रहिए FM हमीरपुर के साथ आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम
2: और ये
3: मेरी गुड़िया के नाम।
4: पर दादी
0: हाँ
4: आपके नाम?
5: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो
4: क्या
5: आरबीआई कहता है।
6: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
7: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुप्रभात हमीरपुर आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब चलते हैं विज्ञान जगत की ओर। दुनिया में भारतीय वॉर मशीनरी का जलवा। आकाश एक एस सिस्टम। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस, आकाश, लॉयटरिंग म्यूशन और नेत्र जैसे भारतीय हथियारों के असरदार इस्तेमाल के बाद दुनिया में इनकी मांग जो है वो तेजी से बढ़ रही है। इन चार स्वदेशी प्रणालियों को लेकर कई देशों ने खरीद में रुचि भी दिखाई है, जबकि कुछ के साथ हजारों करोड़ रुपए के सौदे भी हो चुके हैं और इसकी कुल अनुमानित मूल्य जो है वो 21,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड जो है वो 38,424 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो पिछले साल से 62% ज्यादा है। ब्रह्मोस के लिए फिलीपींस, वियतनाम और दो अन्य देशों ने करीब 12,500 करोड़ रुपए के सौदे हो चुके हैं और इंडोनेशिया के साथ लगभग 3600 करोड़ रुपए की डील अंतिम मंजूरी के चरण में है। आकाश मिसाइल सिस्टम के लिए आर्मेनिया ने 6,100 करोड़ रुपए का अनुबंध पहले ही हो चुका है और फिलीपींस और यूएई ने भी खरीद में

रुचि दिखाई है। लॉयटरिंग, म्यूनिशन और नेत्र एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम को लेकर के साइप्रस, इंडोनेशिया और दक्षिण अमेरिका के कुछ देशों ने दिलचस्पी दिखाई है और हाल ही में आर्मेनिया में सालाना परेड में भी भारतीय हथियार दिखे हैं। भारत अब 100 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात करता है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया प्रमुख हैं। अमेरिका सबसे बड़ा खरीदार है, जहां 2.8 अरब डॉलर के प्रणाली व कलपुर्जे, बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जैसी बड़ी कंपनियों को जाते हैं। आर्मेनिया जैसे देश पूरे हथियार, तैयार हथियार खरीद रहे हैं, यानी कि 2016 से 17 में ये मात्र 1,522 करोड़ रुपए था। एक दशक से कम समय में इसमें 25 गुना से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद मिले वैश्विक ध्यान से इस लक्ष्य को और तेज गति देने के संकेत मिले हैं।

की सूचना देना। ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हमारे रिफंड को अटका सकती हैं, इसलिए इनका विशेष ध्यान रखें।

दुनिया भर में जेंजी स्किन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की चेतावनियों को लगातार नजरअंदाज कर रही है। त्वचा रोग विशेषज्ञ के मुताबिक सेहत, नींद और एक्सरसाइज को प्राथमिकता देने वाली ये पीढ़ी टैनिंग बेड और तेज धूप से जानबूझकर टैनिंग हो रही है। सोशल मीडिया पर वायरल भ्रामक दावे और टैनफ्लुएंसर्स का असर इतना है कि कई युवा वैज्ञानिक चेतावनियों को मजाक भी समझ रहे हैं।

दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे रोबोटिक्स मार्केट के बीच चीन ने अनोखा कदम उठाया है। चीन सरकार अब देश में बनने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट, इंसानों जैसे दिखने और दो पैरों पर चलने वाले रोबोट को यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी कोड देने जा रही है, ठीक वैसे ही जैसे भारत में नागरिकों के लिए आधार या चीन में नेशनल आईडी होती है। तो रोबोट्स को डिजिटल आईडी देने की क्या जरूरत है? चीनी उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी के अनुसार इस मुहिम में ह्यूमनॉइड फुल लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सर्विस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य रोबोट की सुरक्षा और जोखिमों पर नजर रखना है। रोबोट के बनने से लेकर के उसके रिसाइकिल होने तक की पूरी ट्रैकिंग इस आईडी से होगी। अगर कोई रोबोट गड़बड़ी करता है तो कंपनी को आसानी से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार का मकसद इस तेजी से बढ़ती तकनीक को नियमों के दायरे में लाना और सुरक्षा मानकों को सुधारना है। और वजह, चीन में हर साल हजारों की संख्या में ह्यूमनॉइड रोबोट बन रहे हैं। 200 से अधिक मॉडल्स के 28,000 रोबोट्स को ये आईडी पहले ही दी जा चुकी है और ये डिजिटल कोड कुल 29 अंकों का होगा जो चार हिस्सों में बटा है। शुरुआती दो अंक देश का कोड अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट के लिए और अगले चार अंक रोबोट बनाने वाली कंपनी के कोड होंगे। हरियाणा के महाप्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मसालों की चार उन्नत किस्में तैयार की हैं। दावा है कि इन नई किस्मों में औषधीय गुण और वाष्पशील तेल की मात्रा पहले से दोगुनी है, जिससे पेट दर्द, शुगर मरीजों को राहत मिलने के साथ इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद मिलेगी। और दोस्तों, ये खबरों का सिलसिला जो है ये जारी रहेगा। हमारे अगले सेगमेंट में भी यहाँ पर ले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद लौट कर आते हैं आप सभी के रेडियो सेट्स पर। बने रहिए एफएम हमीरपुर के साथ, आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: और दोस्तों, बिल्कुल आप इस वक्त सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर, आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। भारत और ओमान के बीच वृहद आर्थिक साझेदारी समझौता 1 जून यानी कि आज लागू होने जा रहा है। ईरान संकट के बीच इस समझौते से भारत के लिए एक और शुल्क मुक्त बाजार खुल जाएगा। इससे न सिर्फ भारतीय वस्तुओं और सेवाओं को ओमान के बाजार में अधिक अवसर मिलेंगे, बल्कि दोनों देशों के व्यापारिक संबंध और मजबूत होंगे एवं द्विपक्षीय कारोबार 10.61 अरब डॉलर से बढ़कर 2 गुना होने की उम्मीद है। भारत से जाने वाली प्राकृतिक शहद, काजू, आलू, बिना हड्डी वाले मांस और बेकरी उत्पादों को ओमान में शुल्क मुक्त प्रवेश मिलेगा। ओमान कई खाद्य उत्पादों पर भी आयात शुल्क खत्म करेगा जो अभी 5 से 100% तक है। इसमें चीज, दही, दूध एवं क्रीम, फ्रोजन मछली, मक्खन, मांस, ब्रेड, पेस्ट्री, केक, चॉकलेट और शुगर शामिल है। इस समझौते से इंजीनियरिंग वस्तुएं, दवाएं, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, समुद्री उत्पाद, वस्त्र, खनिज, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, प्लास्टिक, रबर, परिवहन, घड़ियां, रत्न आभूषण और कागज जैसे क्षेत्रों में निर्यात के लिए नए अवसर पैदा होंगे। भारत और अमेरिका के मुख्य वार्ताकार द्विपक्षीय व्यापार समझौते के विवरण को अंतिम रूप देने के लिए आज नई दिल्ली में 4 दिवसीय वार्ता शुरू करेंगे। इस समझौते के प्रारूप पर फरवरी में सहमति बनी थी। अमेरिकी दल का नेतृत्व मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच करेंगे, जबकि भारतीय दल की कमान वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव दर्पण जैन संभालने वाले हैं। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्ष अंतरिम समझौते के कानूनी मसौदे को अंतिम रूप देने के साथ साथ बाजार पहुंच, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क, व्यापार सुगमता, निवेश प्रोत्साहन और आर्थिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे।

एस्टोनिया के टेक स्टार्टअप्स ने एआई, साइबर सुरक्षा, रक्षा व चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग करने में रुचि दिखाई है और दोनों देश अपनी आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना चाहते हैं। एस्टोनिया में हर साल होने वाले प्रभावशाली स्टार्टअप व प्रौद्योगिकी सम्मेलन

लैटिट्यूड 59 अगले साल अपनी देखरेख में भारत में एक नेटवर्किंग कार्यक्रम करने के लिए उत्सुक है। संस्था की सीईओ लीसी ऑग ने कहा है कि उन्हें भारत बहुत पसंद है और वे लैटिट्यूड 59 की मेजबानी करना चाहेंगे। सत्य की खोज को निजता से ऊपर करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पितृत्व से जुड़े विवादों में अदालतें डीएनए जांच का आदेश दे सकती हैं, बशर्ते मामले के निपटारे के लिए आवश्यक हो और उपलब्ध अन्य साक्ष्य विवाद का निर्णायक समाधान देने में सक्षम ना हो। और शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि निजता का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन यह पूर्ण या असीमित अधिकार नहीं है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने ट्रायल कोर्ट और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें अमर नामक व्यक्ति के पितृत्व संबंधी दावे की जांच के लिए डीएनए परीक्षण कराने का निर्देश दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को तेज गर्मी के मौसम में सतर्कता बरतने के लिए आगाह किया है। साथ ही कहा है कि गर्मी के प्रतिकूल प्रभावों से बचने के लिए सरकार के विभिन्न विभागों की तरफ से कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, सभी को उनका पालन करना चाहिए। और उन्होंने गर्मी से बचने के लिए पानी पीते रहने, धूप में संभल कर निकलने और आम पन्ना और सत्तू का शरबत जैसे देसी भारतीय पेय अपनाने की सलाह भी दी है।

ब्रिटेन के विदेश सचिव पवित कपूर सोमवार से यानी कि आज से चीन और भारत की यात्रा शुरू करेंगे। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य वैश्विक चुनौतियों से निपटना होगा और आपसी सहयोग मजबूत बनाना है। ब्रिटिश विदेश मंत्रालय के अनुसार इन दो प्रमुख शक्तियों के साथ वार्ता में हॉर्मुज, यूक्रेन रूस युद्ध, अफ्रीका में इबोला के प्रकोप जैसे मुद्दे शामिल हैं। और कूपर बृहस्पतिवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ वार्ता भी करने वाले हैं।

कचरा प्रबंधन पर सर्वोच्च न्यायालय के कठोर निर्णय व्यवस्था को बदलने और ढाक के तीन पात बने रहने के लिए विचारणीय है। बिल जमा करने के बावजूद यदि आपकी इमारत या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान या पानी बिजली का कनेक्शन काटने की नौबत आ जाए तो कोई आशा नहीं है। ये सिर्फ जागृत करने के लिए है कि जीने का अधिकार पाने के साथ आपके द्वार उत्पादित कचरे को सही ठिकाने पर लगाना भी आप ही की जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए कचरा प्रबंधन को बहुत ध्यान से और गंभीरता से लें। कचरा प्रबंधन को सुदृढ़ एवं जवाबदेह बनाने हेतु हर स्तर पर जिम्मेदारी तय की गई है और ये मसला 2026 तक तीन बार कचरा प्रबंधन संबंधी नियम इस मसले के तहत बनाए गए। यदि कड़े कदम नहीं उठाए गए तो इसका भुगतान हमें भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। तय सीमा में कचरे का यथारूप प्रबंधन यदि हो जाता है तो नागरिकों के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीने के अधिकार के साथ स्वच्छ वातावरण, स्वच्छता और बीमारियों से बचाव का अधिकार भी स्वतः हमें प्राप्त हो जाएगा। पृथ्वी का भविष्य तय करने वाले हैं हमारे अगले 5 वर्ष। जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए परिदृश्य जब भी जारी किए जाते हैं तो उसमें हमेशा एक दिलचस्पी होती है। परिदृश्य बताते हैं कि भविष्य में मौसम कैसा होगा। ये एक बात पर निर्भर करता है कि हम उत्सर्जन कम करने के लिए कितनी तेजी से कदम उठा रहे हैं। और घोषित 7 नए परिदृश्यों में एक उच्च उत्सर्जन वाला परिदृश्य RCP 8.5 व उसका उत्तराधिकारी SCP अब हटा दिया गया है। इन परिदृश्यों में माना गया था कि वर्ष 2100 तक पृथ्वी का जो तापमान है औद्योगिक काल से पहले की तुलना से लगभग 4.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता था। वैज्ञानिकों ने इस परिदृश्य को इसलिए हटाया क्योंकि दुनिया में जलवायु कार्रवाई का असर दिखने लगा है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत वाहन व बैटरी तकनीक के विस्तार से उत्सर्जन वृद्धि की रफ्तार को धीमा किया है और इसका अर्थ ये नहीं कि वैज्ञानिक भविष्यवाणियां गलत थी बल्कि मानव प्रयास कुछ हद तक सफल भी रहे हैं।

तो चलिए दोस्तों यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद लौट कर आते हैं आप सभी के रेडियो सेट्स पर। बने रहिए फिल्म हमीरपुर के साथ, आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: तो दोस्तों, इसी के साथ अब हमारे आज के इस कार्यक्रम का सफर हो चुका है पूरा। अपनी रेडियो दोस्त मधु को आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। आपका दिन शुभ हो। अपनी ट्यून के एफएम हमीरपुर 101.8 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 8 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
3: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
7: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
6: 10 राज्यों से राज्यसभा के 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
8: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है।

0: आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
1: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
3: योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3000 रुपए भी इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
1: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
4: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल है।

सुमन कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। कागिसोर अबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। यह खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में 5वां एफटीए, पश्चिम एशिया संकट के बीच 2 गुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार। जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों के राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हिमाचल डायरी का आज का अंक।

आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा के पुनर्मूल्यांकन के लिए 130 छात्रों के आवेदन को रद्द किया है। बोर्ड के पास ये आवेदन 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट होकर विद्यार्थियों ने पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण के लिए 10 से 25 मई तक किए थे। शिक्षा बोर्ड ने रद्द किए गए इन आवेदनों की सूची को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि आवेदन संबंधित स्कूलों को ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हुए थे। HPU के पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म में निःशुल्क संशोधन की सुविधा समाप्त हो गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों को 31 मई तक बिना किसी शुल्क के परीक्षा फॉर्म में मामूली त्रुटियां सुधारने का अवसर दिया था। परीक्षा शाखा द्वितीय की ओर से जारी पूर्व अधिसूचना और अनुसार विद्यार्थियों को नाम, विशेष श्रेणी तथा अन्य छोटी त्रुटियों के सुधार के लिए विशेष छूट प्रदान की गई थी। इस अवधि के दौरान विद्यार्थी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म से संशोधन कर सकते थे। अब निर्धारित तिथि बीत जाने के बाद परीक्षा फॉर्म में किसी भी प्रकार का संशोधन करवाने पर विश्वविद्यालय द्वारा तय करेक्शन शुल्क लागू होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों से परीक्षा संबंधी दस्तावेजों और फॉर्म में दर्ज विवरण को सावधानीपूर्वक जांचने की अपील भी की थी, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। हिमाचल प्रदेश की ग्रैपलिंग टीम ने 17वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 स्वर्ण पदकों समेत 17 पदक जीत लिए हैं। असम के गुवाहाटी में चल रही राष्ट्रीय ग्रैपलिंग प्रतियोगिता में प्रदेश के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इसमें 8 स्वर्ण, 4 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। एम्स बिलासपुर में अब चंद घंटों में खतरनाक बैक्टीरिया की पहचान हो सकेगी। माइक्रोबायोलॉजी विभाग में जल्द ही आधुनिक मशीन टेक 2 कॉम्पैक्ट स्थापित होने जा रही है। मशीन लगने के शरीर में मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया की पहचान अब दिनों की बजाय महज कुछ घंटों में हो जाएगी। इससे मरीज का इलाज तुरंत किया जा सकेगा और इस मशीन के दो मुख्य काम रहेंगे। पहला, मरीज के शरीर में खून, यूरिन या पस के सैंपल में मौजूद बीमारी फैलाने वाले फंगस का पहचान करना, और दूसरा ये जानना कि उस बैक्टीरिया को जड़ से ख़त्म करने के लिए कौन सी एंटीबायोटिक दवा सबसे ज़्यादा असरदार रहेगी और कौन सी बेअसर रहेगी। मेडिकल भाषा में इसे ऑटोमेटेड बैक्टीरियल आईडी एंड एएसटी एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग कहा जाता है और कंप्यूटर और रोबोटिक तकनीक पर यह काम करती है। जब किसी मरीज के शरीर में इन्फेक्शन होता है तो बैक्टीरिया की पहचान करने और सही दवा का पता लगाने के लिए कल्चर टेस्ट में कम से कम 48 से 72 घंटे का समय लग जाता है। जब डॉक्टर अंदाजे से दवाई देना शुरू कर देते हैं, लेकिन बायोटेक 2 कॉम्पैक्ट के आने से संक्रमण फैलाने वाले सटीक बैक्टीरिया की पहचान कुछ ही घंटों में हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एंट्री टैक्स के विरोध में पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों के किसान, ट्रांसपोर्ट और सामाजिक संगठनों ने आज यानी 1 जून को हिमाचल प्रदेश के 55 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर 4 घंटे चक्का जाम करने का ऐलान किया है। विद्यार्थियों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को अधिक प्रभावी एवं परिणामोन्मुख बनाने के लिए उद्देश्य से कोचिंग संस्थान द्वारा मासिक मॉक टेस्ट 2 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस मॉक टेस्ट में संस्थान के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा अपनी तैयारी का मूल्यांकन किया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मृत लाभार्थियों के खातों, निष्क्रिय बैंक खातों और सरकारी धन प्रबंधन पर बैंक पर सख्ती बढ़ा दी है और अध्यक्षता में टास्क फोर्स कमेटी ने सरकारी धन के बेहतर प्रबंधन और बैंकिंग व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। तीन दिनों से लाहौल की चोटियों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में रुक रुक कर हो रही बारिश ने गर्मी का असर लगभग खत्म कर दिया है। ठंडी हवाएं चलने से तापमान सामान्य से 9 डिग्री तक नीचे पहुंच गया। चंबा, कांगड़ा में तापमान सामान्य से करीब 9 डिग्री तक कम दर्ज किया गया और शिमला, सोलन, नाहन, धर्मशाला, ऊना और सुंदरनगर जैसे शहरों में भी तापमान में बड़ी गिरावट आई है। मौसम विभाग ने आज भी लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर बाकी 10 जिलों में आंधी और तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल डायरी के आज के इस अंक में बस इतना ही। आपने ट्यून किया FM हमीरपुर 101.8 MHz पर। 8:35 हुए हैं अब हमारे केंद्र से। आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

Lisa, Lisa, Lisa, Lisa.

भूल भुलैया 2 फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजें थी। समीर ने इस गीत को लिखा था, प्रीतम का संगीत था। चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं धुरंधर फिल्म का ये गीत।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 101.8 MHz पर 8:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम कानून की बात, जिसे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। अब आप सुनेंगे कानून की बात कार्यक्रम। इसे आप आकाशवाणी शिमला के साथ साथ आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों से भी सुन सकेंगे।
1: नमस्कार, कानून की बात कार्यक्रम में मैं हुकुम शर्मा आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। श्रोताओं, भारत जैसे विकासशील देश में उद्योगों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उद्योग तभी सफल हो सकते हैं जब श्रमिक और नियोक्ता के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध हों, परंतु जब वेतन, सेवा शर्तों, छंटनी या बर्खास्तगी जैसे मुद्दों पर मतभेद होते हैं तो औद्योगिक विवाद उत्पन्न होते हैं। इन्हीं विवादों को रोकने और सुलझाने के लिए अधिनियम बनाया गया है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। आज इसी अधिनियम पर हम चर्चा करेंगे। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आकाशवाणी स्टूडियोज में आज हमने आमंत्रित किया है अनुजा सूद जी को। आप पीठासीन अधिकारी हैं श्रम न्यायालय। अनुजा सूद जी, स्वागत है आकाशवाणी स्टूडियोज में आपका।
2: धन्यवाद।
1: औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 जो है, ये है क्या?
2: सबसे पहले श्रोताओं को मेरा नमस्कार, और मैं आकाशवाणी शिमला का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे आज चर्चा के लिए बुलाया है। जैसा कि आपने पूछा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 क्या है, तो यह भारत का एक केंद्रीय श्रम कानून है जिसका उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच उत्पन्न विवादों को रोकना और उनका शांतिपूर्ण समाधान करना है।
1: जी, तो जो ये औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 जो है, इसकी शुरुआत की अगर हम चर्चा करना चाहें तो ये किस उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई?
2: जी, इस कानून का मुख्य लक्ष्य औद्योगिक शांति, जिसे हम इंडस्ट्रियल पीस भी कहते हैं, बनाए रखना है, और ये नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है ताकि ना काम रुके और दोनों पक्षों के हितों की रक्षा भी हो सके।
1: जी अनुरसूद जी, औद्योगिक विवाद होते क्या हैं?
2: जी, धारा 2K के तहत कोई भी विवाद जो नियोक्ताओं या नियोक्ताओं और श्रमिकों या श्रमिकों और श्रमिकों के बीच में हो और जो रोजगार, काम की शर्तों या श्रम की परिस्थितियों से संबंधित हो, उसे हम औद्योगिक विवाद मानते हैं।
1: जैसे कि इसके नाम से मालूम होता है या हम अनुमान लगा सकते हैं, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, तो क्या ये जो अधिनियम है ये 1947 में ही बना था, या जानना चाहेंगे कि ये अधिनियम कब बनाया गया?
2: जी, ये अधिनियम वर्ष 1947 में बनाया गया ताकि स्वतंत्र भारत में औद्योगिक शांति बनाए रखी जा सके और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। ये भारत का एक केंद्रीय श्रम कानून है जिसका उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच उत्पन्न विवादों को रोकना और उनका शांतिपूर्ण समाधान करना है।
1: औद्योगिक विवाद जो है, अगर इसकी हम परिभाषा जानना चाहेंगे तो क्या अभिप्राय है औद्योगिक विवादों से?
2: औद्योगिक विवाद वे विवाद हैं जो रोजगार, बेरोजगारी, सेवा शर्तों या काम की परिस्थितियों को लेकर श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच उत्पन्न होता है।
1: औद्योगिक विवाद किन किन के बीच हो सकता है?
2: औद्योगिक विवाद नियोक्ता और श्रमिक के बीच में, या नियोक्ता और नियोक्ता के बीच में, या श्रमिक और श्रमिक के बीच में हो सकता है।
1: तो ये भी हमें बताएं कि इस अधिनियम में जो, जैसे आपने कहा कि तीन नाम लिए आपने, नियोक्ता, श्रमिक, तो ये इन दोनों में से जो श्रमिक है वो किसे कहा गया है?
2: श्रमिक वो व्यक्ति है जो किसी उद्योग में वेतन के बदले शारीरिक, तकनीकी, लिपिकीय, कुशल या अकुशल कार्य करता है, वह श्रमिक कहलाता है।
1: तो क्या कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं जो श्रमिक की श्रेणी में नहीं आते हैं?
2: जी हाँ, जैसे प्रबंधक हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं, उच्च वेतन पाने वाले पर्यवेक्षक हैं, या पुलिस और सशस्त्र बलों के सदस्य हैं।
1: ऐसे कौन कौन से संस्थान हैं जिन संस्थानों पर ये अधिनियम लागू होता है?
2: जी, ये अधिनियम कारखाने, खदाने, बागान, परिवहन सेवाएं, औद्योगिक और वाणिज्य प्रतिष्ठानों पर लागू होता है।
1: वर्क्स कमेटी जो है, ये क्या होती है?
2: वर्क्स कमेटी श्रमिकों और नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों की एक समिति होती है जो आपसी सहयोग, सौहार्द बनाए रखने का कार्य करती है।
1: समझौता अधिकारी की भूमिका क्या रहती है?
2: समझौता अधिकारी को हम कंसिलेशन ऑफिसर भी कहते हैं। समझौता अधिकारी विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास करता है और अपनी रिपोर्ट इस बारे में सरकार को सौंपता है। जो ये समझौता अधिकारी होता है, इनका ज्यादा एंडेवर ये रहता है कि ये दोनों पार्टीज को किसी एक कंसिलेशन में, किस समझौते पर आए, और जब समझौता नहीं होता है तो फिर सरकार को रिपोर्ट भेजी जाती है और उसके बाद फेलियर रिपोर्ट के बाद रेफरेंस हो जाता है
1: जी
2: कोर्ट के अंदर।
1: जी जी अनुजा सूद जी, श्रम न्यायालय जो है यो किस प्रकार के मामलों का निपटारा करता है?
2: जी, जैसे सेवा समाप्ति, बर्खास्तगी, हड़ताल, तालाबंदी की वैधता,

0: अनुशासनात्मक कार्यवाही इत्यादि के जो भी मामले होते हैं उनका निपटारा करता है।
1: औद्योगिक अधिकरण क्या है?
0: औद्योगिक अधिकरण वेतन, भत्ते, कार्य घंटे, अवकाश व अन्य सेवा शर्तों से संबंधित विवादों का निपटारा करता है।
1: राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण कब गठित किया जाता है?
0: जब कोई औद्योगिक विवाद राष्ट्रीय महत्व का हो या एक से अधिक राज्यों से संबंधित हो।
1: हड़ताल क्या होती है?
0: हड़ताल जब श्रमिक सामूहिक रूप से काम करना बंद कर देते हैं तो उसे हड़ताल कहा जाता है।
1: जी, तो हड़ताल और जो तालाबंदी है, तो ये दोनों क्या अलग अलग हैं? और अगर अलग अलग हैं तो फिर तालाबंदी क्या होती है?
0: तालाबंदी नियोक्ता अस्थायी रूप से कार्यस्थल बंद कर देता है, उसे तालाबंदी कहते हैं। और बहुत बार हम हड़ताल और तालाबंदी का अंतर समझ नहीं पाते, हमें इसे एक ही मतलब निकालते हैं, लेकिन हड़ताल और तालाबंदी दो अलग शब्द हैं और इनका लेबर लॉज में अलग मीनिंग है। हड़ताल ये श्रमिकों का अधिकार है, जब श्रमिक मिलकर काम करने से मना कर देते हैं उसे हड़ताल कहते हैं। और तालाबंदी ये नियोक्ता का अधिकार है और हथियार भी है, और जब मालिक अस्थायी रूप से कार्यस्थल को बंद कर देता है या काम करने से मना कर देता है तो उसे तालाबंदी कहते हैं।
1: लोक उपयोगिता सेवाएं क्या होती हैं?
0: वे सेवाएं जो जनता के दैनिक जीवन से जुड़ी हों, जैसे जल, बिजली, परिवहन, डाक इत्यादि।
1: लोक उपयोगिता सेवाओं में हड़ताल के क्या नियम हैं?
0: हड़ताल से पहले निर्धारित समय में पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है।
1: अवैध हड़ताल या तालाबंदी का क्या परिणाम होता है?
0: अवैध हड़ताल या तालाबंदी करने पर जुर्माना या कारावास का प्रावधान है।
1: जी, तो जो ले ऑफ है ये क्या होता है?
0: जब नियोक्ता अस्थायी रूप से काम की कमी के कारण श्रमिकों को काम नहीं देता तो उसे ले ऑफ कहते हैं।
1: छंटनी से क्या तात्पर्य है?
0: जब अतिरिक्त श्रमिकों को स्थायी रूप से सेवा से हटाया जाता है तो उसे छंटनी कहते हैं।
1: छंटनी से पहले कोई क्या कुछ आवश्यक बातें हैं?
0: जी, इसकी पूर्व सूचना देना जरूरी है, मुआवजा देना जरूरी है और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना भी जरूरी है।
1: तो क्या कोई व्यक्तिगत श्रमिक विवाद भी उठा सकता है?
0: जी हाँ, बर्खास्ती, सेवा समाप्ति या छंटनी से संबंधित मामलों में व्यक्तिगत श्रमिक भी विवाद उठा सकता है।
1: इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है?
0: जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है औद्योगिक शांति को बनाए रखना और श्रमिक और नियोक्ताओं के बीच में संतुलित स्थापित करना।
1: क्या ये जो अधिनियम है ये केवल श्रमिकों के हित में है?
0: जी नहीं, यह अधिनियम श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा करता है।
1: इस अधिनियम का राष्ट्रीय विकास से क्या संबंध है?
0: औद्योगिक शांति से उत्पादन बढ़ता है, रोजगार सुरक्षित रहता है और देश का आर्थिक विकास भी होता है।
1: जसूत जी, अगर कोई विवाद हो जाए तो उसे सुलझाने के लिए क्या रास्ते उपलब्ध हैं?
0: विवाद सुलझाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं और अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। जैसे कोई विवाद हो जाता है तो पहले वो वर्क्स कमेटी, जो कार्य समिति है, वो छोटे मोटे विवाद, जो आपसी विवाद होते हैं, वो वहीं पे सुलझाने का प्रयास करती है। इसके पास अगर मामला नहीं सुलझता तो फिर कंसलेशन ऑफिसर, जो सुलहाधिकारी हैं, उनके माध्यम से समझौता कराने की कोशिश की जाती है। और अगर वहां भी नहीं होता है देन लेबर कोर्ट, जो ट्रिब्यूनल है, उसमें जब आपसी बातचीत विफल हो जाती है तब कानूनी रूप से उसका फैसला किया जाता है।
1: क्या कोई कंपनी जो है वो कभी भी अपने कर्मचारियों को निकाल सकती है कार्य से?
0: नहीं, इसके कड़े नियम हैं। यदि किसी संस्थान में 100 से अधिक श्रमिक हैं तो छंटनी या संस्थान बंद होने से पहले सरकार की अनुमति लेना और श्रमिकों को उचित नोटिस और मुआवजा देना अनिवार्य होता है।
1: अनुचित श्रम व्यवहार क्या होता है और इसके लिए क्या सजा है?
0: श्रमिकों को यूनियन बनाने से रोकना, डराना धमकाना या अवैध तरीके से काम से निकालना अनुचित श्रम व्यवहार की श्रेणी में आता है। इसके लिए जुर्माना और 6 महीने की कैद दोनों का ही प्रावधान है।
1: क्या कोई मालिक अचानक काम के घंटे बदल सकता है या छुट्टी कम कर सकता है?
0: जी नहीं, धारा 9A के तहत अगर नियोक्ता सेवा की शर्तों, जैसे वेतन, काम के घंटे, छुट्टियां लेने में बदलाव करना चाहता है तो उसे श्रमिकों को 21 दिन का पूर्व नोटिस देना अनिवार्य होता है। बिना नोटिस के किया गया बदलाव हमेशा ही अवैध माना जाता है।
1: जब कोई मामला लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल में जाता है तो वहां फैसला कैसे होता है?
0: जब कोई मामला ट्रिब्यूनल के समक्ष आता है तो दोनों ही पक्षों को अपना अपना पक्ष रखना होता है और उसके लिए सबूत देना होता है, जिसे ट्रिब्यूनल देखता है कि क्या सबूत आए हैं। और इसके पास दीवानी अदालत जैसी शक्तियां भी होती हैं और ट्रिब्यूनल का फैसला को अवार्ड कहा जाता है और दोनों पक्षों पर कानूनी रूप से वो बाध्य भी होता है।
1: जी, तो हमारा जो श्रमिक वर्ग है आमतौर पर वो ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं। अनुजा सूद जी, हमारे जो तमाम इस तरह के लोग हैं, कानून कामगार लोग हैं, श्रमिक की श्रेणी में जो लोग आते हैं, अगर उनको कभी लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है या कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, तो उनके लिए आप कोई साधारण सी बातें जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए कि वो किस तरह से अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करवाएं और क्या उनको आगे के मतलब कदम उठाने चाहिए?
0: देखिए, जब भी कोई श्रमिक को ऐसा लगता है कि उसके साथ अनुचित व्यवहार होता है या टर्मिनेशन हो रहा है या क्लोजर कर देती है कई बार कंपनी बिना किसी कॉम्पनसेशन के या नोटिस के बिना, या चेंज ऑफ सर्विस कंडीशन कर देती है बिना नोटिस दिए, जिसके लिए कि 9A का नोटिस देना ज़रूरी होता है, तो इस तरह के मामलों में वो प्रबंधन को भी लिख सकते हैं। और उसके बाद अगर वो प्रबंधन नहीं सुनता है तो जो लेबर ऑफिसर है, कंसलेशन ऑफिसर्स हैं, उनके माध्यम से अपनी डिमांड्स को उठा सकते हैं। और अगर वहां भी कोई कंसलेशन नहीं होती है तो फिर वो अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं।
1: जी, तो कई बार ऐसा भी आपके सामने कई केसेस आते होंगे जब कोई श्रमिक कहीं कार्य कर रहा है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है या कोई चोट वगैरह लग जाती है किसी को, और कई बार गंभीर चोट भी लग सकती है, तो उस स्थिति में भी क्या श्रमिकों के लिए कानून में कोई प्रावधान है जो उनकी सहायता करते हैं?
0: जी बिल्कुल, अगर उसको कोई चोट लग जाती है तो एक तो ये ESI के माध्यम से सब कवर्ड रहता है, उनको खर्चा मिलता है, और चोट लग जाती है तो उसके लिए कॉम्पनसेशन के लिए हकदार रहते हैं।
1: जी, और क्या महिलाओं के लिए कुछ विशेष अधिकार भी हैं? क्योंकि देखिए, पुरुषों और महिलाओं में अगर वो कामगार हैं, दोनों ही श्रमिक हैं, तो कुछ तो अंतर होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को अपनी गृहस्थी भी देखनी है, अगर छोटे बच्चे हैं उनको भी संभालना है, और साथ साथ में मेरे ख्याल से जो भी कोई श्रम करता है, कोई दिहाड़ीदार जो लोग हैं, उनके लिए कोई विशेष प्रावधान भी रहते हैं क्या?
0: वर्क प्लेस में एनवायरनमेंट क्रिएट करना महिलाओं के लिए फ्रेंडली हो, वो एक जिम्मेदारी रहती है नियोक्ता की। ऐसा कुछ स्पेशल कुछ उनको अधिकार नहीं दिए गए हैं इस कानून के अंदर कि महिला होने के हिसाब से उनको कुछ स्पेशल अधिकार मिलेंगे, लेकिन मैं एक बात इस मंच के माध्यम से जरूर कहना चाहती हूँ कि अगर कोई महिला के साथ कोई भी श्रम कानून का उल्लंघन करके उसको निकाला जाता है या चेंज ऑफ सर्विस कंडीशन होता है या और कोई भी जिससे उसको लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है, तो वो इसको चैलेंज भी कर सकती है। और क्योंकि वो महिला है इसलिए उसे फ्री लीगल एड की भी सुविधा मिलती है, जो
1: जी,
0: कि फ्री लीगल एड जो है वो जो भी कानूनी सहायता मुफ्त मिलती है उसके सारे प्रावधानों के अंतर्गत हमारे पास भी वो केस कर सकती है और उसको उसका लाभ भी मिलता है।
1: जी तो कार्यस्थल पर कुछ सुविधाएं तो महिलाओं को मिलती ही होंगी, जैसे अलग से टॉयलेट की सुविधा होना बहुत
0: जी जी
1: जरूरी
0: बिल्कुल,
1: है,
0: जी बिल्कुल,
1: इस तरह की
0: इस
1: कोई
0: तरह
1: तो?
0: की, हाँ, वो जो सुविधाएं बेसिक सुविधाएं हैं
1: जी
0: वो तो देना जरूरी ही है। जरूरत हो वहां क्रच की सुविधा भी देना महिलाओं को जरूरी है, वो
1: जी
0: प्रावधान इसमें एक्ट में है।
1: जी यानी जहाँ हमारे कुछ कर्तव्य हैं वहीं अधिकार भी है, उन अधिकारों का हम सही तरीके से हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। अनुजा सूची, आज आप आकाशवाणी स्टूडियोज में आई और आपने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 पर विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारियां दी। आकाशवाणी स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, इसी के साथ कानून की बात कार्यक्रम का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: अभी आप कानून की बात कार्यक्रम सुन रहे थे। विषय था औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। श्रीमती अनुजा सूद पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय शिमला से भेंट कर रहे थे डॉक्टर हुकम शर्मा। इसे आप आकाशवाणी शिमला के साथ साथ आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों से भी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 101.8 MHz पर। 9 बजने को हैं अब हमारे केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।
4: छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर से आपको सुनवाएंगे गाने।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सुनते हैं ये गीत। सन ऑफ सरदार 2 फिल्म का ये गीत है, नेहा कक्कर की आवाज़।

सन ऑफ सरदार टू फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज नेहा कक्कर की थी। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। दोस्तों आज है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स यानी विश्व वैश्विक मातृ पितृ दिवस, हर वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है माता पिता के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने का। यह अवसर है माता पिता के प्रेम त्याग और बच्चों के पालन पोषण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इस ओर ध्यान दिलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। जिनकी उंगली थामकर हम चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, वो हैं हमारे माता पिता, हमारे जीवन की पहली पाठशाला और पहले गुरु होते हैं। उनके प्यार दुलार और मार्गदर्शन से ही हमारा सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण होता है, अच्छे भविष्य का निर्माण होता है। आइए हम अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, उनके साथ कुछ समय बिताएं, उनका सहारा बने और हमेशा ये एहसास दिलाएं कि वे ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। माता पिता का सम्मान हर रोज किया जाता है, जीवन भर अपना कर्तव्य निभाई जाने वाली हमारी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम आपको ये गीत सुनवाते हैं।

तनु वेट्स मनु फिल्म का गीत कृष्णा की आवाज में आप सुन रहे थे। इस गीत को राजशेखर ने लिखा था और कृष्णा ने इस गीत की धुन बनाई थी। चित्रलोक कार्यक्रम में अब गदर 2 फिल्म का ये गाना आपको सुनवा रहे हैं।

उदित नारायण और साथियों की आवाजों में गदर 2 फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे हैं थे आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम में एक और छोटा सा ब्रेक।

0: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 9:20 होने को हैं। कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
2: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प लें।
1: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में जिला परिषद वार्डों के लिए मतों की गिनती जारी, अभी तक 150 से अधिक वार्डों के नतीजे घोषित। मंडी जिला में

0: पड़ा उलटफेर। कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंपा ठाकुर और धर्मपुर से वंदना गुलेरिया चुनाव हारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला परिषद, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावी नतीजों को बताया लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत। और प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर वर्षा का सिलसिला जारी, आने वाले दिनों में मिलती रहेगी भीषण गर्मी से राहत। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में हुए जिला परिषद चुनाव के लिए मतों की गिनती जारी है। अभी तक कुल 251 जिला परिषद वार्डों में से 150 से अधिक वार्डों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार अभी तक ऊना जिला में 17 में से 16, बिलासपुर में 14 में से 6, कांगड़ा में 54 में से 22, किन्नौर में 11 में से 9, कुल्लू में 14 में से 11, शिमला में 25 में से 19, हमीरपुर में सभी 19, मंडी में 36 में से 23, चंबा में 18 में से 12, लाहौल स्पीति में 10 में से 2, सिरमौर में 17 में से 12 और सोलन जिले में 17 में से 12 जिला परिषद वार्ड सदस्यों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार जिला परिषद के नतीजों में अधिकांश जिलों में भाजपा समर्थित उम्मीदवार विजयी हुए हैं। सोलन नगर निगम में भाजपा की जोरदार जीत के बाद बीडीसी और जिला परिषद नतीजों में भी अधिकांश भाजपा समर्थित उम्मीदवार विजयी हुए हैं। सलोगड़ा और मंसार पंचायत समिति वार्डों से निर्वाचित मनीष कुमार और कुमारी शीला ने अपनी जीत को मतदाताओं व कार्यकर्ताओं की जीत का करार दिया और पार्टी नेतृत्व का आभार जताया।
1: मेरी जीत नहीं है, इस सलोगड़ा और मंसार के लोगों की जीत है। जो मैंने वादे किए हैं वो मैं पूरा करूंगा, हम मिलकर पूरा करेंगे। चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे सड़कों की समस्या हो, पूरी समस्याएं हम मिलकर उनका समाधान करेंगे।
2: देखिए, ये मेरी जीत नहीं है, मेरे कार्यकर्ताओं की जीत है, जिन्होंने रात दिन मेहनत करी और पूरे जिला परिषद वार्ड की 19 पंचायतों का मेरे साथ दौरा किया।
0: उधर मंडी जिला परिषद के नतीजों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। मंडी जिला कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर की बेटी चंपा ठाकुर कोटली वार्ड से जिला परिषद का चुनाव हार गई है। इसी तरह धर्मपुर क्षेत्र के टिहरा वार्ड से पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की बेटी वंदना गुलेरिया भी चुनाव हार गई है। वंदना गुलेरिया मात्र 47 मतों के अंतर से हारी, जबकि चंपा ठाकुर 2,464 मतों के बड़े अंतर से पराजित हुई। कुल्लू जिला परिषद के कुल 14 वार्डों में से अभी तक 11 वार्डों के नतीजे घोषित हुए हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता।
3: कुल्लू जिला में जिला परिषद की 14 सीटें हैं, जिनमें देर रात तक मतगणना चलती रही, जबकि कुछ वार्डों के नतीजे सुबह घोषित किए गए। नतीजों के अनुसार जिला में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने बाजी मारी है तथा 8 भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है, जबकि 4 कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार तथा 2 आजाद उम्मीदवार हैं। मनाली विधानसभा क्षेत्र के तहत पड़ने वाली सभी जिला परिषद सीटों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार जीते हैं तथा कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को यहां निराशा ही हाथ लगी है। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
0: इधर सिरमौर जिला परिषद के कुल 17 वार्डों में से अभी तक 12 वार्डों के नतीजे घोषित किए गए हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे सिरमौर जिला संवाददाता।
4: सिरमौर जिला में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी जिला परिषद पर काबिज होने जा रही है। अभी तक जिला परिषद की 17 सीटों में से 12 सीटों के परिणाम सामने आए हैं, जिसमें से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार जीते हैं। खास बात ये भी है कि सिरमौर जिला में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार को अपने गृह क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार जहां अपने गृह क्षेत्र रेणुकाजी में जिला परिषद की 3 सीटें हार गए, वहीं दूसरी तरफ शिलाई में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के गृह क्षेत्र में भी कांग्रेस को 3 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
0: किन्नौर जिला परिषद के कुल 11 वार्डों में से 9 के चुनाव नतीजे आ गए हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता।
5: जनजातीय जिला किन्नौर में पंचायती राज संस्थानों के चुनाव परिणाम घोषित होने के साथ ही जिले की राजनीतिक तस्वीर काफी हद तक स्पष्ट हो गई है। जिला परिषद चुनावों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 में से 9 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस परिणाम के बाद जिला परिषद में भाजपा समर्थित सदस्यों का स्पष्ट बहुमत बन गया है। चुनाव परिणामों के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह का माहौल है। आकाशवाणी के
0: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला

0: केवल जो अपना प्रेम प्यार दिया है और इतने मतों से मुझे विजय बनाई है, मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। समस्याओं को हम धीरे धीरे निपटाने की बहुत कोशिश करेंगे। जैसे आप रोड्स का ले लो, जिस तरह से जिला परिषद के दायरे में बस आएगा उसी प्रकार से मैं अपने वार्ड का विकास करूँगी।
1: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में स्थानीय शहरी निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के नतीजे लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत और सरकार की जनहितकारी नीतियों पर जनता के विश्वास का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने शिमला में कहा कि प्रदेशवासियों ने विकास, पारदर्शिता और जन कल्याण को प्राथमिकता देने वाली राजनीति का समर्थन किया है। उन्होंने चुनाव में जीते सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि वे जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए अपने अपने क्षेत्रों के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और जनता द्वारा व्यक्त विश्वास सरकार को और अधिक जिम्मेदारी और समर्पण के साथ कार्य करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के समग्र विकास, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए लगातार कार्य करती रहेगी। प्रदेशवासियों को आने वाले दिनों में प्रचंड गर्मी से राहत मिलती रहेगी। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में आगामी 6 जून तक अलग अलग स्थानों में वर्षा होगी। विभाग ने 3 से 6 जून तक राज्य के 6 जिलों में अंधड़, आसमानी बिजली गिरने और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
2: मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज भी कई जिलों में गर्ज के साथ तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। वहीं 3 और 4 जून के लिए चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में गरज चमक, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। लगातार बारिश होने से हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी का असर काफी कम हो गया है। निचले व मैदानी क्षेत्रों में लोगों को गर्मी से राहत मिली है, जबकि पहाड़ी व ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ठंडा हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक आगामी 6 जून तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
1: और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने 4 नगर निगमों के चुनाव नतीजे से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, धर्मशाला, मंडी और सोलन नगर निगम में भाजपा को बहुमत, पालमपुर में कांग्रेस का परचम बरकरार। पंजाब केसरी के शब्द हैं, 3 नगर निगमों में भाजपा का राज, सिर्फ पालमपुर में कांग्रेस जीती। दिव्य हिमाचल का शीर्षक है, नगर निगम चुनाव में भाजपा आगे। दैनिक जागरण के अनुसार सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे नगर निगम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस को झटका। दैनिक भास्कर ने खबर दी है, एचआरटीसी चालक परिचालकों का अल्टीमेटम, आज वेतन नहीं मिला तो कल से नहीं चलेंगी निगम की बसें। मौसम पर हिमाचल दस्तक लिखता है, प्रदेश में 6 जून तक खराब बना रहेगा मौसम। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में जिला परिषद वार्डों के लिए मतों की गिनती जारी, अभी तक 150 से अधिक वार्डों के नतीजे घोषित। मंडी जिला में बड़ा उलटफेर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंपा ठाकुर और धर्मपुर से वंदना गुलेरिया चुनाव हारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला परिषद, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावी नतीजों को बताया लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत। और प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर वर्षा का सिलसिला जारी, आने वाले दिनों में मिलती रहेगी भीषण गर्मी से राहत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 9:30 हुए हैं। अब हमारे केंद्र से सुबह 10 बजे तक हम आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।
4: थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम एक फनकार।

सही पहचाना आपने। आज के फनकार हैं सुमन कल्याणपुर। सुमन कल्याणपुर की ये विशेषता भी है और अभिशाप भी कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती है। कई बार बड़े बड़े दिग्गज भी धोखा खा जाते हैं सुमन कल्याणपुर और लता मंगेशकर की आवाज में फर्क करने में।

सरगम के अथाह सागर में डूबकर गीतों के सच्चे मोती तलाशने की धुन जिन्हें रही है, वे सुमन कल्याणपुर के गीतों के शौकीन जरूर रहे हैं। सुमन कल्याणपुर की आवाज में एक अल्हड़पन है, शोखी है और चंचलता है, और है देसीपन जो हर श्रोता को अपनी ओर आकृष्ट करती है।

गीत के बोल में चाहे प्यार की गहराई हो या पश्चिमी धुन पर थिरकता शरारती गीत या फिर शास्त्रीय संगीत का लोच हो, हर तरह से खरी उतरती है उनकी आवाज और यही उनके गायन की विशेषता है।

0: सुमन कल्याणपुर के हिंदी फिल्मी गायन का सफर शुरू हुआ फिल्म मंगू से। बोल थे कोई पुकारे धीरे, जिसके संगीतकार थे मोहम्मद शफी। इसके पहले उन्होंने बहुत सारे मराठी गीत गाए थे। फिल्म मंगू से जब सुमन कल्याणपुर ने फिल्मी गीतों के विशाल आंगन में कदम रखा तो छत की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत सारी सीढ़ियां तलाशनी पड़ी, काफी संघर्ष करना पड़ा। लेकिन आज उनकी आवाज को पसंद करने वाले लोगों की संख्या अनगिनत है।
1: अपने

सुमन कल्याणपुर अपने विवाह के पूर्व सुमन हेमाड़ी के नाम से गाती थीं। उनका जन्म 28 जनवरी सन 1937 को बंगाल के ढाका में हुआ था, लेकिन संगीत की विधिवत शिक्षा उन्होंने मुंबई में हासिल की। आइए अब सुने सुमन कल्याणपुर की गाई इकलौरी, जिसमें माँ की ममता है, दुलार है, स्नेह है और है सूरज की रश्मियों की तरह फैल जाने वाली रोशनी।

सुमन कल्याणपुर के गाए गीतों की ये खासियत है कि उनके गीत हर उम्र के लोग, हर वर्ग के लोगों के जुबा पर गुनगुनाए जाते हैं। प्रेम की गहराई में डूबा मन हो या किसी के विछोह में आकुल मन, किसी का इंतजार हो या किसी से मिलन की घड़ी, हर ऐसे वक्त में सुमन कल्याणपुर के गाए गीत उनका साथ निभाते हैं। हर ऐसे वक्त में उनकी जिंदगी से जुड़ जाते हैं सुमन कल्याणपुर के गाए गीत।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा और मतगणना भी उसी दिन की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभय गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोक भवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था और इस विस्तार के साथ ही राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। सुमन 1950 से 1970 के दशक की फिल्म संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में अपनी मधुर गायकी के लिए लोकप्रिय रहीं। उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार तथा तुमने पुकारा और हम चले आए शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी, बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन, राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीत लिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:05 हुए हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है लघु वार्ता। हमारा आज का विषय है वैश्विक अभिवादक दिवस।

वैश्विक अभिभावक दिवस 1980 के दशक से परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ध्यान में तेजी से आई। महासभा ने कई प्रस्तावों को अपनाया और परिवार के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और परिवार दिवस की घोषणा की। बच्चों के पालन पोषण में माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए वैश्विक अभिभावक दिवस इस बात को मान्यता देता है कि बच्चों के पालन पोषण और संरक्षण की प्राथमिक जिम्मेदारी परिवार की है। बच्चों के संपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए उन्हें पारिवारिक वातावरण में और सुख प्रेम समझ के माहौल में पलना बढ़ना चाहिए। वर्ष 2012 में महासभा द्वारा नामित वैश्विक अभिभावक दिवस सभी अभिभावकों को बच्चों के प्रति उनके निस्वार्थ प्रतिबद्धता और इस रिश्ते को पोषित करने के लिए उनके आजीवन बलिदान के लिए सराहना करने का अवसर प्रदान करता है। बच्चों के कल्याण और विकास में परिवार, माता पिता और देखभालकर्ता केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। वे बच्चों और किशोरों को पहचान, प्यार, देखभाल, पोषण और संरक्षण के साथ साथ आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता भी प्रदान करते हैं। बाल अधिकारों पर कन्वेंशन की भावना के अनुरूप परिवार और पालन पोषण संबंधी सहायता को राष्ट्रीय सामाजिक नीतियों और सामाजिक निवेश पैकेजेस के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में तेजी से मान्यता दी जा रही है, जिसका उद्देश्य गरीबी को कम करना, असमानता को घटाना और माता पिता और बच्चों के सकारात्मक कल्याण को बढ़ावा देना है। और 2026 वैश्विक अभिभावक दिवस के उपलक्ष्य पर जो विषय है वो है माता पिता के लिए एक साथ। यूनिसेफ 1 जून को माता पिता के लिए एक साथ विषय के तहत वैश्विक अभिभावक दिवस का शुभारंभ कर रहा है। साइंस कहता है कि 65 साल के बाद बुजुर्गों को सिर्फ दवाइयों की नहीं बल्कि भावनात्मक सहारे, सामाजिक जुड़ाव और तकनीकी सुरक्षा की भी उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी हमें होती है। 1 जून यानी आज वैश्विक अभिभावक दिवस हम मना रहे हैं और इस बार की थीम, जैसा हमने आपको बताया, टुगेदर फॉर पेरेंट्स यानी माता पिता एक साथ, माता पिता के लिए एक साथ आना यानी माता पिता की देखभाल सिर्फ एक बेटे या बेटी की नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। इस अवसर पर हम ये संकल्प ले सकते हैं कि बुजुर्ग माता पिता को सिर्फ तोहफे नहीं, समय व सम्मान भी देंगे। नौकरी या बिजनेस के कारण बहुत व्यस्त रहने के कारण यदि साथ रहते हैं तो 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट उनके साथ बैठें। मेडिकल रिसर्च के आधार पर यदि हम ऐसे ही व्यवहारिक तरीके जानें तो बुढ़ापे को सुखमय और परिवार को खुशहाल बनाया जा सकता है। रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी समस्या अकेलापन होती है। ऐसे में कोई बुज़ुर्ग का जो शौक है उनका मानसिक सहारा बन सकता है। उन्हें बागवानी, संगीत, लेखन या धार्मिक सामाजिक गतिविधियों से जोड़ें। घर में छोटा किचन गार्डन बनवाएं, वरिष्ठ नागरिक क्लब या मॉर्निंग ग्रुप से जोड़ें। WHO के मुताबिक पसंदीदा गतिविधियाँ तनाव घटाती हैं व प्रकृति के बीच समय बिताने में हैप्पी हारमोन्स को बढ़ाती हैं। बुज़ुर्गों को ज़्यादा दुख तब होता है जब उन्हें लगता है कि अब उनकी ज़रूरत नहीं रही, इसलिए उन्हें हर हाल में सम्मान दें। घर के फैसलों में उनकी राय ज़रूर लेनी चाहिए, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, बिना मांगे ही उनकी सभी ज़रूरतें पूरी हों। यूरोपियन साइकियाट्री जर्नल में प्रकाशित शोध कहता है कि निर्णय की आज़ादी से बुज़ुर्गों में अवसाद घटता है। संयुक्त परिवार भारतीय समाज की सबसे बड़ी ताकत रहा है और अब विज्ञान भी इसे सही मान रहा है। दादा दादी के साथ कहानी सुनना, खेलना, खाना खाना बच्चों की आदत बनाएं खुशी और मानसिक संतुलन बढ़ाने के लिए। बुजुर्ग अक्सर दवा का समय भूल जाते हैं, इससे बीमारी गंभीर हो सकती है। माता पिता की हेल्थ डायरी बनाएं। डायरी में दवा, डॉक्टर, जांच व अपॉइंटमेंट की जानकारी लिखें। मोबाइल में दवा का अलार्म लगाएं। हर माह दवाओं की समीक्षा, हर 6 माह में फुल बॉडी चेकअप कराएं। WHO के अनुसार दवाएं समय पर ना लेना बुज़ुर्गों में अस्पताल भर्ती होने की बड़ी वजहों में शामिल है। सामाजिक जुड़ाव बुज़ुर्गों के लिए ऑक्सीजन जैसा होता है। उनके लिए सिर्फ परिवार नहीं, समाज से जुड़ाव भी बहुत ज़रूरी है। पड़ोसियों और रिश्तेदारों से मिलने के लिए प्रेरित करें, वरिष्ठ समूहों से जुड़ें, दूर रहते हैं तो वीडियो कॉल करें। अमेरिका की हेल्थ एंड रिटायरमेंट स्टडी में पाया गया कि सामाजिक रूप से सक्रिय बुज़ुर्गों की याददाश्त अच्छी रहती है।

अभी आप सुन रहे थे लघु वार्ता, विषय था वैश्विक अभिभावक दिवस। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

जी दोस्तों, इस वक्त आप जुड़े हैं FM हमीरपुर के साथ आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। भीषण गर्मी में छोटे छोटे उपाय आपकी सुरक्षा करेंगे, हमारी सुरक्षा करेंगे। जैसे यदि आप एसी इस्तेमाल नहीं करते या फिर घर में ऐसा एसी नहीं है तो भी आपका घर ठंडा बना रहेगा। इसके लिए आपको रोजाना छोटा सा काम करना है। सुबह जल्दी खिड़कियाँ खोलकर ठंडी हवा अंदर आने दें। सुबह 9 से 10 बजे के आसपास खिड़कियां बंद कर दें और पर्दे लगा दें। छत पर पानी छिड़कें। टेबल फैन के सामने बर्फ का कटोरा रखें। ऐसा करने से घर का तापमान 3 से 4 डिग्री कम हो जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों, गर्मियों में अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस वक्त जुड़े हैं आप आकाशवाणी हमीरपुर के साथ आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आप इस वक्त जुड़े हैं आकाशवाणी हमीरपुर के साथ आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:15 हुए हैं और आपके रेडियो सेट्स पर दस्तक दे चुका है कार्यक्रम कुछ तुम चलो कुछ हम चलें।

सभी सुनने वालों को मधु का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जी हाँ, ये वो कार्यक्रम है जो हमारे सपनों को उड़ान देता है, हमें निराशा से बाहर निकालता है। जहाँ हम जीने की शुरुआत करते हैं, अपनी मंजिल को पाने की चाहत करते हैं, जीवन में हर दौड़ की चाहत में हम हमेशा अपने आगे बढ़ने की और मंजिल पाने की आस रखते हैं। मुकाम आने पर मंजिल पा भी लेते हैं। अभी पता चला कि रास्ता बेहद कठिन है, अभी पता चला कि इस अंधेरे में रोशनी की किरण बेहद महीन है। ठीक है, ये सब अभी पता चला, लेकिन इन मुश्किलों को ये नहीं पता जो हमें बहुत पहले से पता है कि मंजिल तो मिलनी ही है, क्योंकि हमें खुद पे यकीन है।

जी दोस्तों, बिल्कुल, सफलता का अर्थ केवल धन पद या प्रसिद्धि प्राप्त करना नहीं, सफलता का वास्तविक अर्थ है अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, अपने जीवन को सार्थक बनाना। हर सफल व्यक्ति की कहानी संघर्ष से शुरू होती है। कोई भी व्यक्ति रातों रात सफल नहीं होता। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी प्रकार सफलता भी समय, धैर्य और निरंतर प्रयास मांगती है। और दोस्तों, ये सपने देखने से नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत, आत्मविश्वास और धैर्य, निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि कैसे सकारात्मक सोच, दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला सकते हैं। क्योंकि सपने वो नहीं जो सोते समय देखे जाएं, सपने वो हैं जो हमें सोने ना दें। दोस्तों, हम जब सुबह उठ के भगवान को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, उससे पहले 5 मिनट फोन देख लेते हैं, फिर कहते हैं पता नहीं हमें एकाग्रता क्यों नहीं आती, ये कंसंट्रेशन क्यों नहीं बनती, हमारा मन एकाग्र क्यों नहीं होता, कैसे होगा, इसको इतना जोर से उथल पुथल जो दिया है। हम वो वाली पीढ़ी हैं जो फोन के बिना जीते थे। अगर हम अपने एडिक्शंस को नहीं छोड़ेंगे तो फिर हमारी अगली पीढ़ी कैसे छोड़ेगी। आज दुनिया ने मान लिया है कि ये जो मानसिक बीमारियां इतनी तीव्र गति से बढ़ रही हैं, इसमें एक बड़ा कारण साधन की गुलामी है। भारत वो देश नहीं जहां डिप्रेशन, एंग्जाइटी ये सब होना चाहिए। भारत वो देश है जो आध्यात्मिकता को पावर बनाता है। भारत वो देश है जिसके पास अध्यात्म के वो टूल्स हैं जिनसे हम सिर्फ अपनी बीमारियों को ठीक नहीं करते बल्कि पूरे विश्व के साथ ये टूल्स साझा करते हैं। वर्तमान समय की ये सारी बीमारियां हमने खुद ही बनाई हैं अपनी लाइफस्टाइल से। लाइफस्टाइल बदलेंगे तो मन की बीमारियां भी खत्म होंगी, तन की बीमारियां भी खत्म होंगी और संबंधों में जो टकराव आ रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। हमारे हर संकल्प से भावना बनती है, फीलिंग्स बनती हैं। हर संकल्प की जो तरंग है वो हमारे शरीर को पहुंचती है। हमने अभी अभी सोचा कि हमने ऐसा क्यों किया, इसका प्रभाव हमारे शरीर पर पहुंचेगा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसका प्रभाव भी हमारे शरीर पर पहुंचेगा। हमारी एक भी सोच ऐसी हो सकती है जिसकी वाइब्रेशन हमारे शरीर के हर सेल पर पहुंच जाती है। जब डॉक्टर कहते हैं कि कम उम्र में हार्ट अटैक होना, कैंसर फैल जाना, डायबिटीज घर घर पहुंच जाना, ये लाइफस्टाइल बीमारियां हैं, तो हम फटाफट अपना खाना पीना सोना इसको ठीक कर लेते हैं, फिर भी बीमारी खत्म नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि बीमारी सिर्फ खाने पीने सोने से नहीं, हमारे सोचने के तरीके से होती है दोस्तों। और इसीलिए हम लेकर आते हैं कार्यक्रम, जी हाँ, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर कार्यक्रम, कुछ तुम चलो कुछ हम चलें। हमारी सोच जो है वो हमारा भविष्य निर्धारित करती है। हमारी सोच हमारी हेल्थ को निर्धारित करती है। हर शरीर का ध्यान हम रखते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वॉक भी करते हैं, लेकिन मन को ठीक नहीं किया तो शरीर ठीक नहीं चल सकता दोस्तों। हम शरीर का ध्यान रखते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, व्यायाम भी करते हैं, योगा भी करते हैं, पर मन पर तो ध्यान ही नहीं देते। हम दूसरों की वाइब्स फील कर लेते हैं, इसकी वाइब्स अच्छी नहीं है, इसकी अच्छी है, वो बगल में बैठे हैं, फिर भी आपको उनकी वाइब्स फील हो रही हैं, क्योंकि वो ऊर्जा है, वो हम तक पहुंचती है। हमारी वाइब सबसे पहले हमारे शरीर तक पहुंचती है। अगर सोच को नहीं बदलेंगे तो हमारे शरीर को हम स्वस्थ नहीं बना सकते। और बिल्कुल, ये सकारात्मक सोच बहुत ज़रूरी है, खासकर आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी। सबसे पहले तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, ये है सकारात्मक संकल्प। ये अपने मानसिक कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का सकारात्मक संकल्प है दोस्तों। अक्सर हम वही चीज़ें पढ़ते हैं जो पहले से हमारे विश्वास, विचारों और पसंद को पुष्ट करती हों। इससे हम अपने ही बनाए इको चैम्बर में रहने लगते हैं। धीरे धीरे हमें लगने लगता है कि दुनिया वैसी ही है जैसी हम देखते हैं, लेकिन बौद्धिक परिपक्वता वहीं से शुरू होती है जहाँ से हमारे लिए मानसिक असुविधा शुरू हो जाती है। इस संकल्प का अर्थ ये नहीं कि हम हर विरोधी विचार को मान लें, बल्कि ये है कि हम उसे समझने की ईमानदार कोशिश तो कर सकते हैं। मसलन, यदि हम बहुत वैज्ञानिक तार्किक दृष्टि रखते हैं तो कभी कभी आध्यात्मिक लेखन भी पढ़ें, संकल्प लें कि ऐसी चीज़ें भी पढ़ेंगे जो हमारे विचारों को चुनौती देने वाली हों। कम से कम
24 घंटे में से 2 मिनट तो हम निकाल ही सकते हैं। और फिलहाल हम यहाँ पर वक्त निकाल रहे हैं एक म्यूजिकल ब्रेक का, लौट कर आते हैं आप सभी के रेडियो सेट्स पर वापस आपकी अपनी फ्रिक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपको बता दें आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कुछ तुम चलो कुछ हम चलें।

देश में जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि हमारे पास कोई बीमारी लेकर अगर आता है, ख़ास करके कैंसर की बीमारी, तो वो उनसे पूछते हैं कि उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम आई थी, तो वो बताते हैं कि अक्सर अधिकतर बहुत से लोग जो हैं जो कैंसर पीड़ित हैं उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम मतलब कोई नाकामी, कोई रिश्ता टूट गया, परिवार का कोई सदस्य खो गया। प्रॉब्लम से बीमारी नहीं बन रही, उसके बारे में सोचने का जो तरीका है उससे हो रही है। रिश्ते सोच से बनते हैं। पहले रिश्ते बहुत सहज होते थे, कोई घर आता था, खिचड़ी खाते थे, हंसते थे, खेलते थे, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते थे। एक एक घर में 10-10 लोग रहा करते थे, एक कमरे में 2-3 लोग रहते ही रहते थे, फिर भी कहते थे बहुत जगह है, आ जाइए। आज एक एक कमरा है सबके पास, फिर भी रिश्ते इतने नाजुक हो गए हैं, एक गलत शब्द और सब कुछ बिखर जा रहा है। सोचे ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि हम कनेक्टेड ही नहीं हैं, और वर्चुअल वर्ल्ड के साथ कनेक्शन जो है वो हमें, जो हमारे अपने हैं, जो हमारा परिवार है, जो हमारे नज़दीकी रिश्तेदार हैं, उनसे हमें दूर कर रहा है। भले ही हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स हों, बहुत सारे फेसबुक फ्रेंड्स हों, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप बहुत सारे लोगों से जुड़े हों, लेकिन सोचिए आपके आसपास ऐसा कौन सा इंसान है जिसे आप दिल की हर बात शेयर कर सकते हैं। आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों, हमें एडिक्टेड नहीं होना है, ये जो साधन है इनका गुलाम नहीं बनना है, इन्हें, इसे अपना गुलाम बनाना है।

सफलता का रास्ता जो है वो मेहनत से होकर गुजरता है, लेकिन लेकिन आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक बटन के क्लिक के साथ बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, यहाँ तक कि हम अपनी क्रिएटिविटी को भी टाइम नहीं दे रहे हैं। कौन सोचे इतना, कौन इतना माथा पच्ची करे। एक क्लिक के साथ हमारे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, एक क्लिक के साथ हमारे पास डेटा अवेलेबल हो जाता है, लेकिन याद रखिए दोस्तों, सफलता का रास्ता मेहनत से होकर गुजरता है। इसलिए थोड़ा सा हमारे दिमाग को भी जो जंग लग रहा है उसे हमें हटाना होगा। असफलता अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। अगर हम किसी बात को लेकर के असफल हो जाते हैं, किसी चीज़ में असफल, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई रिश्ता, तो गिरकर संभल जाता है जो वही आगे बढ़ता है। आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है और समय का सदुपयोग सफलता की कुंजी। बहुत सारी छोटी छोटी आदतें हैं जो हमें अपनानी होगी, तभी हम अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म पर पहुंच सकते हैं। एक छोटी सी कहानी, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी आपसे साझा करना चाहेंगे। एक बार एक विद्यार्थी ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, सफलता का रहस्य क्या है। गुरु उसे नदी के किनारे ले गए और पानी में उतरे। अचानक गुरु ने उस अपने शिष्य का सिर पानी में डुबो दिया। जब विद्यार्थी सांस लेने के लिए छटपटाने लगा, तब गुरु ने उसे बाहर निकाला और पूछा, जब तुम पानी में थे तब सबसे ज़्यादा क्या चाहते थे। विद्यार्थी बोला, सिर्फ सांस। गुरु जी ने कहा, जिस दिन सफलता पाने की इच्छा तुम्हारे अंदर सांस लेने जितनी प्रबल हो जाएगी, उस दिन सफलता स्वयं तुम्हारे कदम चूमेगी। क्यों? क्योंकि हम अपनी कंफर्टेबल जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। हमारी इच्छा है सक्सेसफुल बनने की, सफलता पाने की, लेकिन सांस लेने जितनी प्रबल नहीं है। जिस दिन वो जुनून जाग जाएगा, उस दिन सफलता हमारे कदम चूमेगी। यानी कि कहीं ना कहीं हमारी जो हमारे प्रयास हैं, हमारी जो कोशिशें हैं, उसमें कहीं ना कहीं फर्क रह जाता है। क्यों? क्योंकि सांस लेने जितनी जो प्रबलता है वो नहीं है। यदि बच्चा गिरने के डर से चलना छोड़ दे तो वो कभी चलना नहीं सीख पाएगा। हर इंसान ने, चाहे वो महान वैज्ञानिक हो, खिलाड़ी हो, नेता हो, कोई भी हो, असफलता का सामना जरूर किया है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हार मान

लेना सबसे बड़ी असफलता है। हार तब होती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है।

जी बिल्कुल दोस्तों, सफलता कोई संयोग नहीं, एक निरंतर प्रयास, दृढ़ संकल्प और सही दिशा में किया गया किए गए कार्यों का परिणाम है। ये संदेश दे रहा था ये खूबसूरत सा गीत जिसे आप सुन रहे थे अभी संजू फिल्म से। हर सफल व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे सूत्र होते हैं जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, जैसे कि स्पष्ट लक्ष्य जिस व्यक्ति का होता है उसकी मंजिल भी निश्चित होती है। कठिन परिश्रम मेहनत सफलता की नींव है, बिना परिश्रम की कोई भी बड़ी उपलब्धि संभव नहीं है। आत्मविश्वास जी हाँ, कॉन्फिडेंस, अपने आप पर विश्वास रखिए, आत्मविश्वास कठिन रास्तों को भी आसान बना देता है। और समय का सदुपयोग, समय मूल्यवान है और सबसे बड़ी संपत्ति भी, जो समय का सम्मान करता है सफलता उसका सम्मान जरूर करती है। सकारात्मक सोच हर चुनौती में अवसर खोजने की शक्ति प्रदान करती है। सपने देखने वाले नहीं बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करने वाले लोग जो हैं वो सफल होते हैं। क्योंकि दोस्तों, बिना लक्ष्य के जीवन उस नाव की तरह है जिसका कोई किनारा नहीं होता। यदि हमें पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, तो हम सही दिशा चुनेंगे कैसे, आगे बढ़ेंगे कैसे? और सफलता का कोई शॉर्टकट भी नहीं होता। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे वर्षों की मेहनत और संघर्ष है। किसान खेत में मेहनत करता है तब जाकर फसल तैयार होती है, विद्यार्थी मेहनत करता है तब जाकर अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। इसलिए मेहनत को अपनी आदत बनाइए। और सबसे बड़ी बात है समय। समय एक ऐसा धन है दोस्तों, जो एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वही जीवन में आगे बढ़ सकता है। हर दिन कुछ नया सीखने, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास कीजिए। असफलता जीवन का अंत नहीं बल्कि सफलता की ओर बढ़ने का एक कदम है। जब हम असफल होते हैं तो हम अपनी कमियों को समझने और सुधारने का अवसर मिलता है। जो व्यक्ति गिर कर फिर उठ कर खड़ा होता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। और हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि जो जिंदगी हमें ऊपर वाले ने बख्शी है, ये खूबसूरत सी नेमत, इसके लिए हमें उसका शुक्रिया अदा अवश्य करना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग हमारे जैसे जीवन जीने की भी कभी सपना देख रहे हैं। तो दोस्तों, यदि सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी होगा। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों की उम्र को भूलकर प्रकृति के कुछ लोग रक्षक बन गए, प्रतिनिधि बन गए। ऐसे बुजुर्ग जो 60 वर्ष के पार भी प्रकृति का कर्ज लौटा रहे हैं। किसी ने हजारों पेड़ लगा दिए, हजारों एकड़ में जंगल खड़ा कर दिया, तो किसी ने नदियों को पुनर्जीवित कर दिया। तो बिल्कुल, जब हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं, यदि इतने बुजुर्ग होकर ये अपने जीवन का, अगले जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? पश्चिम बंगाल पुरुलिया के 81 वर्षीय दुखू माझी पिछले 60 वर्ष से पेड़ लगा रहे हैं। वो आज भी साइकिल पर 2 टीन के डिब्बों में पानी, कुदाल व फावड़ा लेकर निकलते हैं। 5,000 से ज़्यादा बरगद, आम व जामुन के पेड़ लगा चुके हैं। पद्मश्री सहित उन्हें डॉक्टर बीसी रॉय कृति व कई अन्य सम्मान भी मिल चुके हैं। और उनकी जिद ये बताती है कि एक विदेशी ने उन्हें कहा था कि आने वाली पीढ़ी ऑक्सीजन के लिए तरसने वाली है, तब से उनका ये मिशन बन गया। तो बिल्कुल, हम ये सीख ले सकते हैं कि हम भी अपनी जिंदगी में कुछ मिशन बनाएं। अगर ये कर सकते हैं दुखू माझी कर सकते हैं, हम क्यों नहीं? असम के 66 वर्ष के जादव पाएंग 16 की उम्र में ब्रह्मपुत्र के बंजर बालू के टापू पर हर रोज एक पेड़ लगाने का संकल्प लिया। आज वहां 1360 एकड़ का जंगल खड़ा हो गया है। उन्हें पद्मश्री सहित कई सम्मान मिल चुके हैं। वे कहते हैं कि यदि जंगल काटना है तो पहले उन्हें काटना होगा। और दोस्तों, प्रोफेसर की नौकरी छोड़कर नदी झरने जिंदा करने में जुटे हैं डॉक्टर अनिल जोशी, 70 वर्षीय डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। जी हाँ, 1979 में कॉलेज की प्रोफेसरी छोड़कर पहाड़ों में सूखती नदियों, झरनों को पुनर्जीवित करने में लग गए। उन्होंने जीडीपी की तर्ज पर जीईपी यानी ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट दिया। उन्हें पद्म श्री, पद्म भूषण से लेकर कई सम्मान मिल चुके हैं। देश की तरक्की जीडीपी से नहीं बल्कि जीईपी से नापी जाए, क्योंकि पर्यावरण खत्म होगा तो जीडीपी का मतलब ही नहीं रह जाएगा।
तो दोस्तों ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मिशन कायम कर रखा है, वो भी नौकरी छोड़ने के बाद और कुछ नौकरी रिटायरमेंट के बाद। तो हम क्यों नहीं कर सकते, हमें भी अपनी लाइफ में कोई ना कोई मिशन बनाना होगा, कोई ना कोई लक्ष्य बनाना होगा और फिर जुट जाइए उस जुनून के साथ। क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि सांस लेने की प्रबल इच्छा तक का जुनून चाहिए यदि हम सफल होना चाहते हैं तो।

तो दोस्तों इसी के साथ अब अपनी रेडियो दोस्त मधु को आज का ये कार्यक्रम कुछ तुम चलो कुछ हम चले यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिए। इसी नोट के साथ कि हम संकल्प लें कि अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखेंगे, मेहनत करेंगे और समय का सम्मान करेंगे, कभी हार नहीं मानेंगे। आपने ट्यून किया FM हमीरपुर 101.8 MHz पर, 10:45 हुए हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंग।

श्रोतियों राम राम जी। लोक रंग सुनने वाले सारे श्रोतियों का इस कार्यक्रम च बड़ा बड़ा स्वागत करते प्यार भरा नमस्कार कने श्रोतियों देखा भाई समय कितनी तेज गति ने चलता। आज पहली तरीक हुई जून महीने री, साला रा छठा महीना शुरू हो गया यानी कि आधा साल बीतने जो आ गया। अस बड़ा कुछ सोच देता ली जिस साल शुरू होंगे भी असा ये करना हाँ वो करना कने फिर असं लगी पौंदे अपने रूटीन रे काम च कने भूली जाते बई अपनी थाई भी तो कुछ करना था से जो सोची रहा था शुरू च अपने शौक अपने सपने बई ए समय ता

सब कुछ पूरा करने रहा था है ना, पर क्या कर दिया है। आहें बोल दे भी टाइम ही नहीं मिल लिया था, क्या करना भाई, 6 मिनट तक ये निकली ये पता ही नहीं लग गया। तो टाइम जे आसे आसा रहे कठे कुसी और ही निकालना नहीं आ, कने टाइम तो आसो आपू जो आपू ही निकालना पौना, क्योंकि जितने भी लोग से जे अपने ताई टाइम निकाल दे तिना भले भी 24 घंटे होंगे दिना रे, कने आसा भले भी दिना रे 24 घंटे, तो ये समय बीतता जाना कने ना 24 घंटिया च आसा समय निकाली पाना कि नहीं निकाली पाना या किया निकालना, चला इस बारे च आज थोड़ी जी इस कार्यक्रम च गलबात होनी, कने सौगी सौगी तो साहब दसना सा कि अगर नहीं अपने बारे च अहें सोचे तो क्या होना पता, ये जो 6 महीने अगले जाने ना ये भी ऐ चली जाने, तो भाई तुसे थोड़ा जहा सोचा इस बारे च भी किया क्या हो सकता, कने तू तक अहें सुना दे तो सा जो कार्यक्रम रा पहला लोक गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंग। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 MHz पर। सुबह के 11 बजने को है। अब आकाशवाणी शिमला से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में हुए जिला परिषद चुनाव के लिए मतों की गिनती जारी है। अभी तक कुल 251 जिला परिषद वार्डों में से 229 वार्डों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इनमें से 136 वार्डों में भाजपा समर्थित जबकि 52 वार्डों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार विजयी रहे हैं। 43 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार अभी तक ऊना जिला में सभी 17, बिलासपुर में 14 में से 7, कांगड़ा में 54 में से 22, किन्नौर में 11 में से 9, कुल्लू में 14 में से 11, शिमला में 25 में से 20, हमीरपुर में सभी 19, मंडी में 36 में से 23, चंबा में 18 में से 12, लाहौल स्पीति में सभी 10, सिरमौर में 17 में से 10 और सोलन में 17 में से 14 जिला परिषद वार्ड सदस्यों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार जिला परिषद के नतीजों में अधिकांश जिलों में भाजपा समर्थित उम्मीदवार विजयी हुए हैं। मंडी जिला परिषद के नतीजों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। मंडी जिला कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व मंत्री कौल सिंह की बेटी चंपा ठाकुर कोटली वार्ड से जिला परिषद का चुनाव हार गई है। इसी तरह धर्मपुर क्षेत्र के टिहरा वार्ड से पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की बेटी वंदना गुलेरिया भी चुनाव हार गई है।

गुलेरिया मात्र 47 मतों के अंतर से हारी, जबकि चंपा ठाकुर 2,464 मतों के बड़े अंतर से पराजित हुई। चंबा जिला परिषद के अब तक 18 में से 12 वार्डों के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। यहां घोषित परिणामों में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पंडित तुलसीराम की धर्मपत्नी लीला देवी चुनाव जीत गई है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता।

0: इस बीच जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में पंचायत समिति और जिला परिषद के सभी वार्डों के चुनाव घोषित कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में स्थानीय शहरी निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के नतीजे लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत और सरकार की जनहितकारी नीतियों पर जनता के विश्वास का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने शिमला में कहा कि प्रदेशवासियों ने विकास, पारदर्शिता और जन कल्याण को प्राथमिकता देने वाली राजनीति का समर्थन किया है। उन्होंने चुनाव में जीते सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि वे जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए अपने अपने क्षेत्रों के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और जनता द्वारा व्यक्त विश्वास सरकार की और अधिक जिम्मेदारी और समर्पण के साथ कार्य करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के समग्र विकास, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए लगातार कार्य करती रहेगी। प्रदेशवासियों को आने वाले दिनों में प्रचंड गर्मी से राहत मिलती रहेगी। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में आगामी 6 जून तक अलग अलग स्थानों में वर्षा होगी। विभाग ने 3 से 6 जून तक राज्य के 6 जिलों में अंधड़, आसमानी बिजली गिरने और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
1: मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज भी कई जिलों में गर्ज के साथ तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। वहीं 3 और 4 जून के लिए चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में गरज चमक, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। लगातार बारिश होने से हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी का असर काफी कम हो गया है। निचले व मैदानी क्षेत्रों में लोगों को गर्मी से राहत मिली है, जबकि पहाड़ी व ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ठंडा हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक आगामी 6 जून तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 11:05 हुए हैं। अब से लेकर दिन में 12 बजे तक हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
3: श्रेया घोषाल की आवाजों में रश्मि विराग के बोल थे और जावेद मोहसिन का संगीत था। और अब सुनवाते हैं मिताली सिंह का गाया हुआ ये गाना माधोलाल की वॉकिंग फिल्म से। सानिया असलम के बोल हैं और नायाब राजा का संगीत।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: रंग तरंग कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं डॉक्टर बशीर बद्र का कलाम राजकुमार रिजवी की आवाज में।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

मिताली सिंह की आवाज़ में आप सुन रहे थे कतील राजस्थानी का कलाम, और अब आपको सुनवा रहे हैं ये गज़ल राजकुमार रिज़वी की आवाज़ में।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्रेया घोषाल और जावेद अली का गाया हुआ ये गाना।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के ठीक 12 बजे हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम वनिता मंडल।
1: वनिता मंडल, वनिता मंडल।
0: जी, वनिता मंडल कार्यक्रम सुनने वाले सभी हमारी बहनों को, सभी सखियों को, सहेलियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ आज के इस कार्यक्रम में आपकी रेडियो दोस्त मधु,
2: और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। मधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और बहुत दिनों बाद हम इस कार्यक्रम में एक साथ आए हैं।
0: जी तो... बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत खुशी हो रही है कि एक साथ आज का ये कार्यक्रम जो है हम अपनी बहनों के लिए, सखियों के लिए लेकर के आए हैं।
2: जी, और देखिए, जैसे हम लोग बाहर साथ बैठे थे, गपशप कर रहे थे, और देखो दिल की बात दिल तक पहुँचती है तो कुछ समाधान भी निकलते हैं।
0: बिल्कुल,
2: अपना मन भी हल्का होता है। और ऐसे ही हम सखियों से भी ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई दोस्त है तो उसके साथ बैठ करके अपनी मन की बातें की जाए तो मन काफी हल्का हो जाता है।
0: बिल्कुल सुषमा, बहुत सही बात कही, क्योंकि आजकल ऐसा नहीं लगता कि लोग साथ बैठते तो हैं लेकिन अपने मोबाइल साथ में होते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि हम कुछ महसूस करना भूल गए हैं।
2: लाइफ में हम अपने आप को बोर होने ही नहीं दे रहे। 24 घंटे हमने अपनी दोस्ती एक ऐसे
0: गैजेट के साथ
2: कर दी है। हमें लगता है हमारा सबसे अच्छा दोस्त है ये, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम इस दोस्त के साथ बैठ करके समय
0: ज्यादा
2: दे रहे हैं तो हम अपने लिए अपना समय खो दे रहे हैं। हम फील करना भूल चुके हैं। हम असली जो आमने सामने बातचीत होती है उससे जो महसूस होता है वो चीज कहीं ना कहीं खो रहे हैं। और हाँ, हम अपना साथ, अपने विचार और अपनी भावनाएं खोते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल सही सुषमा, रिश्ते, भावनाएं और इंसानी जुड़ाव, ये जो कनेक्शन है ना, ये कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं कम हो रही है। अगर घर में चार लोग हैं तो चारों के पास अपने अपने मोबाइल हैं, और अगर एक ही

0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, जहाँ है
1: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
1: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: वनिता मंडल कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।
3: जी, और देखिए, हमने जो इस सेगमेंट से पहले सेगमेंट में हमने बात की थी कि जो पसंदीदा चीज़ें हैं वो करनी चाहिए। जैसे आप तो पोइट्री का भी शौक रखती हैं। हम बताएं अपने श्रोताओं को, आप एक बहुत अच्छी कलाकारा हैं, कविताएं भी लिखती हैं, आप पेंटिंग भी बहुत अच्छी करती हैं, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अगर हिस्सा बन जाए, तो एक अध्ययन कहता है कि अगर आप किसी कला के करीब हैं तो आप अपनी उम्र को कम कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, और हम क्या करते हैं, हम उम्र को कम करने के लिए एंटी एजिंग क्रीम्स लगाते हैं, इतना सारा पैसा हम खर्च करते हैं ब्यूटी पार्लर्स में जा करके और ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर जो कई बार केमिकली भी हमारे ऊपर, हमारी त्वचा के ऊपर जो है वो
3: साइड इफेक्ट्स
2: डालता है। तो बेटर है कि जितना हम नेचुरल रहें और इन चीज़ों के, और बहुत सही बात है सुषमा कि अगर हमारी हॉबीज़ के लिए हम टाइम निकालें तो एक तो ये हमें मेंटली भी पीस देती हैं, सुकून देती हैं, और साथ में हम अपने आप से जुड़ते हैं, हम जीवंत महसूस करते हैं, है ना?
3: जी जी, बिल्कुल।
2: तो ये जो बात है इसके ऊपर शोध भी हो चुका है, और बिल्कुल सही बात है कि अगर हम कलात्मक गतिविधियों में अपनी भागीदारी निभाएं तो हमारी जैविक उम्र को हम धीमा करने में मददगार ये साबित हो सकते हैं।
3: जी जी, और ऐसे जो अनुभव होते हैं वो मानसिक शांति, सामाजिक जुड़ाव और दिमागी सक्रियता को बढ़ाते हैं और हमारी ज़िंदगी को बहुत अधिक स्वास्थ्य, खुशहाल और ऊर्जावान बनाते हैं। अब एक थोड़ा सा हम अगर इसका एक प्रैक्टिकल करके देखें तो जो हमारी बहनें इस कार्यक्रम को सुन रही हैं, जो भी पसंद है आज थोड़ी देर करके देखिए और फिर देखिए कि क्या कमाल होता है। नहीं तो हमें लगता है कि हमें झाड़ू पोछा, कपड़े, बर्तन
2: और परिवार के सभी सदस्यों की देखभाल करनी है, बच्चों की देखभाल करनी है, और अपने लिए तो हमारे पास समय ही नहीं है, है ना? तो बिल्कुल अलग अलग कलाओं में अगर हम भाग लें, ये हमारे लिए भी फायदेमंद है और हमारे दिमाग के लिए भी, क्योंकि ये हमें स्ट्रेस से निकालता है बाहर, तनाव कम करता है। जैसे पेंटिंग हो गया, संगीत हो गया, नृत्य जैसी गतिविधियां, अगर डांस करना पसंद है तो थोड़ी देर के लिए अपना मनपसंद म्यूजिक लगा करके
3: थिरकिए,
2: बिल्कुल, और तनाव जो है वो कम करता है, हार्मोन कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, लंबे समय तक तनाव शरीर की कोशिकाओं को नुकसान और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर देता है, तो उसको हम धीमा कर सकते हैं। और बिल्कुल, ये तो इसमें तो पैसा भी खर्च नहीं होता। ज़्यादातर हमारी जो महिला बहनें, क्या हम जो ये हम लोग हैं ये सोच रहे हैं कि अपने ऊपर पैसा खर्च करने की बजाय ये पैसा हम अपने बच्चों के ऊपर खर्च करें, घर के परिवार के बाकी सदस्यों के ऊपर, क्योंकि हम अपने आप को बिल्कुल लीस्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं। जो कि अगर हम सही रहेंगे, हम हेल्दी रहेंगे, हमारा मेंटल स्टेटस ठीक रहेगा, तो ही हम परिवार की देखभाल कर सकते हैं।
3: बिल्कुल, परिवार की रीढ़ हम ही होते हैं बहनों, और अगर हम स्वस्थ हैं, हम ठीक हैं, तो हम परिवार को बहुत अच्छे से चला सकते हैं।
2: बिल्कुल,
3: और ऑप्शन तो हमारे हाथ में है कि हमने फैमिली को कैसे चलाना है, शांति से चलाना है या फिर अपने आप को भी स्ट्रेस में लेकर के पूरे परिवार को भी दुख देना है।
2: बिल्कुल,
3: क्योंकि जैसा हमारा रवैया रहता है वैसा ही पूरे परिवार का माहौल बन जाता है, और अपने आप को खुश करने के लिए सबसे पहले अपने आप को टाइम देना ज़रूरी है। जब हम अपने आप को टाइम नहीं देते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों का लोड अपने ऊपर ले लेते हैं, तो फिर हमें स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस होता है तो हमें चिड़चिड़ापन होगा, चिड़चिड़ापन होगा तो सामने वाला बोलेगा चिड़े ही रहते हैं, पता नहीं बात क्या है।
2: हाँ जी, बिल्कुल,
3: पर बात ये है कि आप अपने आप को टाइम दीजिए, और दूसरी बात ये है कि आप परिवार के हर सदस्य का अपने कामों में सहयोग लीजिए।
2: सहयोग, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन निकलती है सुषमा, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता कि हमारे साथ हो क्या रहा है, और उसका कारण हम खुद होते हैं।
3: बिल्कुल,
2: और हम ब्लेम करते हैं बाकियों पर।
3: हाँ जी, एक बात मैं यहाँ पे भी कहना चाहूंगी कि ज़्यादातर लेडीज़ चाहती हैं हमारा घर बिल्कुल चकाचक रहे, चाहे वो वर्किंग वुमेन है, चाहे गृहिणी है, हम चाहते हैं हमारे घर में हर चीज़ व्यवस्थित रहे, सही बर्तन साफ हो, सब कुछ नीट एंड क्लीन हो, लेकिन आप ये देखिए कि आज हम काम कर रहे हैं, कल को फिर वो वैसा ही हो रहा है, ठीक है, और फिर हम कर रहे हैं और हम अपने तरीके से सब कुछ रख रहे हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: अगर इसी चीज़ को हम छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके सबको कहें कि आपका काम ये है, मेरा काम ये है, मैं इतना करूँगी, घर के चार सदस्य हैं, चारों सदस्यों में वो चार काम बांट दीजिए, आपके हिस्से एक चौथाई काम आएगा ना।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: तो इससे स्ट्रेस भी कम होगा और आपके पास वो समय बचेगा, उसको आप अपनी किसी क्रिएटिव चीज़ में लगाइए।

0: बहुत सही बात, और ये तो करना ही पड़ेगा सुषमा, क्योंकि सिर्फ बातें करने से या विचार साझा कर देने से, जैसे हमारे विचार हमारी हमारे फ्रेंड्स तक पहुंच गए होंगे, दोस्तों तक पहुंच रहे होंगे, लेकिन जब तक अनलेस एंड अनटिल वो स्टेप्स नहीं उठाते, वो कदम नहीं उठाते
1: जी
0: इस कॉन्टेक्स्ट में, तो वो सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी,
1: बिल्कुल मधु जी,
0: है ना?
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं अपनी बहनों से कि आप अपने लिए समय निकालिए, अपनी ज़िंदगी के जिम्मेदार खुद बनिए। हम दूसरों पर ही निर्भर रह जाती हैं लेडीज़ ज़्यादातर, कि
0: बिल्कुल
1: कोई
0: बिल्कुल,
1: हमें घुमाने लेके चलेगा तो हम घूमने
0: तो हम
1: जाएंगे,
0: घूमने
1: कोई
0: जाएंगे,
1: हमारे लिए चार प्यार की बातें करेगा तो हम खुश हो
0: खुश हो
1: जाएंगे।
0: जाएंगे।
1: अपनी खुशी की जिम्मेदारी ज़रा अपने हाथ में लेकर के
0: रिमोट
1: देखिए।
0: कंट्रोल हमने एक्चुअली अपनी खुशी का दूसरों के हाथों में दे रखा है, तो उसे बिल्कुल अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। वैसे भी UCL में सोशल बायो बिहेवियरल रिसर्च ग्रुप की प्रमुख और इस अध्ययन की मुख्य लेखिका हैं DG फैनकोट। वो कहती हैं कि कला गतिविधियों में नियमित रूप से भाग लेना ही एकमात्र विकल्प नहीं है, बल्कि अलग अलग तरह की कलाएँ और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेना भी ज़रूरी है। जिस तरह हम अपने पौष्टिक भोजन में अलग अलग तरह की चीज़ें शामिल करते हैं, उसी तरह पढ़ना, संगीत बनाना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जाना, ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करना हमारे संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य पर अलग अलग प्रभाव डालती है ये
1: बिल्कुल
0: चीज़ें।
1: सही कहा है इन्होंने। और जब पेंटिंग हम करते हैं, संगीत करते हैं, नृत्य जैसी गतिविधियों में भाग लेते हैं, या आपको कुकिंग का शौक है, गार्डनिंग का शौक है, इनसे क्या होता है, तनाव कम होता है, कॉर्टिसोल को कम कर सकते हैं, ये जो तनाव हार्मोन है
0: हार्मोन्स
1: हमारी
0: होते हैं,
1: बॉडी में,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और लंबे समय तक ये तनाव शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, जैसे हमने पहले बात की। और फिर हमें लगता है अरे हम तो बूढ़े हो गए, कि लगातार काम कर रहे हैं,
0: लगातार
1: लगातार
0: काम,
1: स्ट्रेस में, कुछ
0: बिल्कुल
1: सालों बाद हम
0: बिल्कुल,
1: शीशे में देखते हैं, क्या ये मैं वही
0: ये
1: हूँ?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही बात। और देखिए, अगर हम ये गतिविधियाँ, इनमें हम भागीदारी अपनी निभाएंगे, भागीदार बनेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो हमारी जो सोशल कनेक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी,
1: जी
0: है ना?
1: बिल्कुल। कई और सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ी है आप, जहाँ जा अच्छी गैदरिंग है, सोशल गैदरिंग है, कोई अच्छा काम हो रहा है, NGOs हैं, उनके साथ जुड़िए, तो सामाजिक रूप से भी आप एक स्ट्रांग लेडी बनकर के उभरेंगी। अकेलापन है और सामाजिक अलगाव जो है वो भी उम्र को बढ़ाने का काम करता है। तो अपने आप को अपने दोस्तों के साथ घुला मिला करके रखिए, अपने जो बातें हैं एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, शरीर की गतिविधि को बढ़ाइए योगासन में, और फिर आप अपनी एक्सरसाइज में टाइम दीजिए, फिर देखिए कमाल होता है। और कमाल होता ही है अगर हम अपने ऊपर ध्यान देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं।
0: बिल्कुल सही कहा सुषमा, क्योंकि अपने ऊपर ध्यान अगर हम देंगे तभी हम दूसरों पर ध्यान दे पाएंगे।
1: बिल्कुल। और तीसरी बात, हमें अपने दिमाग को भी तरोताज़ा रखने की ज़रूरत है और सक्रिय रखने की ज़रूरत है। हमें लगता है एक उम्र के बाद हम पढ़ना बंद कर देते हैं, हमें लगता है अब पढ़ने से क्या ही फ़ायदा होगा, लेकिन पढ़ना जो है हमारी सक्रियता को बढ़ाता है, दिमागी सक्रियता को, याददाश्त को बढ़ाता है, एकाग्रता को बढ़ाता है, और हमारी संज्ञानात्मक क्षमता को बेहतर करता है। तो इसलिए पढ़ने लिखने का शौक भी ज़रूर रखिए, और पढ़िए ज़रूर ताकि हमारा दिमाग चलता रहे।
0: बिल्कुल, और पढ़ने से हमारा मन समृद्ध तो होता है, लेकिन उसमें धार तो तभी आती है सुषमा जी, जब पढ़े हुए पर सोच
1: सोच विचार
0: विचार
1: किया
0: किया जाए
1: जाए।
0: और हम उस कॉन्टेक्स्ट में कदम उठाएं, है ना?
1: जी, तो चलिए
0: चलिए
1: अब कार्यक्रम में आगे बढ़ा जाए और प्यारा सा गीत यहाँ इस मोड़ पर सुन लिया जाए।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वनिता मंडल।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: जी एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम अपनी सभी बहनों का उनके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है वनिता मंडल। और जी देखिए, हम कहते हैं कि हमें अपनी मर्जी की चीज़ें करनी चाहिए, जो पसंद है वो करना चाहिए। आज इसी बारे में हमने बातचीत की, लेकिन कई बार क्या होता है ना, चिड़चिड़ापन सिर्फ इस वजह से नहीं होता कि हमें बहुत तनाव है, उसकी वजह से एक काम और भी होता है कि हम प्रॉपर सो नहीं रहे, इस वजह से भी चिड़चिड़ापन।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अनिद्रा जिसको हम कहते हैं, और आज जो है ये एक गंभीर समस्या के रूप में उभर रही है। इसका कारण मुझे ज़्यादातर जो लगता है वो एक तो स्ट्रेस है, और दूसरा जो मोबाइल है वो भी एक
4: जो हमारा नींद का पैटर्न डिस्टर्ब हुआ है, मोबाइल उसमें बहुत बड़ा अहम रोल का है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नींद को लेकर हम कितने असावधान हैं, क्योंकि शहरों में हर 3 में से एक व्यक्ति को नींद से जुड़ी किसी न किसी समस्या का सामना तो करना ही पड़ रहा है।
4: जी।
0: और सोचने वाली बात यह है कि साधनों के बढ़ने के साथ जीवन की सहजता जो होनी चाहिए वो घटती जा रही है।
4: बिल्कुल, मोबाइल का इतना अनियंत्रित उपयोग हम कर रहे हैं कि इसने हमारी जो बॉडी की क्लॉक है उसको ही डिस्टर्ब कर दिया।
0: बिल्कुल,
4: ज्यादातर बच्चे और युवा हम पूरा दिन काम करते हैं, शाम को सोने जाते हैं, चलिए 5-10 मिनट थोड़ा देख ले, अपने लिए टाइम नहीं निकाला, मोबाइल देख लेते हैं, फिर वो 11 बजते हैं, 12, 1 बज जाता है, पता ही नहीं चलता। फिर जब रात को इतनी लेट सो रहे हैं तो ये कैसे हम मान लें कि सुबह हम जल्दी उठ के
0: जल्दी
4: खुद को फ्रेश फील करेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चे हों या फिर युवा हों या फिर लेडीज हैं, चाहे घर की जितनी भी हमारी महिला बहनें हैं, 11 बजे के बाद हम जब सोने जाते हैं तो हम करते क्या हैं, जब सो जाते हैं तो सोते वक्त भी मोबाइल को, पहले तो मोबाइल देखते कि दिन की थकान मिटाते
4: जी,
0: हैं
4: जी।
0: मोबाइल को हमने थकान मिटाने का एक जरिया मान लिया है ना, और थकान मिटाते मिटाते ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा टाइम उसमें लगा देते हैं। और दूसरा, मोबाइल को हम अपने सिरहाने रख कर सोते हैं, उसका असर भी हमारे स्वास्थ्य पर बहुत गलत पड़ता है। जीवन में हमारा जो खुशी का स्तर है वो घटता हुआ साफ नज़र आ रहा है। तनाव और भारीपन के साथ सुबह उठना जो है अब सामान्य होता जा रहा है।
4: बिल्कुल,
0: है ना।
4: और नींद से संबंधित समस्याओं के लिए ना एक रिवर्स रिकॉल मेडिटेशन एक प्रभावशाली विकल्प के रूप में सामने आ रहा है मधु जी। इस तकनीक में करना क्या होता है कि सोने से पहले लगभग 1 सप्ताह तक दिन भर की घटनाओं को उल्टे क्रम में, यानी रात से सुबह की ओर एक साक्षी की भांति देखना होता है, यानी हम देख रहे हैं हमारे साथ जो भी हुआ रात से लेकर सुबह तक। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हम उन यादों को अपने साथ जोड़कर ना देखें, बस उन्हें देखें और उनको देखते हुए गुजर जाएं। इस अभ्यास के परिणाम बहुत आश्चर्यजनक रहे हैं। इससे तनाव दूर होता है, भविष्य की चिंताएं दूर होती हैं,
0: मन शांत हो जाता है।
4: बिल्कुल, वर्तमान में बने रहने की क्षमता आती है, और ये पता चलता है भाई जो समय बीत चुका है वो हमारे हाथ में है ही नहीं।
0: ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो पल है ये अभी थोड़े ही टाइम के बाद इतिहास बनने वाला है। बिल्कुल। तो चलिए, आशा करते हैं कि ये जानकारी हमारी, और ये बिल्कुल स्वाभाविक चीज़ें हैं जो हो रही हैं हमारे साथ, तो ये पसंद आई होगी और कोशिश रहेगी कि वो
4: अपने जीवन का
0: जीवन
4: भी हिस्सा बने,
0: ना सिर्फ इसको सुना होगा बल्कि इसको अपने जीवन में भी उतारेंगे। इसी नोट के साथ अब अपनी रेडियो दोस्त मधु को
4: और सुषमा को दीजिए इजाज़त।
0: नमस्कार।
5: वनिता मंडल, वनिता मंडल।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वनिता मंडल। हम आकाशवाणी हमीरपुर से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। लेकर हाजिर हुए हैं आपका अपना कार्यक्रम सैनिकों के लिए, और सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम में ये गीत।

जी श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना नीति मोहन की आवाज में, संजय लीला भंसाली की के संगीत में। इस गीत को लिखा था सिद्धार्थ गरिमा ने। और अब बढ़ रहे कार्यक्रम में आगे, सुनवा रही हैं आपको अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में ये गीत।

गीत और संगीत की ये प्यारी सी महफिल सजी है इस वक्त आकाशवाणी हमीरपुर के साथ, और कार्यक्रम का अगला गीत आपके नाम है। जी हाँ, मेरे महबूब मेरे सनम, यही गीत के बोल हैं। उदित नारायण अलका याग्निक ने इस गीत में अपनी आवाजें दी हैं। डुप्लीकेट फिल्म का गीत है, अनु मलिक के संगीत निर्देशन में इसे लिखा है जावेद अख्तर ने।

0: जी श्रोताओ, प्यार की परिभाषा बयां करता है ये गीत अभी आपने सुना परदेसी बाबू फिल्म से। इस गीत को गाया था कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण ने। सैनिकों के लिए कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से FM बैंड 101.8 MHz पर।
1: भोली सी सूरत, आँखों में मस्ती, आए हाय।
0: दिल तो पागल है इस फिल्म का गीत अब आपके रेडियो सेट्स पर है, उदित नारायण लता मंगेशकर के युगल स्वरों में।

सैनिक भाइयों, इसी गीत के साथ अब आज का सैनिकों के लिए कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। दीजिए अपने रेडियो दोस्त सुषमा को इजाजत। जय हिंद।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर।

सुरीला सफर कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम की बात और इस कार्यक्रम के गीत होते हैं बहुत ख़ास, और आज भी कुछ ऐसी ही बात है, ऐसा ही कार्यक्रम है। तो चलिए ना एक सुरीले सफ़र पर हमारे साथ। इस सुरीले सफ़र में आज की जो इबारत है वो हम बता देते हैं, ख़ास तौर से उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी नहीं देखा है फेसबुक पर इस इबारत को। इबारत कुछ इस तरह से है, उनका प्यार नहीं बटता, चाहे दुनिया एक बटा दो हो जाए। वो सिखाते हैं गगन में उड़ते मस्त पंछी की तरह जीना, रोते रोते हंसना, दिल की गिरह खोल कर बाहर से अंदर तक दुनिया को समझना। उनके होठों पर बड़ा नाम करेगा या राज करेगी जैसी दुआएं रहती हैं, मुड़ के ना देखो या चुनरी संभालो जैसी उनकी हिदायतें जिंदगी भर साथ रहती हैं, याद रहती हैं। याद आती हैं उनकी सुनाई हंसों की कहानी, और गुजरते जाते हैं दिन महीने साल, हम सीख जाते हैं साथी का साथ देना। खुश रंग हिना की खुशबू लेकर डोलती पवनिया से दिल का संदेश कहना, उनका हाथ लगते ही बिगड़ता काम बन गया है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? वैसे आखिरी लाइन तो एक हिंट थी आपको ये जानने के लिए कि देखिए आज आपने इस कार्यक्रम की क्या बातें होने वाली हैं उन्हें समझा है या नहीं, या ये इबारत की सोर इशारा कर रही है। और बेहद खुशी की बात है कि हमारे सभी श्रोताओं ने जल्दी से जल्दी इस थीम को पहचान लिया। हाँ, आज विश्व अभिभावक दिवस है और इसीलिए बातें हो रही हैं उन अभिभावकों की, माता पिता की, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। ऐसा हमारे एक साथी कह रही हैं, सच कहूँ तो माँ पापा का प्यार ऐसा ख़जाना है जिसकी कीमत कभी नहीं लगाई जाती। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे तब भी माँ पापा का प्यार हमारे साथ खड़ा रहता है। उनकी दुआओं में इतनी ताकत होती है कि जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान लगने लगती है। उनके जैसा चाहने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होता। माँ पापा का प्यार शब्दों में नहीं बल्कि उनकी हर चिंता, हर दुआ और हर त्याग में दिखाई देता है। क्या बात है। इन्होंने ये भी लिखा है कि आज के कई गाने हम समझ गए हैं और वो गीत हम विविध भारती पर सुनते भी रहते हैं, पर बताएंगे नहीं। जो गीत सही होगा उस समय बता देंगे, सच ही कहेंगे, आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप हमारी प्यारी सी उद्घोषिका के साथ एक सखी भी हैं। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अनमोल दोस्ती होती है ये, जब इस तरह से हम बात शुरू करते हैं और हम जो कहते हैं वो आप झट से समझ लेते हैं। हमारे साथियों ने बताया है कि वो तमाम गाने बताए हैं जिन पर आज की ये इबारत रची गई है, और कुछ साथियों ने ये भी कहा है कि सारे गाने तो इबारत में ही छुपे हैं और एक एक गाना उनको समझ में आ गया है। क्या बात है। तो भाई ये गाना आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आज आपकी पसंद के सारे गाने आ रहे हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आज गद्यांश को बहुत ही सुंदर भावों से सजाया है और शब्दों के चित्रण में माता पिता के ममत्व की सुमधुर खुशबू को पसारा है। माता पिता का प्यार इस दुनिया का सबसे निस्वार्थ, पवित्र और अनमोल एहसास है। ये वो पूंजी है जो हमें जीवन के हर कदम पर हिम्मत, सुरक्षा और सही संस्कार देती है। प्यार, ममता और अपनत्व का पूरा संसार आज रच दिया है। दो पंक्तियां साझा करूंगा, तुम्हारा जिक्र भी कितना अजीब है मेरे चेहरे पर, तुम्हारा जिक्र भी कितना अजीब है मेरे चेहरे पर, आते ही लबों पर मुस्कान और आंखों में नमी छा जाती है। वाह क्या बात। एक और श्रोता कह रही हैं कि कहीं पढ़ा था बच्चे को माँ 9 महीने तक गर्भ में रखती है, अपनी बाहों में 3 साल और अपने हृदय में तब तक जब तक कि खुद उसकी मृत्यु ना हो जाए। पिता के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि बचपन से पिता से एक अव्यक्त दूरी अपने आप बन जाती है, मगर पिता का हृदय बच्चे के लिए एक पाठशाला की तरह है। बच्चा समुद्र की गहराई में ना डूबने पाए इसके लिए पिता तमाम जतन जीवन भर करते रहते हैं और उनकी छवि एक कड़क पिता के रूप में बच्चों के हृदय में दर्ज हो जाती है। मगर पिता के सीने में भी एक नाजुक दिल धड़कता है। मंगल नसीम की लिखी कुछ पंक्तियाँ यहाँ साझा कर रही हूँ।
کیا سیرت کیا صورت تھی، ماں ممتا کی مورت تھی، پاؤں چھوئے اور کام ہوئے، اماں ایک مہورت تھی، بہت سندر۔ ایک اور سندیش ہے کہ آج کی بھارت میں ماتا پتا کے پیار کی خوشبو مہک رہی ہے، واتسل اور سوسنسکاروں کا سنتولت جیون رس لے کر ان کے بچے خوشی سے پھولے پھلیں، ایسی ان کی منوکامنا ہوتی ہے، نسوارتھ بھاؤ سے وہ اپنی سنتان کو آدھار اور سرکشتتا دیتے رہتے ہیں، ان کے پریم کی گہرائی کبھی ماپی نہیں جاتی۔ ماتر دیوو بھو، پتر دیوو بھو، اور انہوں نے بہت سارے گانے لکھے ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ آج ان کی پسند بالکل ہم سے ہی ملنے والی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک اور شروتا کہہ رہے ہیں کہ آج ویشوک ابھیواوک دیوس پر یہ عبارت ماتا پتا اور ابھیواوکوں کے نسوارتھ پریم، تیاگ اور مارگ درشن کو سندرتا سے ویکت کرتی ہے۔ ان کا پیار کبھی بڑھتا نہیں بلکہ ہر پرستھتی میں سنتان کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ وہ ہمیں جیون کی کٹھنائیوں میں مسکرانا اور صحیح راہ پر چلنا سکھاتے ہیں۔ ان کی دعائیں، سیکھ اور ہدایتیں عمر بھر ہمارا سنبل بنی رہتی ہیں۔ ان کے اسنیہل اسپرش میں ایسا وشواس ہوتا ہے کہ بگڑے کام بھی بن جاتے ہیں۔ ابھیواوک ہمارے جیون کی وہ انمول چھایا ہے جن کی یاد، سیکھ اور پریم ہر دن ہمارا مارگ روشن کرتے ہیں۔ بہت سندر لکھا آپ نے، اور اب ہم سنوا رہے ہیں یہ گانا، سنیے اور بتائیے فلم کا نام، اور ہاں آوازیں کن کی ہیں۔

बिल्कुल सही जवाब आ गया। फिल्म कालीचरण का गाना अनुराधा पौडवाल, कंचन और साथियों की आवाज़ें, और ये भी बता दिया हमारे श्रोताओं ने, रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी लिया है, प्रेम नाथ जी का नाम भी लिया है। और एक श्रोता कह रहे हैं कि त्याग और समर्पण की सराहना, माता पिता अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए अपनी खुशियों का त्याग करते हैं, ये दिन उनके इसी निस्वार्थ भाव को मान्यता देने के लिए है। प्रथम गुरु माता पिता बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं, वे ही बच्चे को संस्कार और जीवन जीने के सही मूल्य सिखाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं, काफ़ी बड़ा सा लंबा सा मैसेज है, हम छोटा करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। अभिभावक हमारे जीवन की वो अमूल्य छाया हैं जिनके स्नेह, त्याग और आशीर्वाद से हमारा जीवन संवरता है। उनका प्यार कभी नहीं बटता, उनकी दुआएं हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती हैं। उनका स्नेह किसी नदी की तरह होता है जो बिना किसी भेदभाव के निरंतर बहता रहता है। उनकी बातें, हिदायतें और स्नेह समय के साथ और भी अनमोल लगने लगते हैं। संसार में यदि निस्वार्थ प्रेम का कोई सबसे सुंदर रूप है तो वो माता पिता का प्रेम है। और आगे लिखते हैं कि आज वैश्विक अभिभावक दिवस पर ये इबारत माता पिता और अभिभावकों के निस्वार्थ प्रेम, त्याग और मार्गदर्शन को सुंदरता से व्यक्त करती है। उनका प्यार कभी नहीं बटता। वाकई एक संदेश है, आज का सुरीला सफ़र शुरू करने से पहले दो घटनाओं का जिक्र करना है। महान ज्येष्ठ गायिका सुमन कल्याणपुर का ध्यान, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, होम शांति। महानायक शोमैन राज कपूर का आज स्मृति दिन है। उस आवारा छलिया अना

नेट पर जो आधारित था सुमन कल्याणपुर पर। और अब कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं। ये गाना सुनिए और बताइए कि जो नायक है उनके हाथ में क्या है, ये आपको बताना है। और एक सवाल और है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने माता पिता के प्यार की बात की है। भाई कभी डांट भी तो पड़ी होगी या कभी अच्छी तरह से धुलाई भी हुई होगी, अगर याद हो, जिसे जिसके बाद आपने अपनी वो बात छोड़ दी जिसके लिए धुलाई या पिटाई हुई थी, तो वो भी हमें बताएं।

कयामत से कयामत तक फिल्म का ये गाना उदित नारायण की आवाज़ में, और हमारे श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने तुरंत बताया कि फिल्म में आमिर खान इलेक्ट्रिक गिटार लिए हुए हैं। बिल्कुल सही जवाब, और इस सही जवाब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही बहुत सारे प्यारे प्यारे संदेश भी हैं। एक श्रोता ने बताया है कि मेरी धुलाई 8वीं तक बहुत हुई है, खासकर तब जब गणित के सवाल नहीं बनते थे, पर जब 9वीं कक्षा में आई तो पापा ने एक दिन मेरे दोनों भाइयों और माँ को ख़ास तौर पर बोला था, अब इस पर कोई भी हाथ नहीं उठाएगा। हाँ, बहुत अच्छा लगता ना जब ऐसे कहा जाता है, लगता सच में हम बड़े हो गए, है ना। एक श्रोता कह रहे हैं, माता पिता ही तो हर एक जीवन के मूल में हुआ करते हैं, और वे अपने वैश्विक परिवार को वट वृक्ष की तरह न केवल पालते पोसते हैं, उनके पालन पोषण से अभिषिक्त हृदय ही तो भली भांति ही नहीं अपितु सुहृद के साथ गाया करते हैं कि धरती मेरी, माता पिता आसमान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान। वह अपने गीत की पंक्ति जो है बड़ी सुंदरता से पिरो दी। हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं कि भाई चाचा चाची भाई भाभी भी तो होते हैं अभिभावक। बिल्कुल सही, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी यही कहने वाली थी कि बहुत बार बड़े भाई या बड़ी बहन बिल्कुल अभिभावक बनकर पालते पोसते हैं, और बहुत सारी बातें उनसे साझा करते हैं, और माता पिता से ज़्यादा करीब उनके हो जाते हैं। तो अगर कुछ ऐसा हो तो उनके बारे में भी बताइए, और साथ ही ये भी बताइए कि जो हमने पहले पूछा था ना कि किस बात के लिए धुलाई हुई थी, एक श्रोता ने बताया, अगर आपको याद हो आ रहा हो तो ज़रूर बताइए, क्योंकि मम्मी पापा की तो पिटाई भी बहुत प्यारी होती है। आप भी इत्तेफाक रखते हैं ना इस बात से? संदेश मिला एक श्रोता का, कह रहे हैं कि जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, मिल गए विविध भारती पर, तुम तो सहारा मिला, आ गए एक नए रास्ते पर कदम, जब सुरीला सफर का नज़ारा देखने मिला, तब से पंछी बनूं उड़ता फिरूं विविध भारती के मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूं प्रसारण तरंगों पर, दिल की गिरह खोलकर चुप ना बैठूंगा मैं, क्योंकि यहां कोई नहीं है अजनबी, मुड़ मुड़ के ना देखो मुझे, तुम मेरे पास आओ, VBS के साथ साथ गुजर जाए हर दिन, दिन हर पल गिन गिन साथिया साथ निभाना, साथी मेरे विविध भारती के राह में छोड़ ना जाना। बहुत सुंदर। आज की इबारत यही इंगित कर रही है कि ज़िंदगी का सब कुछ सीखने व सिखाने वाले हमारे अभिभावक हमारे माता पिता होते हैं। बेहद खूबसूरत इबारत है। आज विश्व अभिभावक दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे जीवन के सभी प्रियजनों को माता पिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माता पिता एक बेहतर कल के निर्माता हैं। इस दुनिया का भविष्य उनके द्वारा प्रतिदिन हर पल निभाए जाने वाले कर्तव्यों पर बहुत हद तक निर्भर करता है। हम सभी पर अपने माता पिता की शुभकामनाएं आशीर्वाद सदैव बना रहे। पर अब एक गाना सुनिए, बताइए फिल्म का नाम क्या है और ये कौन सी अभिनेत्री गा रही हैं।

0: हमारे साथियों ने बता दिया, जाहिदा हुसैन अभिनेत्री नरगिस की भांजी थी, अनोखी रात फिल्म का ये गाना। बहुत बहुत शुक्रिया सही जवाब के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। शैतानियों की भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: तो भाई, माँ बाप की, माता पिता की जो डांट होती है वो भी बड़ी मीठी होती है, और उस मीठी डांट को याद करते करते और ये संदेश लिखते हुए ज़रूर हमारे जो साथी हैं, श्रोता हैं, वो मुस्कुरा रहे होंगे। लिखते हैं, हम 6 भाई 3 बहनों का लंबा परिवार है। मैं 7वीं नंबर पर हूँ, अतः बचपन में डांट मार आम बात थी, चाहे बड़े भाई से हो या माँ से। हाँ, पिताजी ने कभी नहीं मारा। क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि बात बचपन की है, पिताजी ने गणित में भाग के कुछ सवाल स्लेट पट्टी पर लिखकर हल करने को दिए। उस समय गणित कमज़ोर था, 2 झपटे ऐसे पड़े कि सारे सवाल मैंने हल कर दिए। तब से लेकर आज तक कभी भी गणित में फेल नहीं हुए। वाह, क्या बात है। एक और श्रोता बता रही है कि बचपन में माँ की साड़ी पहन के खूब खेल कूद कर गंदी करके रख दी, और जब माँ ने 3-4 तमाचे लगाए तो साड़ी पहनने का सारा भूत उतर गया। ओहो। एक और श्रोता ने बताया है, माँ तो खैर बहुत जल्दी चली गई थी, हम भाई बहनों को तो हमारे पापा ने ही बड़ा किया है और उन्होंने कभी भी हमें नहीं डांटा। आज भी वो हम भाई बहनों के साथ ही सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। उनकी ज़रा भी तबीयत खराब होती है तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। सच ऐसा ही होता है। एक और श्रोता ने बताया है कि शैतानियाँ तो बहुत होती थी, पर इन शैतानियों का सरताज भैया रहता था। बेचारा भैया को ही पड़ जाता था। माँ कभी किसी को नहीं मारती थी, माँ इमोशनल ब्लैकमेल करती थी। उसके उस इमोशनल ब्लैकमेल के डर के मारे हम अपनी गलतियाँ स्वीकार कर लेते थे। बोलती थी कि अगर तुमने झूठ बोला तो मेरे मुँह से खून निकल आएगा। पता नहीं कैसे माँ समझ जाती थी कि हम झूठ बोल रहे हैं, और वो मुंह में कुछ लाल रंग का चीज डालकर दिखा देती थी कि मेरे मुंह से लाल खून जैसा कुछ है, और हम भाई बहन डर के मारे उसे पकड़ के रोने लगते थे और अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते थे। पिताजी गुस्सैल थे पर हम लड़कियों को कभी नहीं मारते थे। इसी जून में 2 साल पहले माँ भी चली गई। इन सब बातों को याद करके मन थोड़ा भावुक भी हो रहा है। बिल्कुल हो जाता है। एक और साथी बता रहे हैं कि हम लोग अपने पिताजी से बहुत डरते थे, उनका रौब घर में था। हमारी बुआ चाचा भी उनसे डरते थे, डांटने पर कभी भी उलटकर जवाब नहीं देते थे, माँ से हर तरह से बात कर लेते थे। हम लोगों की बहुत सी गलतियों के कारण हमारी माँ भी डांट खा जाती थी। अब माता पिता कोई नहीं है, अब कोई डांटने वाला नहीं है। सच ये बात बहुत कसकती है। एक श्रोता ने कहा है कि इबारत भावनापूर्ण पारिवारिक रिश्तों को चित्रित करती है और हमें बचपन के गलियारों की सैर कराती है। सही है, माता पिता और पारिवारिक संरक्षण ही शैशव काल से उत्तरार्ध तक बौद्धिक शारीरिक नैतिक विकास में सहायक होता है। पुराने काल के संयुक्त परिवार बहुमुखी विकास का मुख्य कारक होता था, जहाँ चाचा चाची ताऊ ताई बुआ सभी के सानिध्य में बचपन गुजरता था। अब एकाकी परिवार का चलन और 1 या 2 बच्चों में सीमित परिवार रह गया है। भविष्य में मौसा मौसी बुआ शब्द शब्दकोश से लुप्त हो जाए तो आश्चर्य नहीं। बहुत भावुक विषय पर इबारत है। हाँ है, तो बहुत दिल को छूने वाली बात। तो चलिए अब ये गाना सुनते हैं, बताइए कि आवाज़ किन की है और संगीतकार कौन है।
4: हंसना सीखो।

जवाब आया हमारे श्रोताओं ने बताया, अंधा कानून फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज़, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का है। बहुत बहुत शुक्रिया। और संदेश जब आए हैं तो पिटाई की बातें भी आई हैं। हमारे एक श्रोता ने कह रही हैं कि आजकल माता पिता अपने बच्चों को मारते नहीं, प्यार से समझाते हैं। भाई हम लोग तो बिना मार खाए समझते ही नहीं थे। नई पीढ़ी को ये बात संभवतः अजीब भी लगे, पर इतनी मार डांट के बाद भी प्यार भी तो सबसे अधिक करते हैं। माँ पिता जैसा और कोई नहीं होता। बहुत सुंदर बात कही आपने। एक और श्रोता कह रही है कि शादी के बाद माता पिता के साथ सास ससुर भी हमारे अभिभावक होते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत कम बोला जाता है। तो आप बताइए ना, कुछ अगर आपके पास कोई अनुभव हो या उनसे जुड़ी कोई बात हो, उनके प्यार का कोई खास पल आपने अगर जिया हो तो उसे हमारे साथ भी साझा करिए। एक संदेश में कहा है कि पांचवी कक्षा में एक बार स्कूल से छुट्टी होते ही सहेली के घर चले गए थे। उस समय इस बात का अनुमान नहीं था कि घर पे सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। चिंता बढ़ने पर पापा जी स्कूल पहुंचे तो पता चला सब बच्चे चले गए हैं। 2 घंटे बाद जब घर पहुंचे तो माँ का गुस्सा पिटाई के रूप में मिला। थोड़ी देर बाद पापा जी भी घर आए। उन्होंने प्यार से समझाया कि पहले घर आओ फिर बता कर जाओ। ऐसा खट्टा मीठा अनुभव रहा जो अब तक याद है। सच में वो जो धक धक धक धक होती है जब पिटाई होने वाली होती है, वो बड़ी ख़तरनाक होती है। और पिटने के बाद जब प्यार मिलता है और जो चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, वो बड़ी ही प्यारी होती है। एक श्रोता कह रही है कि हमारी पिटाई तो नहीं हुई क्योंकि हम तो दूसरों को मारते या डांटते देखकर ही रो देते थे। जब कभी पापा हमारे छोटे भाई को उसकी गलती के लिए मारते थे, हम रो देते थे। तब बहुत छोटे थे तो पापा कहते थे अब तुम्हारी वजह से इसे डांट भी नहीं सकते। और कभी कभी जब हम शिकायत करते कि इसने रेडियो फेंक दिया, वो ख़राब हो गया, तो पापा कहते तुम बताओ हम क्या करें। एक श्रोता ने लिखा है कि मायके में माता पिता का साथ एक बेटी के लिए सबसे बड़ा भावनात्मक संबल और सुरक्षा कवच होता है। ये वो सुरक्षित कोना है जहाँ बिना किसी शर्त के प्रेम, निस्वार्थ सहयोग और बचपन जैसी बेफिक्री मिलती है। मायके में माता पिता के सानिध्य के मुख्य पहलू, विवाह के बाद जीवन के हर उतार चढ़ाव में माता पिता की मौजूदगी एक ढाल की तरह काम करती है। सही बात है, उनके पास बिताया गया समय मानसिक शांति और ऊर्जा देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक श्रोता ने कहा है कि इंसान को पक्षियों की तरह उन्मुक्त होकर जीने, वर्तमान में रहने और प्रकृति के करीब रहने का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। पक्षी कल की चिंता में नहीं जीते, वे आज के हर पल का आनंद लेते हैं। इसलिए इंसान भी भविष्य के तनाव को कम करने के लिए वर्तमान में जीना सीख सकते हैं। पक्षियों ने कभी अपने बच्चों को घोंसला बनाकर नहीं दिया, वो तो सिर्फ अपने बच्चों को उड़ने की कला सिखाते हैं। तनाव मुक्त रहने और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने का नज़रिया पक्षियों की तरह ही होना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही आपने। तो अब अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं। गाने को सुनिए और बताइए कि इस फिल्म में अभिनेता कौन है।

फिल्म रात और दिन का गाना लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ें, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, और बिल्कुल सही जवाब के लिए बेहद बेहद ढेर सारा शुक्रिया। हमारे एक श्रोता ने बता दिया, तमाम श्रोताओं ने बताया कि प्रदीप कुमार और फिरोज खान इस फिल्म में अभिनेता के रूप में नज़र आए थे। और अब संदेशों की बात हम करें, लेकिन उससे पहले एक सवाल और। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें मम्मी पापा घर में छुपा कर रख देते हैं, बाद में देते हैं, हमारे ही लिए रखते हैं, लेकिन वो छुपा हुआ ख़जाना ढूंढना उस समय बहुत एडवेंचरस लगता है, बड़ा रोमांचकारी लगता है। और कई बार वो ढूंढ भी लिया जाता है, और ढूंढने के बाद जब पता लगता है तो क्या होता है? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो हमें ज़रूर बताएं। एक श्रोता लिखते हैं कि ज़रूरी नहीं कि मार के डर से ही डरें, हमारे मम्मी पापा आंखों से डरा देते थे। जी हाँ, ये आंखों का अनुशासन भी गजब का होता था। एक और श्रोता कह रहे हैं कि बाबूजी हम लोगों को जूते डंडा से पीट देते यदि उनके सामने आवाज़ वाला खेलते थे, पर माँ गलतियों पर झाड़ू से मारती थी, पढ़ने को हमेशा बोलती थी, इसलिए आज हम भी अच्छे जॉब में हैं। बाबूजी किताब के लिए हमेशा आगे रहते थे, कलाकार हैं, बाबूजी दोनों हाथों से लिखते हैं, चित्र बनाते हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है। एक और संदेश में बताया है कि बचपन में माँ बड़े भाई मास्टर जी से मार खाने और उससे बचने के लिए दूर दौड़ कर भागने का आनंद ही अलग था। और एक संदेश है कि हमारी पीढ़ी वो थी, माता पिता की मार खाकर रोते थे, इतना रोते थे कि चुप कराने के लिए भी मार खाने के बाद चुप होते थे। क्या बात है। इन बातों के साथ चेहरे पर आप सभी के मुस्कान भी आती जा रही है। और एक संदेश में कहा है कि माता पिता बच्चे को प्यार, संस्कार और सुरक्षा देकर पालते हैं, जबकि सास ससुर का रिश्ता हमें परिस्थितियों का सामना करना, समझौता करना और एक नई सामाजिक दुनिया में अपनी पहचान बनाना सिखाता है। हर परिवार और परिस्थिति अलग होती है, कई बार सास ससुर का अनुभव और सीख जीवन में मजबूती लाते हैं, तो कभी उनके साथ का संघर्ष व्यक्ति को आत्मनिर्भर और साहसी बना देता है। एक श्रोता ने बताया है कि हम जब मुंबई में रहते थे, फोर्थ क्लास में था, तो एक दिन मैं स्कूल से घर वापस आ रहा था, मेन रोड क्रॉस कर रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया और कार टैक्सी ने मुझे टक्कर मार दी, मैं बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया तो टैक्सी ड्राइवर अंकल जी बहुत डरे हुए थे, वैसे गलती मेरी थी, दूसरे लोगों ने मुझसे पूछा कि घर कहाँ है, हम छोड़ दें, मैं कहने लगा अंकल मुझे छोड़ने मत चलो प्लीज़, मम्मी बहुत डांटेगी और पिटाई होगी, मैं चला जाऊँगा। फिर भी ड्राइवर अंकल छोड़ने चले, परंतु पूज्य माता जी को घटना का पता चला तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया और खुद ही रोने लगी, कहीं मुझे ज्यादा चोटें तो नहीं आई हैं। ये होता है माँ का प्यार, और मैं डर रहा था। तो अब वो खजाने वाली बात अगर याद आ रही हो तो जरूर बताएं, और बताएं कि इस फिल्म के गीतकार संगीतकार कौन हैं।

फिल्म श्री 420 के इस गाने के लिए सही जवाब आ गया। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था, शंकर जयकिशन का संगीत था इस फिल्म में। आशा भोसले और मन्ना डे के साथ साथियों की आवाज़ों में आपने ये गाना सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। रात और दिन फिल्म का जो गाना आपने इससे पहले सुना था उसके बारे में हमारे एक श्रोता ने बताया कि वोल्स धुन पर विशेष आधारित नरगिस जी और फिरोज खान, रात और दिन शंकर जयकिशन जी का संगीत, अकॉर्डियन खूबसूरत और तबले का खास चलन। और बहुत सारे श्रोता बहुत खुशी व्यक्त कर रहे हैं कि आज तो मेरे में भेजे हुए बहुत सारे गीत कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, है ना, खुशी की बात। एक श्रोता ने बताया कि मेरे बेटे का विवाह 9 साल पहले हुआ है। कभी सास और बहू में कंकस नहीं होता, माँ बेटी की तरह सहृदय भाव से रहते हैं। ये भी जीवन का आनंद है, छोटी बातों पर कभी छोटा मन नहीं करना चाहिए। झगड़े का कारण एक दूसरे के प्रति कटु वचन से अभाव बढ़ता है। एक संदेश में कहा गया है कि बच्चों के जीवन के पहले गुरु माता पिता होते हैं जो अच्छे बुरे की परख से अवगत कराते हैं। बच्चों पर अपने माता पिता के आचरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। बच्चों को स्कूल में सिर्फ किताबी ज्ञान मिलता है लेकिन सामाजिक तौर तरीके सीखने की शुरुआत अपने परिवार से ही होती है, जहाँ माँ के आंचल की छाँव और पिता के प्यार से बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो जाता है।

आज की एक और संदेश में कहा है कि आज की इबारत की खास बात यह है कि गीतों को लेकर इसमें कुछ भी दबा छुपा सस्पेंस नहीं है। इबारत पढ़कर साफ साफ पता लग रहा है कौन कौन से सदाबहार सुपरहिट गीत बजने वाले हैं। कुल मिलाकर बहुत सरल और आसान समझ में आने वाली इबारत है। वैसे कुछ सस्पेंस हो तो और मज़ा है। तो चलिए, आप सबको माता पिता दिवस की बहुत शुभकामनाएँ और ढेरों बधाइयाँ। तो अब अगला गाना सुनिए और बताइए कि इस फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं किन कलाकारों ने निभाई थीं।

चली जाए मारना दे टंक नजर कोई हाँ।

फिल्म बहारों के सपने का गाना लता मंगेशकर और मन्ना डे के स्वरों में आपने सुना। राहुल देव बर्मन का संगीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और सही जवाब आ गया। आशा पारेख और राजेश खन्ना ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। संदेश मिला है कि हमारे श्रोता ने बताया है कि माँ से तो नहीं डर लगता था, पिता से बहुत डरते थे। कड़क स्वभाव वाले और शिष्ट पालन के आग्रही थे। सत्य की राह पर खुद चलते थे, हमें भी सत्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। आज माता पिता दोनों नहीं हैं, लेकिन उनके आशीर्वाद से हम सुखी हैं। और बचपन की यादें ताज़ा हुई मुड़ मुड़ के न देख गाना सुनकर, हमारे एक श्रोता की क्या बात है। एक और श्रोता बता रहे हैं कि हमारे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका पूरे घर में रुतबा चलता था। हम बच्चों को भी बहुत डर लगता था, लेकिन थे वो बहुत विकासवादी। आज से 70 साल पहले उन्होंने हमारी बुआ जी को स्कूल भेजा था। वो गांव से इकलौती थी स्कूल जाने वाली। क्या बात है, नतमस्तक हो जाते हैं हम ऐसे बुजुर्गों के सामने जो हमें विकासवादी सोच की तरफ के अपना दिखाते हैं कि विकासवादी सोच से क्या क्या बदलाव आ सकता है। और अब अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं, गाने को सुनिए और प्रमुख कलाकारों के नाम आपको बताने हैं, साथ ही बताइए गीतकार और संगीतकार कौन है।

खजाना ढूंढने की बात को लेकर हमारे एक श्रोता ने बताया कि एक बार हमारे नाना जी जब घर आए तो हम बच्चों के लिए टॉफी का पैक लेकर आए, माँ ने उसको छुपा कर रख दिया। हम सबका ध्यान उस पर लगा था, बहुत जतन किए गए पर सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन माँ हर बच्चे को उनके अच्छे काम के लिए जब उपहार स्वरूप टॉफी देती तो मन प्रसन्न हो जाता था।

0: agreement comes into force, gives Indian exporters duty-free market access in Oman to 98% of tariff lines. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari expands cabinet with induction of 35 new ministers. Gross GST collection rises to over 1,94,000 crore rupees in May. PM Swanidhi scheme completes 6 years. Prime Minister Narendra Modi says scheme opened new growth opportunities for street vendors. And India ends impressive campaign at Asian Under 20 Athletics Championships with 19 medals, including 10 gold in Hong Kong. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। मई महीने में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,94,000 करोड़ रूपए से अधिक हुआ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज। अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए। और हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
2: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
3: ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल है। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेता, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में सपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काशफी नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
1: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से

0: लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर जीएसटी का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय जीएसटी का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य जीएसटी का 45,143 करोड़ और एकीकृत जीएसटी का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। जीएसटी रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
1: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान 1 महीने तक चलेगा।
2: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
3: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
2: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
4: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची बाजपेयी।
0: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपए की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113 रुपए 50 पैसे होगी। मुंबई में 43 रुपए 50 पैसे की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067 रुपए 50 पैसे होगी। कोलकाता में 53 रुपए 50 पैसे की वृद्धि के साथ व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255 रुपए 50 पैसे होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रुपए की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 रुपए होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
5: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
6: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
0: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमा के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की।

भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं श्रोताओं, अब से लेकर दिन में 3 बजे तक आप हमारे केंद्र से विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम सुनेंगे।

अपनी सुरीली आवाज़ की खुशबू से तमाम यादगार गीतों को महकाने वाली सुमन कल्याणपुर की आवाज़, साथ में मोहम्मद रफ़ी, बेटी बेटे फिल्म का ये गाना आपने अभी सुना। शैलेंद्र के बोल थे और शंकर जयकिशन का संगीत था। और अब आपको सुनवा रहे हैं बूंद जो बन गई मोती फिल्म का गाना। मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें हैं, भरत व्यास की रचना है और सतीश भाटिया का संगीत।

चांद और सूरज फिल्म का गाना आपने सुना, सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी के स्वरों में, शैलेंद्र की रचना थी और सलिल चौधरी का संगीत। इन सुंदर गीतों के साथ मन का जला दीप सदैव प्रकाश बिखेरता रहता है। फिल्म संगीत के स्वर्ण युग का आखिरी सुमन भी कल मुरझा गया, लेकिन उनकी आवाज़ की कशिश हमेशा दिलो दिमाग पर छाई रहेगी। आइए सुनते हैं दिल ही तो है फिल्म का गाना, सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में, साहिल लुधियानवी के बोल हैं और रोशन की तर्ज़।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं जब से तुम्हें देखा है फिल्म का गाना मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ। शैलेंद्र के लिखे गीत को संगीत से संवारा है दत्ताराम ने।

सदाबहार नगमे प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं मासूम फिल्म का गाना। राजा मेहंदी अली खान के बोल हैं, रॉबिन बनर्जी का संगीत है, आवाज़ है सुमन कल्याणपुर की।

0: हसरत जयपुरी का लिखा और कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था जी चाहता है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, मोहब्बत इसको कहते हैं। यह है फिल्म का नाम, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की हैं। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है खयाम ने।
1: कह दिए हो शुम्या।

0: श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 3 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें पीएम सूर्य घर .gov.in। हर घर

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं। पेश है ये रिपोर्ट।
1: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है।
0: भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी कमलेश कुमार पंत ने शिमला में हिमाचल प्रदेश के कार्यकारी मुख्य सचिव के रूप में पदभार संभाल लिया है। वर्ष 1993 बैच के उत्तराखंड मूल के कमलेश कुमार पंत के पास प्रशासनिक कार्यों का लंबा अनुभव रहा है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्रमुख जिम्मेदारी होगी। के पंत ने कहा कि सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रशासनिक तंत्र को अधिक मजबूत और जवाबदेह बनाया जाएगा। उन्होंने भरोसा जताया कि सामूहिक प्रयासों से प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से हासिल किया जा सकेगा। राज्य सरकार द्वारा हिमाचल को चिट्टा मुक्त बनाने के लिए एंटी चिट्टा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सोलन के उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने सोलन में एंटी चिट्टा अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की। इस दौरान शिक्षा विभाग के उपनिदेशक गोपाल चौहान ने बताया कि ये अभियान जिले के सभी स्कूलों में चलाया जाएगा और विद्यार्थियों को चिट्टा सहित अन्य मादक पदार्थों से दूर रहने के लिए जागरूक किया जाएगा।
2: एंटी चिट्टा जो कैंपेन है ये 1 जून से 20 अगस्त तक रहेगा, जिसमें हमने जिले के सारे जितने भी जो ग्रेड 1 ऑफिसर हैं उनको 10-10 स्कूल अलॉट किए हैं। वो सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है। वो सारे स्कूलों में जाएंगे और बच्चों से और स्टाफ से और SMC मेंबर से ये जो ड्रग्स के जो मेंटेनेंस है इसके बारे में जो है बातचीत करेंगे, उनको सेंसिटाइज करेंगे, बच्चों से इंटरेक्शन की जाएगी, उनको बताया जाएगा कि ये ड्रग्स का जो ये इतना भारी प्रकोप हमारे प्रदेश में आ गया है ये क्यों आया, इसको रोकने के लिए बच्चों को जो है परिवार से बातचीत करने के लिए उनको मोटिवेट किया जाएगा कि वो अपने पेरेंट्स से कोई चीजें ना छुपाए और उनसे बात करें ताकि टाइम रहते ही इसको हम रोक सके।
0: होटलों, रेस्तराओं और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक LPG सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक LPG सिलेंडर की कीमत में 42 रुपए की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113.50 रुपए होगी। व्यावसायिक LPG की कीमतों में ये वृद्धि अमरीका और ईरान में संघर्ष के बीच पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा लागत में वृद्धि के मद्देनजर हुई है। असम के गुवाहाटी में 29 से 31 मई तक आयोजित 3 दिवसीय 19वीं राष्ट्र ग्रैपलिन प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल 38 पदकों पर कब्जा जमाया है। इनमें 12 स्वर्ण, 13

0: रजत और 13 कांस्य पदक शामिल हैं। भारतीय ग्रैपलिंग संघ के अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने खिलाड़ियों की इस अद्भुत सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि ये सफलता राज्य के युवाओं की कड़ी मेहनत और प्रतिभा का प्रमाण है। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज हल्के बादल छाए हुए हैं। राज्य में बीते 3 दिनों के दौरान हुई वर्षा, ओलावृष्टि व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में आगामी 6 जून तक अलग अलग स्थानों पर वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी रहेगा। विभाग ने 3 से 6 जून तक राज्य के 6 जिलों में अंधड़, आसमानी बिजली गिरने और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
1: अभी आप प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। अब सुनिए सामयिक चर्चा। विषय है भारत में उच्च मूल्य वाली फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा। वाचक स्वर प्रभा शर्मा का है।
2: कृषि विकसित भारत के विजन में एक आधारभूत स्थान रखती है। पिछले एक दशक में इस क्षेत्र ने 4.45% की दर से वृद्धि दर्ज की है, जो पूर्ववर्ती दशकों की तुलना में सर्वाधिक है। इस परिवर्तन के केंद्र में बागवानी है, जो भारत की उच्च मूल्य फसल अर्थव्यवस्था के केंद्र के रूप में उभरी है। फलों और सब्जियों से लेकर फूलों, मसालों और बागान फसलों तक बागवानी ग्रामीण परिदृश्यों को रूपांतरित करती रही है। पारंपरिक मुख्य फसलों के विपरीत उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलें प्रति इकाई भूमि पर अधिक प्रतिफल उत्पन्न करती हैं और कृषि सकल मूल्य संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। भारत में कृषि के विकास के प्रेरक के रूप में बागवानी क्षेत्र, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के कृषि फसल उपक्षेत्र के सकल मूल्य उत्पादन में लगभग 37% योगदान देता है और भारत की कृषि विकास की दिशा में एक आधारशिला के रूप में उभरा है। उत्पादन में निरंतर वृद्धि इस क्षेत्र के बढ़ते योगदान को रेखांकित करती है, जो न केवल समग्र कृषि उत्पादन में बल्कि कृषि अर्थव्यवस्था के भीतर मूल्य संवर्धन में भी परिलक्षित होता है। बागवानी क्षेत्र में भारत की वैश्विक स्थिति इसके रणनीतिक महत्व को और सुदृढ़ करती है। देश सब्जियों, फलों और आलू के उत्पादन में विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है। वैश्विक उत्पादन में फलों का योगदान 9.18% तथा सब्जियों का योगदान 8.18% है। केंद्रीय बजट 2026-27 ने उच्च मूल्य कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए फसल विशिष्ट क्षेत्र आधारित भिन्न रणनीति पर बल दिया है, जो कृषक आय बढ़ाने और उत्पादन प्रणालियों में विविधता लाने की इसकी क्षमता को स्वीकार करता है। नारियल क्षेत्र भारत की बागवानी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो लगभग 3 करोड़ लोगों, जिनमें लगभग 1 करोड़ किसान शामिल है, की आजीविका का समर्थन करता है। भारत नारियल उत्पादन में विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है, जो वैश्विक उत्पादन में लगभग 22.44% योगदान देता है तथा खेती के क्षेत्रफल के संदर्भ में तीसरे स्थान पर है, जो विश्व के कुल नारियल क्षेत्र का करीब 19.32% है। कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यरत नारियल विकास बोर्ड ने 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नारियल की खेती तथा संबंधित उद्योगों के एकीकृत विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय बजट 2026-27 में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक नारियल प्रोत्साहन योजना प्रस्तावित की गई है, जिसमें प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों में पुराने और कम उपज देने वाले पेड़ों को उन्नत पौधों और उच्च उत्पादकता वाली किस्मों से प्रतिस्थापित किया जा रहा है। भारत में काजू और कोको की खेती के संगठित विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समर्पित संस्थागत तंत्र स्थापित किए गए हैं। बादाम एक अन्य उच्च मूल्य समितोषण मेवा फसल है, जो विशेष रूप से हृदय संबंधी तथा पाचन स्वास्थ्य के लिए अपने पोषण व स्वास्थ्य लाभों के कारण व्यापक रूप से पहचानी जाती है। बागवानी सांख्यिकी इकाई कृषि व किसान कल्याण विभाग के अनुसार भारत में वर्ष 2024-25 में बादाम का उत्पादन करीब 14,000 मीट्रिक टन रहा, जिसकी खेती मुख्यतः जम्मू कश्मीर, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में केंद्रित है। जम्मू

0: कश्मीर देश के कुल उत्पादन में 83% से अधिक का योगदान देता है तथा कश्मीर क्षेत्र में प्रमुख प्रसंस्करण और विनिर्माण केंद्र स्थापित हैं। हिमालयी क्षेत्र की एक अन्य महत्वपूर्ण मेवा फसल चिलगोजा है, जो अत्यंत मूल्यवान चिलगोजा पाइन नट्स का उत्पादन करती है। इसे अक्सर चैंपियन ऑफ द रॉकी माउंटेन्स कहा जाता है। ये फसल हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में जनजातीय समुदाय की आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। चिलगोजा पाइन उत्तर पश्चिमी हिमालय की आंतरिक शुष्क घाटियों में उगता है, जहां कम वर्षा और भारी शीतकालीन हिमपात जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं, जिससे ये प्रजाति पारिस्थितिक रूप से अनुकूल होने के साथ साथ स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण बन जाती है।
1: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 3:10 हुए हैं, अब से लेकर शाम 5 बजे तक हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
2: इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। आज सुनते हैं इस कहानी की पहली कड़ी।

0: आभूषणों की निंदा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम असहयोग का उत्पीड़न सह सकते हैं, पर ललनाओं के निर्दय घातक वाकवाणों को नहीं ओढ़ सकते। तो भी इतना अवश्य कहेंगे कि इस तृष्णा की पूर्ति के लिए जितना त्याग किया जाता है, उसका सदुपयोग करने से महान पद प्राप्त हो सकता है। यद्यपि हमने किसी रूपहीना महिला को आभूषणों की सजावट से रूपवती होते नहीं देखा, तथापि हम ये भी मान लेते हैं कि रूप के लिए आभूषणों की उतनी ही जरूरत है जितनी घर के लिए दीपक की। किंतु शारीरिक शोभा के लिए हम तन को कितना मलिन, चित्त को कितना अशांत और आत्मा को कितना कलुषित बना लेते हैं, इसका हमें कदाचित ज्ञान ही नहीं होता। इस दीपक की ज्योति में आंखें धुंधली हो जाती हैं। ये चमक दमक, कितनी ईर्ष्या, कितने द्वेष, कितनी प्रतिस्पर्धा, कितनी दुश्चिंता और कितनी दुराशा का कारण है, इसकी केवल कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्हें भूषण नहीं, दूषण कहना अधिक उपयुक्त है। नहीं तो ये कब हो सकता था कि कोई नववधू पति के घर आने के तीसरे दिन अपने पति से कहती,
1: मेरे पिता ने तुम्हारे पल्ले बांधकर मुझे तो कुएं में ढकेल दिया है।
0: शीतला आज अपने गांव के तालुकेदार कुंवर सुरेश सिंह की नवविवाहिता वधु को देखने गई थी। उसके सामने ही वो मंत्र मुग्ध सी हो गई। बहू के रूप लावण्य पर नहीं, उसके आभूषणों की जगमगाहट पर उसकी टकटकी लगी रही। और वो जब से लौट कर घर आई, उसकी छाती पर सांप लौटता रहा। अंत को ज्यों ही उसका पति आया, वो उस पर बरस पड़ी और दिल में भरा हुआ गुबार पूर्वोक्त शब्दों में निकल पड़ा। शीतला के पति का नाम विमल सिंह था। उनके पुरखे किसी जमाने में इलाकेदार थे। इस गांव पर भी उन्हीं का सोलहों आने अधिकार था, लेकिन अब इस घर की दशा हीन हो गई है। सुरेश सिंह के पिता जमींदार के काम में दक्ष थे। विमल सिंह का सब इलाका किसी न किसी प्रकार से उनके हाथ आ गया। विमल के पास सवारी का टट्टू भी न था। उसे दिन में दो बार भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उधर सुरेश के पास हाथी, मोटर और कई घोड़े थे। 10-5 बाहर के आदमी नित्य द्वार पर पड़े रहते थे, पर इतनी विषमता होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था। शादी ब्याह में, मुंडन छेदन में परस्पर आना जाना होता रहता था। सुरेश विद्या प्रेमी थे। हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा प्राप्त करके वो यूरोप चले गए और सब लोगों की शंकाओं के विपरीत वहां से आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर लौटे। वहां के जड़वाद, कृत्रिम भोगलिप्सा और अमानुषिक मदांधता ने उनकी आंखें खोल

0: गई थी। उसी के आभूषणों की छटा देखकर वो मर्माहत सी हो गई। विमल सिंह ने व्यथित होकर कहा,
1: तो माता पिता से कहा होता सुरेश से ब्याह कर देते और वो तुम्हें गहनों से लाद सकते थे। गाली
0: तो गाली क्यों देते हो?
1: नहीं देता, बात कहता हूं। तुम जैसी सुंदरी को उन्होंने नाहक मेरे साथ ब्याह।
0: लजाते तो नहीं, उल्टे और ताने देते हो।
1: भाग्य मेरे वश में नहीं है और इतना पढ़ा भी नहीं हूं कि कोई बड़ी नौकरी करके रुपए कमाऊं।
0: ये क्यों नहीं कहते कि प्रेम ही नहीं है? प्रेम हो तो कंचन बरसने लगे।
1: तुम्हें गहनों से बहुत प्रेम है,
0: सभी को होता है, मुझे भी है।
1: अपने को अभागिनी समझती हो।
0: हूं ही, समझना कैसा? नहीं तो क्या दूसरे को देखकर तरसना पड़ता?
1: गहने बनवा दूं तो अपने को भाग्यवती समझने लगोगी?
0: तुम तो इस तरह पूछ रहे हो जैसे सुनार दरवाजे पर ही बैठा है।
1: नहीं, सच कहता हूं, बनवा दूंगा, बनवा दूंगा, लेकिन कुछ दिन सबर करना पड़ेगा।
0: समर्थ पुरुषों को बात लग जाती है तो प्राण ले लेते हैं, सामर्थ्यहीन पुरुष अपनी ही जान पर खेल जाता है। विमल सिंह ने घर से निकल जाने की ठानी, निश्चय किया या तो इसे गहनों से ही लाद दूंगा या वैधव्य शोक से, या तो आभूषण ही पहनेगी या सिंदूर को भी तरसेगी। दिन भर वो चिंता में डूबा पड़ा रहा। शीतला को उसने प्रेम से संतुष्ट करना चाहा था। आज अनुभव हुआ कि नारी का हृदय प्रेम पाश से नहीं बंधता, कंचन के पाश ही से बंध सकता है। पहर रात जाते जाते वो घर से चल खड़ा हुआ, पीछे फिर कभी न देखा। ज्ञान से जागे हुए विराग में चाहे मोह का संस्कार हो, पर नैराश्य से जागा हुआ विराग अचल होता है। प्रकाश में इधर की वस्तुओं को देखकर मन विचलित हो सकता है, पर अंधकार में कितना साहस है जो लीक से जौबर हट सके। विमल के पास विद्या न थी, कला कौशल भी न था, उसे केवल अपने कठिन परिश्रम और कठिन आत्मत्याग ही का आधार था। वो पहले कलकत्ते गया, वहां कुछ दिन तक एक सेठ की अगवानी करता रहा। वहां जो सुन पाया कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है तो वो रंगून जा पहुंचा और बंदर पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा। कुछ तो कठिन श्रम, कुछ खाने पीने के असंयम और कुछ जलवायु की खराबी के कारण वो बीमार हो गया। शरीर दुर्बल हो गया, मुख की कांति जाती रही, फिर भी उससे ज्यादा मेहनती मजदूर बंदर पर दूसरा न था। और मजदूर थे, पर ये मजदूर तपस्वी था। मन में जो कुछ ठान लिया था उसे पूरा करना उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। उसने घर को अपना कोई समाचार न भेजा, अपने मन से तर्क किया, घर में मेरा कौन हेतु है, गहनों के सामने मुझे कौन पूछता है। उसकी बुद्धि ये रहस्य समझने में असमर्थ थी कि आभूषणों की लालसा रहने पर भी प्रणय का पालन किया जा सकता है। और मजदूर प्रातः काल सेरों मिठाई खाकर जलपान करते थे, दिन भर दम भर पर गांजे चरस और तंबाकू के दम लगाते थे, अवकाश पाते तो बाजार की सैर करते थे। कितनों ही को शराब का भी शौक था, पैसों के बदले रुपए कमाते थे तो पैसों की जगह रुपए खर्च भी कर डालते थे। किसी के देह पर साबुत कपड़े न थे, पर विमल उन गिनती के दो चार मजदूरों में था जो संयम से रहते थे, जिनके जीवन का उद्देश्य खा पी कर मर जाने के सिवा कुछ और भी था। थोड़े ही दिनों में उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई, धन के साथ और मजदूरों पर दबाव भी बढ़ने लगा। ये प्रायः सभी जानते थे कि विमल जाति का कुलीन ठाकुर है, सब ठाकुर ही कहकर उसे पुकारते थे। संयम और आचार सम्मान सिद्धि के मंत्र हैं। विमल मजदूरों का नेता और महाजन हो गया। विमल को रंगून में काम करते हुए 3 वर्ष हो चुके थे। संध्या हो गई थी, वो कई मजदूरों के साथ समुद्र के किनारे बैठा बातें कर रहा था।
1: यहां की सभी स्त्रियां निष्ठुर होती हैं। बेचारा झिंगुर दस

0: बरस से उसी बर्मी स्त्री के साथ रहता था।
1: अच्छा
0: कोई अपनी ब्याही जोरू से भी इतना प्रेम न करता होगा। उस पर इतना विश्वास करता था कि जो कुछ कमाता सो उसके हाथ में रख देता था। तीन लड़के थे, अभी कल तक दोनों साथ साथ खाकर लेटे थे। न कोई लड़ाई, न बात, न चीत। रात को औरत न जाने कहाँ चली गई, लड़कों को छोड़ गई। बेचारा झिंगुर रो रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल तो छोटे बच्चे की है, अभी कुल 6 महीने का है। कैसे जिएगा भगवान ही जाने।
2: गहने बनवाता था कि नहीं?
0: रुपए पैसे तो औरत ही के हाथ में थे, गहने बनवाती उसका हाथ कौन पकड़ता। गहनों से तो लदी हुई थी, जिधर से निकल जाती थी छम छम छम की आवाज से कान भर जाते थे।
2: जब गहने बनवाने पर भी निठुराई की तो यही कहना पड़ेगा कि नारी ही बेवफा होती है।
3: इतने में एक आदमी आकर विमल सिंह से बोला,
1: चौधरी, अभी मुझे एक सिपाही मिला था। वह तुम्हारा नाम, गांव का नाम और बाप का नाम पूछ रहा था। कोई बाबू सुरेश सिंह है।
2: हाँ है तो, मेरे गांव के इलाकेदार और बिरादरी के भाई हैं।
1: उन्होंने थाने में कोई नोटिस छपवाया है कि जो विमल सिंह का पता लगावेगा उसे 1,000 रुपए का इनाम मिलेगा।
2: तो तुमने सिपाही को सब ठीक ठीक बता दिया?
1: चौधरी, मैं कोई गवार हूं क्या? समझ गया, कुछ दाल में काला है, नहीं तो कोई इतने रुपए क्यों खर्च करता। मैंने कह दिया कि उनका नाम विमल सिंह नहीं,
0: अच्छा।
1: जसोदा पांडे है, बाप का नाम सुखू बताया, और घर जिला झांसी में। पूछने लगा यह कितने दिन से रहता है। मैंने कहा कोई 10 साल से। तब कुछ सोचकर चला गया। मुझसे कहता था कि ठीक ठीक बता दो तो 50 रुपए मैं तुम्हें दिला दूं। मैंने सोचा आप तो 1,000 की गठरी मारेगा और मुझे 50 रुपए दिलाने को कहता है। फटकार बता दी।
0: मगर जो 200 रुपये देने को कहता तो तुम सब ठीक ठाक नाम ठिकाना बता देते। क्यों दत्त तेरे लालची।
1: 200 रुपए नहीं, 2,000 भी देता तो ना बताता। मुझे ऐसा विश्वासघात करने वाला मत समझो, जब जी चाहे परख लो।
3: मजदूरों में यूं वाद विवाद चलता रहा। विमल आकर अपनी कोठरी में लेट गया। वो सोचने लगा,
2: अब क्या करो, जब सुरेश जैसे सज्जन की नीयत बदल गई तो अब मैं किसका भरोसा करूं? नहीं, अब बिना घर गए काम नहीं चलेगा। कुछ दिन और ना गया तो फिर कहीं का ना होगा। 2 साल और रह जाता तो पास में पूरे 5,000 हो जाते और शीतला की इच्छा भी पूरी हो जाती। अभी तो सब मिलाकर 3,000 ही होंगे, इतने में उसकी अभिलाषा ना पूरी होगी। खैर, अभी चलूं, 6 महीने में फिर लौट आऊंगा। अपनी जायदाद तो बच जाएगी। नहीं, 6 महीने तक रहने का क्या है, आने जाने का 1 महीना लग जाएगा। घर में 15 दिन से ज्यादा न रहूंगा। वहां कौन पूछता है, आऊं या रहूं, मरूं या जीऊं। वहां तो गहनों से प्रेम है।
3: इस तरह मन में निश्चय करके वो दूसरे दिन रंगून से चल पड़ा। संसार कहता है कि गुण के सामने रूप की कोई हस्ती नहीं। हमारे नीति शास्त्र के आचार्यों का भी यही कथन है, पर वास्तव में ये कितना भ्रम मूलक है। कुंवर सुरेश सिंह की नववधू मंगला कुमारी गृह कार्य में निपुण, पति के इशारे पर प्राण देने वाली अत्यंत विचारशीला, मधुर भाषिणी और धर्म भीरु स्त्री थी, पर सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी। सुरेश सिंह बात बात पर उस पर झुंझलाते, पर घड़ी भर में पश्चाताप के वशीभूत होकर उससे क्षमा मांगते, किंतु दूसरे ही दिन वही कुत्सित व्यापार शुरू हो जाता। विपत्ति ये थी कि उनके आचरण अन्य रईसों की भांति भ्रष्ट न थे। वो दाम्पत्य जीवन ही में आनंद, सुख, शांति, विश्वास, प्रायः सभी ऐहिक और पारमार्थिक उद्देश्य पूरा करना चाहते थे, और दाम्पत्य सुख से वंचित होकर उन्हें अपना समस्त जीवन नीरस, स्वादहीन और कुंठित जान पड़ता था। फल ये हुआ कि मंगला को अपने ऊपर विश्वास न रहा। वो अपने मन से कोई काम करते हुए डरती कि स्वामी नाराज होंगे। स्वामी को खुश करने के लिए अपनी भूलों को छिपाती, बहाने करती, झूठ बोलती। नौकरों को अपराध लगाकर आत्मरक्षा करना चाहती। पति को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने गुणों की, अपनी आत्मा की अवहेलना की, पर उठने के बदले वो पति की नजरों से गिरती ही गई। नित्य नए श्रृंगार करती, पर लक्ष्य से दूर होती जाती थी। पति की एक मधुर मुस्कान के लिए, उनके अधरों के एक मीठे शब्द के लिए उसका प्यासा हृदय तड़प तड़प कर रह जाता था। लावण्य विहीन स्त्री वो भिक्षुक नहीं है जो चंगुल भर आटे से संतुष्ट हो जाए। वो भी पति का संपूर्ण अखंड प्रेम चाहती है, और कदाचित सुंदरियों से अधिक, क्योंकि वो इसके लिए असाधारण प्रयत्न और अनुष्ठान करती है। मंगला इस प्रयत्न में निष्फल होकर और भी संतप्त होती थी। धीरे धीरे पति पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर हृदय शून्य कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसी का सा व्यवहार करूंगी। जो पुरुष रूप का भक्त है वो प्रेम भक्ति के योग्य नहीं। इस प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी।
4: कथा सुधा में आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का पहला भाग। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रकर, मंगला, ममता सिंह, मजदूर राजेश झा और आदमी दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। इस कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए सुनिए कहानी का दूसरा भाग अगले सोमवार कथा सुधा में।
5: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
6: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
5: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
7: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
5: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
7: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
5: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
8: हाँ तो मंजू जी, कल सखी सहेली का जन्मदिन है और लड्डू तो हमको कल मिलने ही वाले हैं।
9: बिल्कुल मिलने वाले हैं। हाँ,
8: और हिमानी शिवपुरी हमारी बतौर मेहमान कल आने वाली हैं और उनका सजीव प्रसारण कल
9: जी, और हम लोग मिलकर करेंगे उनका स्वागत और हमारे श्रोता साथ में मिलकर सुनेंगे प्रोग्राम और भेजेंगे बहुत सारी कमेंट्स, विचार,
8: शुभकामनाएं
9: भेजेंगे, तो बड़ा अच्छा लगेगा सब मिलके एक समय पे इकट्ठे होंगे।
8: हाँ, तो ये कार्यक्रम जो है 3 से लेकर 4 बजे के बीच में होगा। हिमानी शिवपुरी हमारी कल की मेहमान है, लाइव ब्रॉडकास्ट होगा। फेसबुक पेज पर आप बराबर बने रहें और अपने विचारों से अवगत करते रहें और आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है इसके बारे में बताएं, और खास तौर से हमारे जो सखी सहेली की कल वर्षगांठ है उनको शुभकामनाएं देने के लिए आप लगातार हमसे बने रहें, सभी सखी और सखा तैयार होकर
9: क्योंकि हम लोग भी तैयार होकर कल आएंगे बर्थडे मनाने।
8: बिल्कुल, तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग तैयार रहेंगे कल। और अब तो समय हो गया है एक अंतराल लेने का। मंजरी, पहले अंतराल लेते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं।

0: हाँ तो मंजरी, बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना है।
1: जी
0: और जीवन में जब हम किसी सुंदर चीज़ों के
1: जी
0: आसपास होते हैं ना, तो ज़िंदगी थोड़ा आसान भी लगती है।
1: बिल्कुल। और बहुत ही खूबसूरत होते हैं हमारे वो रिश्ते भी जो हमें जन्म देते हैं, जिन्हें हम माता पिता के रूप में जानते हैं। आँख
0: बिल्कुल
1: खुलती है, वो उंगली हम उनकी पकड़ते हैं, उनका स्पर्श सुख पाते हैं
0: जी
1: माता पिता के रूप में, तो वो हमारे लिए बहुत ही अजीज होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं। और इसीलिए उनको सम्मान देने के लिए वैश्विक अभिभावक दिवस ये जो है मनाया जा रहा है। 17 सितंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र ने 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस के रूप में घोषित किया। इस दिवस का उद्देश्य माता पिता होने के महत्व और बच्चों के सकारात्मक विकास के लिए आवश्यक सुरक्षा और साधन प्रदान करने में उनकी भूमिका में प्रगति जागरूकता बढ़ाना है। तो कहना चाहिए मंदाकिनी जी, आज के दिन

0: अपने माता पिता के लिए एक जश्न जैसा घर में कुछ सेलिब्रेशन करें
1: करना चाहिए ना।
0: और हाँ
1: हाँ
0: उनका सम्मान करें, उनके चरण छुएं, और आप जो भी उनके लिए
1: कर
0: पसंद
1: सकते
0: का
1: हैं।
0: खाना बना
1: हाँ
0: सकते हैं वो बनाए, उपहार में उन्हें चीज़ें दें, तो देखिए कितना अच्छा लगेगा,
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और जो माता पिता के सबसे करीब होते हैं वो हमारे माता पिता ही जो हमारे सबसे करीब
0: जी
1: होते हैं, और
0: जी
1: बच्चा जब घर से कई बातें सीखता है और जैसा अपने माता पिता को करते देखता है वैसा ही व्यवहार उनकी उसकी आदत में भी आता है। और कहना चाहिए कि माता पिता हमारे पहले शिक्षक होते हैं,
0: जी
1: हमारी पहली पाठशाला होते
0: बिल्कुल
1: हैं, और इसलिए बच्चों के सामने हमेशा कहा जाता है कि अच्छा आचरण करें ताकि आपके बच्चे भी जब आपको देखें तो वैसे ही बड़े होकर आगे अपना उदाहरण पेश करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और ये दिन माता पिता और अभिभावकों के प्रति सम्मान, प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए समर्पित है। बच्चे के जीवन में अभिभावकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती, केवल पालन पोषण ही नहीं करते बल्कि उनके जीवन जीने की सही दिशा, संस्कार, अनुशासन और नैतिक मूल्य भी सिखाते हैं, और वो अपने बच्चों के सुख दुख के साथ मंदाकिनी जी हमेशा खड़े रहते हैं, और बच्चे की सफलता के पीछे उसके अभिभावकों का त्याग, मेहनत और समर्पण छिपा होता है। वे अपनी इच्छाओं को पीछे रखकर अपने बच्चों के सपने को पूरा करने का प्रयास करते हैं।
1: हाँ बिल्कुल। और आज की अगर हम बात करें मंजरी, तो आज के आधुनिक समय में बच्चों और अभिभावकों के बीच थोड़ा संवाद कम हो रहा
0: जी,
1: है ना।
0: और उसका कारण भी है मोबाइल।
1: मोबाइल और सोशल मीडिया,
0: जी
1: ये हमारी जिंदगी बन गए
0: जी
1: हैं, है ना। तो रिश्तों में दूरी बढ़ गई है। ऐसे में क्या है कि वैश्विक जो अभिभावक दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने माता पिता को समय देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना बेहद जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: और ये दिन आज का केवल ये नहीं कि आपने हमें जन्म दिया धन्यवाद कि अगर हमने इतिश्री कर दी,
0: नहीं नहीं
1: ये
0: नहीं
1: वो दिन नहीं है, बल्कि अपने रिश्तों को और मजबूत बनाने का ये दिन हमें
0: जी
1: संदेश देता है। और हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका प्यार तो निस्वार्थ होता है और उनका स्थान जीवन में सबसे ऊंचा होना चाहिए।
0: बिल्कुल। और मंदाकिनी जी, हम कह सकते हैं कि माता पिता वो छांव है जिसके रहते जीवन की हर धूप हल्की लगती है, उन्हें सुरक्षा, स्नेह और अपनापन में उनसे मिलता है। जैसे तेज धूप में पेड़ की छाया राहत देती, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों में माता पिता अपने बच्चों को संभालते हैं। उन्हें उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही बच्चे सही राह पर चलना सीखते हैं। और मंदाकिनी जी, जब पुराने समय की हम बात करें तो उस समय ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, तो घर में सभी सदस्य होते थे, तो माता पिता तो घर बच्ची की देखभाल करते थे, लेकिन दादा दादी हुए, नाना नानी या चाचा चाची, मामा मामी, सब लोग परिवार के जितने भी लोग होते थे, बुआ हो चाहे कोई भी हो, सब लोग बच्चे का ख्याल रखते थे, तो बच्चे कैसे पल जाते थे
1: पता ही नहीं
0: पता ही नहीं चलता था।
1: लगता था।
0: और बच्चों के अंदर सबके गुण आते थे, कोई कहानी सुनाता था, कोई उनको अलग तरीके बातें सिखाता था, कोई कर्तव्य करना सिखा रहा है तो कोई व्यायाम सिखा रहा है, कोई कह रहा सुबह जल्दी उठो, तो ये जो रोक टोक का टाकी बच्चों को होती थी सिखाने की, कहना चाहिए, और नियम अनुशासन सिखाने की,
1: बिल्कुल
0: तो उससे बच्चे सीखते थे, और सभी उनके माता पिता के ही समान थे उस समय।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि जब हम ज्वाइंट फैमिली में रहते थे तो सभी लोग हम बच्चे की कद्र करते थे, बच्चे का लालन पालन कैसे होता था माता पिता तो को पता नहीं चलता था।
0: जी
1: लेकिन मंजरी आज स्थिति बिल्कुल अलग है। आज हम ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते हैं,
0: जी
1: जहाँ तक है एकल परिवार हो गए हैं। और ऐसे में बच्चे को जो नौकरी करने वाले माता पिता हैं वो किसी केयर टेकर के
0: जी
1: उसमें छोड़ जाते हैं। और मुझे खुद भी याद है, मेरे माता पिता दोनों सरकारी नौकर थे, सरकारी नौकरी करते थे और हमें किसी केयर टेकर के पास छोड़ जाते थे। वो किस तरह से हमारा लालन पालन करती थी ये तो भगवान ही जाने।
0: जी सही
1: और
0: बात है।
1: होता था कि जब माता पिता आते थे तो बड़े परेशान आते थे, क्योंकि जो केयर टेकर है वो उस तरह से तो नहीं पाल सकती
0: बिल्कुल
1: बच्चों
0: नहीं,
1: को
0: बिल्कुल नहीं,
1: जैसे माता पिता या परिवार के सदस्य
0: सदस्य
1: पालते
0: पालते। और
1: हैं।
0: देखिए, हमारे बहुत सारे साथियों ने भी संदेश लिखकर भेजा है। एक लिखते हैं कि माता पिता सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता, वो हमारा पहला विद्यालय होते हैं जहाँ से हमारे संस्कारों की नींव गढ़ी जाती है। माँ अगर उंगली पकड़कर चलना सिखाती है तो पिता उंगली छोड़कर संभलना, दुनिया का हर रिश्ता कुछ ना कुछ मांगता है, पर माता पिता वो होते हैं जो अपनी संतान के प्रति जीवन भर निस्वार्थ स्नेह रखते हैं। उनका प्रेम किसी पैमाने पर मापा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाना, जवानी में परछाई की तरह साथ रहना और वृद्धावस्था में भी संतान के प्रति चिंतित रहना ही उनके निस्वार्थ प्रेम को दिखाता है। बहुत प्यारी सी
1: बहुत
0: बात आपने
1: सुंदर बात
0: लिखकर
1: लिखी
0: भेजी।
1: है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सखी सहेली मंच संभाल रही दोनों बहनों को बहुत सबने नमस्कार लिखते हैं। आज अभिभावक दिवस है, इस दिन विशेष का बड़ा महत्व है। इस दिन का आज के दिन दुनिया के सभी माता पिता के साथ साथ सभी अभिभावकों को बच्चों के लालन पालन के साथ उनकी सुरक्षा और सर्वांगीण विकास के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण और बलिदान के लिए सम्मानित करना है। माता के लिए गुजराती मुहावरा है, माई माँ बाकी बगा वगड़ा नावा, मतलब माँ के बिना सब जग उजड़ा हुआ यानी वीराना सा लगता है।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर सी बात लिखी है। ऐसे ही हमारे साथी लिखते हैं कि आज अभिभावक दिवस पर विशेष बधाई, अभी तो कोई कलम नहीं बनी है जो

0: माता पिता पर कुछ सर्वश्रेष्ठ लिख सके, ये तो
1: हम्म,
0: ईश्वर के बस की भी बात नहीं। मेरी हर खुशी का रास्ता माँ से होकर जाता है और मुझे दुनियादारी का सबक मेरे माता पिता सिखाते हैं। माता पिता का प्यार इस दुनिया का सबसे निस्वार्थ, पवित्र और अनमोल एहसास है। ये वो पूंजी है जो हमें जीवन के हर कदम पर हिम्मत, सुरक्षा और सही संस्कार देती है। इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है।
1: वही एक श्रोता लिखते हैं कि माता पिता का ही तो प्यार है जो कभी नहीं बढ़ता, जीवन रूपी खुले आकाश में उन्मुक्त पक्षियों के जैसे उड़ने की सीख और हौसला देने वाले वे ही हैं। रोते रोते हंसा देते हैं, दुनियादारी की बातें समझा देते हैं, उनकी ही दुआ से हम बड़ा नाम करते हैं और इस दुनिया पर राज करते हैं। असफलता में भी मुड़कर मत देखो पर अपनी गरिमा को भी संभाल कर रखो, ऐसी हिदायतें उनसे ही मिलती हैं, उनके आशीर्वाद से बिगड़े काम बन जाते हैं, उनकी सुनाई कहानियों की खुशबू पूरे जीवन भर महसूस करते हैं। और वैश्विक अभिभावक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं ये हमें देते हैं। तो अब एक गीत सुन ले।
0: जी,

0: हाँ
1: तो देखिए,
0: तो
1: अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। विश्व दुग्ध दिवस है और हम सभी जानते हैं कि बच्चों से लेकर बड़ों तक, बुजुर्गों तक, सभी के लिए, महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, सभी के लिए दूध बहुत आवश्यक है। और विश्व दुग्ध दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जिसका उद्देश्य वैश्विक खाद्य पदार्थ के रूप में दूध के महत्व को मान्यता देना है। ये दिवस 2001 से प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान आकर्षित करने का अवसर प्रदान करता है।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और मंजरी, विश्व दुग्ध दिवस केवल हम इसे कोई उत्सव के रूप में नहीं मना रहे हैं, बल्कि एक आंदोलन है जो दूध को एक महत्वपूर्ण और सुलभ खाद्य स्रोत के रूप में उजागर करता है, जो अरबों लोगों का पोषण करता है। और यही दूध आवश्यक पोषक तत्व हमें प्रदान करता है, जो हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए, विकास के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता भी है।
1: बिल्कुल। और विश्व दुग्ध दिवस की जो इस वर्ष की थीम है, महिला किसानों का सम्मान है। ये रोजाना दूध पीना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत फायदेमंद होता है, क्योंकि ये कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी और पोटेशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्वों को एक बेहतरीन स्रोत है। और ये आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है, मांसपेशियों के विकास में मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कुछ मंदाकिनी जी, कुछ माता पिता ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कुछ बच्चे को परेशानी हुई, तो तबीयत खराब हुई, तो सीधे वो दूध को ही बोल देते हैं, दूध बंद कर दो, इसका दूध नहीं पिलाना है। तो बच्चों के मुख से दूध छीनना बहुत गलत बात होती है। आप पहले उसका चिकित्सीय इलाज कीजिए, डॉक्टरी इलाज कीजिए कि उसको क्या समस्या है, तब आप सोचिए कि दूध
0: नुकसान कर रहा है या नहीं कर रहा है।
1: कुछ समय तक तबियत खराब है तो दूध आप नहीं ना दें, लेकिन ये नहीं कि आप पूरा जीवन पर्यंत दूध बंद कर दें, ये गलत बात।
0: हाँ ये बिल्कुल गलत है। और हमें डॉक्टर खुद नहीं बनना है ना, चाहे कोई भी, अपना भी डॉक्टर हमें खुद नहीं बनना चाहिए। हमें चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए कि क्या दूध हमें नुकसान कर रहा है। दूध हमारे लिए कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे लिए कुछ लोगों को दूध नहीं सूट करता तो वो नहीं पीते हैं, लेकिन उसके लिए साइंटिफिक कारण होने चाहिए, केवल ये नहीं, वहम नहीं होना चाहिए,
1: वहम नहीं होना चाहिए।
0: एक श्रोता लिखते हैं हमारे कि अभिभावक दिवस के साथ साथ आज विश्व दुग्ध दिवस हम मना रहे हैं। दूध एक ऐसी जरूरत है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए जरूरी है। वैश्विक आहार में दुग्ध का बड़ा महत्व रहा है। इसे संपूर्ण आहार माना जाता है, जिसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और पोटेशियम जैसे शरीर के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, और इसके बिना सुबह की चाय भी नहीं बनती है, आए हुए मेहमानों का स्वागत नहीं होता। और इसके विधिवत उत्पादन के लिए डेयरी उद्योग का एक बड़ा योगदान रहा है। अपनी हड्डियों के साथ साथ डेयरी उद्योग को भी हमें मजबूत बनाना चाहिए।
1: और एक साथी लिखते हैं, दूध भी हमारे जीवन का अभिन्न चीज है, खासकर के मेरे लिए तो है, क्योंकि दूध के बिना मेरी मन पसंद अदरक इलायची वाली चाय नहीं बनती।
0: अरे
1: है।
0: हमारी तो ये भी चाय के शौकीन है
1: जी। और एक लिखते हैं, देश में दूध उत्पादन में गुजरात अग्रणी राज्य है, इन्होंने लिखा है। और एक लिखते हैं कि दूध को अक्सर प्रकृति का संपूर्ण भोजन माना जाता है, क्योंकि इसमें मानव के शरीर के लिए आवश्यक लगभग सभी प्रमुख पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और विटामिन्स का प्राकृतिक संतुलन होता है। दूध में मौजूद प्रमुख पोषक तत्व जो है प्रोटीन, शरीर की मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत के लिए, कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए, विटामिन ए, डी और B12, आंखों, त्वचा, तंत्रिका तंत्र और ऊर्जा स्तर को के लिए ये बेहतर है, बेहतर रखता है कहना चाहिए।
0: बिल्कुल अच्छा लिखा है। और साथ ही एक श्रोता लिखते हैं कि जो दूध है वो भोजन में महत्वपूर्ण तो होता ही है, साथ ही हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि ये बात अलग है कि बहुत लोगों को दूध पसंद नहीं आता, लेकिन दूध को ठंडा पदार्थ के रूप में पीना बहुत लोगों को पसंद होता है, खासकर गर्मियों के दिनों में।
1: बिल्कुल। और मंदाकिनी जी, देखा जाए अगर बच्चे आपके सीधा डायरेक्ट दूध नहीं पी रहे हैं, तो आप सोचिए कि उसमें थोड़ी सी इलायची मिला के हम पिला दें, या फिर आप दूध को खीर में कन्वर्ट कर दें, या चावल की खीर या सूजी की खीर में भी आप कर सकते हैं, या ड्राई फ्रूट पीस करके मिला के कुछ चेंज कर करके, या ठंडे शरबत उसमें मिक्स करके भी,
0: हाँ।
1: आप गुलाब का शरबत मिलाकर भी आप दूध किसी ना किसी रूप में आप बच्चों को
0: पिला
1: सकते
0: हैं। खासतौर से छोटे बच्चे और किशोरावस्था वाले जो बच्चे हैं ना, ये थोड़ा परेशान करते हैं कि मम्मी दूध नहीं पीना है, तो उन्हें दूध को तरह तरीके से करके आप पिला सकते हैं, ताकि फाइनली दूध तो बच्चे के पेट में जाना ही चाहिए।

0: तो भाई मंजरी दूध की हम बात कर रहे थे और हमारे जो चाय वाले श्रोता हैं, जो हमारे ही जैसे हैं, चाय पसंद करते हैं, चाय मिल जाए और साथ में ये बनारस की मटर मुंगोड़ी वाला निमोना या नमकीन मिल जाए तो फिर कहने ही क्या होते हैं।
1: हमारी सखी ने ये रेसिपी लिख कर भेजी तो हम वही पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश का निमोना मुंगोड़ी या मूंग की बड़ी, उड़द की बड़ी, ताजी हरी मटर, पिसे हुए मसालों और मूंग दाल की मंगोड़ियों से बनने वाली एक बेहद स्वादिष्ट और पारंपरिक करी है। ये उत्तर प्रदेश के घरों में सर्दियों के मौसम में चावल के साथ बहुत चाव से खाई जाती है। इसकी सामग्री इन्होंने लिखी, हरी मटर 2 कप, मंगौड़ी 1 कप, मुंगौड़ी 1 कप, आलू
0: चाहिए
1: आधा कप आलू, हाँ। 2 लंबे पतले कटे हुए मसाला पेस्ट इसका है, हरा धनिया, लहसुन की कलियां, अदरक और हरी मिर्च, मिक्सी में पिसा हुआ होना चाहिए ये। और तड़का के लिए आप जीरा, हींग और तेजपत्ता, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार और सरसों का तेल लगेगा। और इसको बनाने की विधि है कि मंगौड़ी को और आलू को भून लें, एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करें, मूंग की मंगौड़ियों को सुनहरा होने तक भूनें और निकाल कर रख लें। उसी तेल में कटे हुए आलू को भी फ्राई करें और अलग रखें, मटर भूनें, बचे हुए तेल में दरदरी पिसी हुई मटर डालें और मध्यम आँच पर 3 से 4 मिनट तक इसे भून लें ताकि मटर का कच्चापन दूर हो जाए। इसे एक प्लेट में निकाल कर लें, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालें जिसमें हींग जीरा तड़का लगाएं। अब कटा बारीक प्याज, हरा धनिया, लहसुन वाला मसाला पेस्ट डालकर तब तक भूने जब तक तेल अलग ना होने लगे। भुनी हुई मटर, साबुत मटर, तले हुए आलू और मंगौड़ी डालें, सभी को अच्छी तरह मिला और इसमें आवश्यकतानुसार गर्म पानी और नमक डालें। कढ़ाई को ढक कर धीमी आँच पर 10 से 15 मिनट तक पकने दें जब तक कि मंगौड़ी और आलू पूरी तरह से नरम ना हो जाए। अंत में ऊपर से गर्म मसाला छिड़कें। आपकी गर्मा गर्म यूपी स्पेशल मंगौड़ी और निमोना तैयार है।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने इसको

0: तैयार किया है और मुझे लगता है कि बहुत ही स्वादिष्ट होता होगा मंजरी।
1: बिल्कुल, क्योंकि मटर और मंगौड़ी दोनों ही बहुत स्वाद से भरपूर होती है और मेरी तो बहुत फेवरेट है
0: बिल्कुल।
1: मंदाकिनी
0: और
1: जी।
0: मैं धनिया वाला जो मट्टी है ना,
1: जी
0: धनिया वाली मट्टी, उसके बारे में बताना चाहती हूँ अगर हमारे श्रोता पसंद करती हैं। सखिया, वैसे तो उन्हें बनाना आता होगा, पर मैंने भी इसको बना के देखा था। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कैसे बनेगी ये। आप मैदा ले लें 2 कप, हरा धनिया ले लें, कटा हुआ साबुत धनिया ले लें, और 2 चम्मच कुटी हुई साबुत धनिया ले सकते हैं, घी ले सकते हैं तेल मोयन के लिए, जीरा ले लें, 1/2 चम्मच अजवाइन ले लें, और काली मिर्च ले लें, और दरदरी कुटी हुई नमक, और तेल तलने के लिए, और साथ में पानी। अब आप स्वादानुसार ये सब चीज़ें ले सकते हैं कम या ज़्यादा, क्योंकि मैं आपको जो बताऊंगी हो सकता है आप उसे ज़्यादा पसंद करते हो।
1: बिल्कुल
0: फिर आटा आटा को तैयार करें। एक बड़े बर्तन में मैदा ले लें, इसमें जीरा, अजवाइन, साबुत धनिया, कुटी हुई काली मिर्च, नमक और मोयन, और पिघला हुआ घी 1/4 कप डाल सकते हैं या तेल डालें। सभी चीज़ों को हाथों से अच्छी तरह से मिला लें ताकि मैदा में मोयन अच्छे से रच बस जाए, और उसके बाद बारीक कटी हुई हरी धनिया डालकर उसको मिला लें। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सख्त आटा आप गूंथ लें। इस आटे को 15 से 20 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढककर आप रख दें। फिर आटे को थोड़ा मसल लें और फिर उसमें से छोटी छोटी लोइयां तोड़ लें। अब एक लोई को हथेली से दबाकर चपटा करना है, इसे ज़्यादा नहीं पतला करना है, ना बेलना नहीं है। एक फिर दबाकर कांटे की मदद से मट्टी की दोनों तरफ थोड़ा छेद कर लें 5-6, और इसको गर्म गर्म तेल में तलें, और धीमी आंच में तलने के बाद जो कुरकुरी मटरी
1: जी,
0: निकल के आएगी ना, वो
1: चाय के
0: गर्मा
1: साथ
0: गर्म चाय के साथ तो
1: क्या
0: स्वाद
1: जी।
0: ले।
1: और गीत गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल, सुनते हैं।

0: और अब मंजरी सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त तो खत्म हो चला है, इस कार्यक्रम से हम इजाजत लेते हैं। तो कार्यक्रम समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी और
1: मंजरी वर्मा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं।
1: जाओ जाओ जल्दी जाओ डॉक्टर को बुलाओ, नब्ज दिखाओ मेरा हाल बताओ।
0: जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश खुखे।
2: दांतों का जमाना, प्यारे दांत बचाना, कोई तोड़ दे या टूटे तो पास हमारे आना।
0: इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने।
3: जाओ जाओ जाओ किसी वैद को बुलाओ।
0: सेहत नामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। हाल ही में डेंटिस्ट डे मनाया गया और इस मौके पर आज हमारे साथ हैं मुंबई के डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश घुगे। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका।
4: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं अपनी तरफ से आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे यहाँ पे आज न्योता दिया गया। मुझे बहुत खुशी होगी कि आज मैं डेंटिस्ट्री के बारे में, दांतों के बारे में लोगों के साथ रूबरू हो पाऊंगा। बहुत सारी जो मिथ्स है उनके ऊपर से हम लोग पर्दा उठा पाएंगे।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, दांतों को लेकर बहुत सारे मिथ है, बहुत सारे लोगों के मन में खाम ख्यालियां हैं, गलत मान्यताएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बातचीत की शुरुआत हम करते हैं दूध के दांतों से।
4: ठीक है।
0: जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अपने दांत होते हैं जो बड़े मायने रखते हैं, लेकिन अमूमन परिवार में उनके टूटने का इंतजार किया जाता है कि ये दांत निकल जाएंगे।
4: हाँ जी।
0: तब जो दांत आएंगे वो असली दांत होंगे।
4: सही है।
0: जरा इसके बारे में तफसील से बताइए।
4: जैसे आप जानते हैं कि बच्चा जब 2 साल का हो जाता है तब उसके दूध के दांत आने चालू हो जाते हैं। 2 से 2.5 साल तक दूध के दांतों की ग्रोथ पूरी हो जाती है। ठीक है। दूध के दांत होते हैं 20, टोटल मिला के 20 दांत होते हैं। दूध के दांतों का फंक्शन क्या होता है या फिर उनका काम क्या होता है? नॉर्मली लोगों का ये मानना होता है कि दूध के दांत हैं गिर जाएंगे तो वो सड़ जाए, गल जाए, और आजकल ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि जंक फूड बच्चों को इजीली अवेलेबल हो रहा है, प्लस बच्चों को पॉकेट मनी अच्छी मिलने लग गई है तो चॉकलेट्स वगैरह बच्चे इजीली खा लेते हैं तो उनको सड़न वगैरह बाकी के इश्यूज दांतों के बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अभी दूध के दांतों का मेन फंक्शन क्या होता है कि अपने जबड़े की साइज मेंटेन रखना। जितना जबड़ा काम करेगा खाना चबाने के लिए उतने बाजू के मसल्स जो होते हैं वो काम करते हैं और उस तरीके से उसकी ग्रोथ होती है, जबड़े की हड्डी बढ़ती है, ताकि जो पक्के वाले दांत आएंगे तो वो बड़े साइज के होते हैं तो उनके लिए जगह बनाए, प्लस उनको डायरेक्शन दिखाए, जो दांत बनते हैं पक्के वाले नीचे वो एक सही तरीके से अपनी पोजीशन में आ जाए, उसको वो रास्ता दिखाने का काम जो है वो दूध के दांत करते हैं। तो इसके लिए दूध के दांत अगर खराब है आपके तो पक्के वाले दांत खराब होने की आपकी जो संभावना है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूध के दांत अगर जल्दी गिर जाए, इवन लेट भी गिर जाए, अगर उसमें टाइम लग जाए गिरने में, तो भी जो पक्के वाले दांत आएंगे, परमानेंट दांत आएंगे, वो आड़े टेढ़े ही आएंगे। दूध के दांतों में सबसे बड़ी चीज है कि नेचुरली दूध के दांतों में एक स्पेसिंग होता है, जिसको टर्मिनोलॉजी, अगर मैं डेंटल टर्मिनोलॉजी बताऊं तो उसको फिजियोलॉजिकल स्पेसिंग कहा जाता है। तो वो जरूरी है। और वो क्यों होती है? क्योंकि आने वाले दांत, जो परमानेंट दांत आने वाले होते हैं, वो सारे डायमेंशन में, चौड़ाई में, लंबाई में बड़े होते हैं। तो वो जगह, जो फिजियोलॉजिकल स्पेसेस है, वो जगह उनकी चौड़ाई से भर दी जाती है।
0: अच्छा।
4: जिन बच्चों में या फिर जो दूध के दांत है उनके बीच में अगर उतनी जगह नहीं होगी, जबड़े की साइज अगर छोटी है पहले से ही, तो कुछ ट्रीटमेंट्स किए जा सकते हैं बचपन में ही ताकि जबड़े की साइज नॉर्मली बढ़े। घरेलू तौर पे हम लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो नॉर्मली कड़क चीजें आजकल जो अवेलेबल होती है वो होती है कड़क चकली, सूप स्टिक्स, या फिर कड़क बूंदी के लड्डू, वो कड़क चीजें मायने नहीं रखती है। जैसे गाजर, जो अपनी पारंपरिक चीजें हैं, गाजर हो गया, मूली हो गया, ककड़ी हो गया, उसको बिना उबाले कच्चा खाओ, ताकि जो नेचुरल एक्सरसाइज है जबड़े की होनी चाहिए वो होती है और नेचुरल ग्रोथ अपने आप नॉर्मल रहती है। ये एक चीज है।
0: लेकिन बच्चे तो ये चीजें खाते ही नहीं है।
4: बच्चे बच्चे हैं, वो तो जिद करेंगे, उनको खिलाना, उनको उन चीजों का महत्व समझाना।

0: पेरेंट्स का काम है
1: जी,
0: ठीक है। तो इसके लिए पेरेंट्स को थोड़ा सतर्क होना जरूरी है कि बच्चा अपना क्या खा रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी की पूरी डेवलपमेंट उसके न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है। एक चीज, अगर दांतों की बात करूं तो खाने की पाचन क्रिया जो है मुंह में चालू होती है। अगर मुंह में कैविटीज है, मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ है, कीटाणु मुंह में है, तो वो खाने के साथ मिक्स होंगे और वो कहां जाएंगे?
1: पेट में
0: जाएंगे, तो पेट की बीमारियां, बार बार लूज मोशंस होना बच्चों को, कॉन्स्टिपेशन होना, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स, ना सिर्फ बच्चों में बड़ों में भी फ्रीक्वेंट एसिडिटी प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें हैं। इवन अगर जनरलाइज में बताऊं, ना सिर्फ बच्चों के केस में, लॉन्ग टर्म कैविटीज कैन कॉज यू हार्ट प्रॉब्लम्स ऑल्सो एंड ब्रेन प्रॉब्लम्स ऑल्सो। बैक्टीरियल डिसीजेस हार्ट के भी हो सकते हैं, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया हम लोग खा रहे हैं वो अपने खून में मिक्स होने वाले हैं। वो खून में मिक्स होंगे, वो कहीं ना कहीं पे तो जाके लॉज करेंगे और उस जगह की वो बीमारियां फैलाएंगे।
1: अच्छा, ये जो दूध के दांतों की आपने बात की, तो जब बच्चे अपने तरीके से ब्रश करने लायक हो जाते हैं, तब से माँ बाप को किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरह की आदतें बच्चों में डालनी चाहिए?
0: सबसे पहली बात, ब्रशिंग कब चालू होना चाहिए ये लोगों को पता ही नहीं है। ब्रशिंग मुंह में जैसे ही पहला दांत दिखता है तब से चालू हो जानी चाहिए
1: जी।
0: उसके पहले मतलब 6-8 महीने तक तो कोई दांत आते नहीं है, उसके बाद ही दांत आने चालू होते हैं। तो उसके पहले, मतलब दांत आने से पहले भी मसूड़े क्लीन करना जरूरी है, मसूड़ों की मसाज करना जरूरी है, ताकि आने वाले दांत जो है वो इजीली आए, बच्चों को तकलीफ ना हो। क्योंकि दांत जो आ रहा है हड्डी में से आ रहा है, वो हड्डी को सेपरेट कर रहा है, मसूड़ों को सेपरेट कर रहा है, तो वो सेपरेट करने के लिए मसूड़ों की अगर मसाज होती रही तो वो इजीली सेपरेट होंगे, और उसको मसाज करने के लिए एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अपनी उंगली से आप मसाज कर सकते हो बच्चे के मुंह में, और वो भी ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट दिन में 1 या 2 बार, ये बहुत है। दूसरी बात, जब माँ दूध पिलाती है बच्चे को, तो उसके बाद उनका मुंह क्लीन करना जरूरी है, क्योंकि दूध में जो शुगर्स होती है वो जो दांत आते हैं उनको खराब कर सकती है। अभी उस मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ कि दांत आने के बाद कैसे ख्याल रखना है, कि जैसे ही पहला दांत मुंह में दिखना चालू हुआ, उंगली में पहनने वाले ब्रश आते हैं, आप वो यूज कर सकते हो, या फिर सिंपल एक गौज होता है, गौज पीस, कॉटन की तरह जो हम लोग नॉर्मली जख्मों पे पट्टी लगाते हैं जो बांधी जाती है, गौज पीस बोला जाता है, वो स्टराइल गौज पीसेस मिलते हैं मेडिकल शॉप में। अगर बच्चे का मुंह उतना नहीं खुल रहा या फिर बच्चा ब्रश को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो आप वो सिंपल गौज पीस को पानी में डुबा के गीले गौज पीस से दांत को साफ कर सकते हो उंगली से।
1: छोटे बच्चों के लिए
0: जिनके 1 या 2 दांत या 4 दांत आए हुए हैं, फिर धीरे धीरे दांत जैसे बढ़ते जाएंगे तो उंगली में ब्रश जो मैं बोल रहा हूँ वो आप यूज कर सकते हो। अभी उसमें 0-3 ईयर्स, मतलब बचपन, पैदा होने से लेके 3 साल तक एक अलग टूथपेस्ट आता है, जो बच्चे इंजेस्ट करे, खा ले, तो भी कोई उनको तकलीफ ना हो,
1: बिल्कुल
0: उसकी जो बनावट रहती है वो उस तरीके से की जाती है। 3 से 9 से 10 साल तक अलग टूथपेस्ट आती है, जिसमें फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है। फ्लोराइड की मात्रा क्यों जरूरी है? क्योंकि दांतों में बनने वाले कैविटीज को रोकना, दांतों की बेसिकली इम्यूनिटी अच्छी रखना फ्लोराइड करता है, दांतों की ग्रोथ अच्छी रखना फ्लोराइड करता है। तो इसके लिए 3 से 10 साल की उम्र तक एक अलग टूथपेस्ट आता है। 10 साल के बाद वो जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं मिक्स डेंटिशन, जहां पे आधे दांत दूध के होते हैं आधे होते हैं परमानेंट के, तो मिक्स डेंटिशन बोला जाता है। तो वो स्टेज चलती है और परमानेंट दांतों का डेवलपमेंट लगभग चलता है 16 साल तक। तो 10 से 16 तक एक अलग टूथपेस्ट यूज किया जा सकता है या फिर होता है, और 16 के बाद आप कोई भी टूथपेस्ट पे शिफ्ट कर सकते हो। तो बेसिकली बच्चों में 2 टाइम ब्रशिंग, जैसे आपने सवाल पूछा अभी कि बच्चों को कैसे समझाया जाए, पहले तो उनको बचपन से ही ये उंगली वाले ब्रश से अगर आप ट्रेनिंग लगाओगे तो उनको आदत पड़ेगी कि ब्रशिंग करना जरूरी होता है, वो साइकोलॉजिकली उनमें वो डेवलपमेंट होगी कि हाँ ब्रशिंग इज मैंडेटरी, 2 टाइम ब्रशिंग इज मैंडेटरी, ठीक है। उसके बाद समझ लीजिए 3 से 4 मिनट ब्रशिंग करना होता है, उससे ज्यादा ब्रशिंग की जरूरत नहीं होती है। हाँ, अभी मुद्दा निकला है तो मैं यहाँ पे ये भी बात क्लियर करना चाहूंगा कि एक टूथब्रश कितने दिन यूज करे,
1: ये हम सभी के मामले में करें।
0: हाँ,
1: चाहे बच्चे हो
0: या बड़े हो, 1.5 से 2 महीने के बाद अपना टूथब्रश चेंज करना है, ठीक है। वो भले कितना भी अच्छा दिखे, नॉर्मली अपना इंडियन मेंटालिटी है जब तक वो ब्रिसल्स है ब्रश के
1: टेढ़े मेढ़े
0: घस ना जाए या फिर वो अलग अलग आकार ना ले ले, तब तक हम लोग चेंज नहीं करते। बट ऐसा नहीं होता, माइक्रो ब्रिसल्स रहते हैं वो, उनमें माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं, उनकी एक लाइफ होती है। मतलब आपने कुछ टूथब्रश ऐसे सुने भी होंगे या देखे भी होंगे, उनके ऊपर कलर इंडिकेटर दिया जाता है अभी ब्रिसल्स में, कि वो फेड हो जाए या फिर इसका कलर चेंज हो जाए तो आपने ब्रश को चेंज करना है। तो उसका भी टाइम फ्रेम उतना ही होता है कि 1.5 से 2 महीने तक आपका वो उसका कलर चेंज हो जाता है या फेड हो जाता है, जो कुछ भी है, तो तब आपको वो चेंज करना होता है। अभी वापस बच्चों की बात करें तो 2 टाइम ब्रशिंग मैंडेटरी होता है। अभी बच्चों को जैसे हमने बात की कि जंक फूड इजीली मिल रहा है, क्रेविंग करते हैं बच्चे, स्कूल्स भी अभी ज्यादा पार्टीज होती है, बर्थडे पार्टीज होती है, तो वो चीजें खिलाए नहीं खिलाए, बच्चे हैं, उनका खाना हक बनता है, लेकिन उसको खाने का एक तरीका होना चाहिए। ये जो खाना मैं बात कर रहा हूँ वो सारा जंक फूड, स्टिकी फूड,
1: चॉकलेट,
0: स्वीट्स, तो उनके लिए अगर आपके बच्चों के केस में नॉर्मली कैविटीज नहीं है तो हफ्ते में 3 से 4 दिन आप उनको दे सकते हो, लेकिन उसका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, 15 मिनट का विंडो। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग की बात बता रहा हूँ। आपके घर में जितनी बड़ी थाली हो, परात बोलते हैं कोई लोग, बड़ी से बड़ी थाली हो, वो थाली पूरी भर के सजा दो उनके सामने जो चीजें उनको पसंद है। उसमें बिस्किट्स आ गए, चॉकलेट्स आ गए, वेफर्स आ गए, 10 पैकेट आपके चिप्स के आ गए, कुछ भी, सब उसके सामने रख दो बच्चों के सामने, और उनको बोलो कि ये 15 मिनट है आपके पास, जैसे खाना है वैसे खाओ, फिर दोनों हाथों से खाओ, दोनों पैरों से खाओ, थाली में बैठ के खाओ या थाली सर पे रख के खाओ, चलेगा।
1: हाँ।
0: लेकिन 15 मिनट के बाद वो सब उठा के रखना है, 15 मिनट के बाद उनको इमीडिएटली ब्रश करवाना है।
1: ओके,
0: सो नॉर्मल 2 टाइम ब्रशिंग प्लस ये तीसरा वाला ब्रशिंग जंक फूड के बाद, इससे कैविटीज नहीं होते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग बच्चों का ऐसे होता है कि हमें घर पे सारी चीजें मिल रही है
1: तो हमको कहीं बाहर
0: क्रेविंग नहीं होता है, बाहर इजिली जो बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर कोई देता है तो तुरंत खाने के लिए जिद करते हैं, तो वो क्रेविंग चली जाती है। हाँ, जब आप ये उठा के रख रहे हो तो ऐसी जगह पे रखना कि एक डब्बा रहे जो उनको दिखे, एक्सेसिबल ना हो, इजीली वो पहुंच ना पाए, नहीं तो आप सो जाओगे, वो वापस खाने बैठ जाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: तो ये चीज अपने को ध्यान देनी है।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की बारी है, फिर आगे की बातें करते हैं।
0: हाँ जी,
1: तो बताइए आपको कौन से गायक बहुत पसंद है?
0: मुझे पुराने गायक पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद है मुझे किशोरदा जी, किशोर कुमार जी।
1: क्या बात है, तो पहला गाना कौन सा चुन रहे हैं आप?
0: पहला गाना मुझे अभी जो याद आ रहा है, ओ साथी रे, मुकद्दर का सिकंदर।
1: क्या बात है, सुनते हैं।

0: सुना ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, ऐसा लग रहा था जैसे ये दांतों के लिए कहा जा रहा हो, क्योंकि क्योंकि दांत अगर नहीं हो तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाए। दांतों की समस्या लोगों को तब समझ में आती है जब समस्या सामने आती है, यानी जब दर्द होता है तब डॉक्टर नजर आता है। यहाँ हम बात करेंगे कैविटी की, कि कैसे कैविटी बनती है और व्यक्ति को सावधान कब हो जाना चाहिए, तब नहीं जब असह्य दर्द हुआ और डॉक्टर साहब के पास गए कि डॉक्टर साहब जल्दी से ठीक कर दो।
1: तो ये समझने से पहले मैं आपको दांत का नेचुरल स्ट्रक्चर कैसे होता है ये थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। कुदरती तौर पे वैसे तो पूरी बॉडी ही इतनी खूबसूरती से बनाई गई है, तो दांतों के स्ट्रक्चर के बारे में मैं अगर बताऊं तो दांत में एक नस होती है। नस के ऊपर एक पार्शियली मिनरलाइज्ड 60% मिनरलाइज्ड लेयर होता है, उसको बोलते हैं डेंटिन। सबका डेंटिन का कलर येलोइश टू ब्राउनिश होता है।
0: अच्छा,
1: उसके ऊपर कोटिंग आती है एनामल की।
0: हाँ।
1: डेंटिन की थिकनेस होती है 4 से 6 mm तक। उसके ऊपर रहती है 2 से 4-5 mm तक इनामल की थिकनेस।
0: ठीक है,
1: तो अभी जो नस है उसके जो सिरे हैं वो डेंटिन तक आए हुए रहते हैं, इनामल में कोई भी नस का सिरा नहीं आया है।
0: बिल्कुल।
1: इसके लिए कैविटी जब स्टार्ट होती है, बैक्टीरियल ग्रोथ जब स्टार्ट होती है, तब कभी दर्द नहीं होता है। दांतों में एक ब्राउनिश स्पॉट या फिर ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है। कभी कभार खाना फंसता है तो हम लोग उसको निकाल देते हैं, टूथपिक से, पिन से, जो कुछ भी मिले उससे निकाल देते
0: लेकिन
1: हैं।
0: नस तक
1: अभी तक पहुंचा नहीं है
0: जी।
1: लेकिन धीरे धीरे वो बैक्टीरिया अंदर बढ़ेंगे, जब डेंटिन तक पहुंचेंगे, नसों के एंड तक पहुंचेंगे, तब कभी कभार पानी पी लिया, ठंडे पानी पे झिंझिनाहट हो रही है, या फिर स्वीट खाया तो जब तक वो स्वीट का असर है तब तक झिंझिनाहट हुई, उसके बाद चला गया, तभी भी हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं,
0: बिल्कुल
1: नजरअंदाज करते हैं। लेकिन वही चीज जब आगे बढ़ के नस तक पहुंच जाती है, तो नस एक ऐसा एरिया होता है कि दांतों की संवेदनाएं ब्रेन तक पहुंचाता है, और दांतों को खून का सप्लाई रखना, दांतों को न्यूट्रिशन देना नसों से ही होता है। तो जब वो नस तक पहुंच जाता है तब जाके असहनीय दर्द जो बोलते हैं वो तब होना चालू होता है,
0: जिसकी हमने चर्चा की।
1: एग्जैक्टली,
0: डॉक्टर साहब मर गए बचा लो।
1: हाँ जी, उसमें भी कुछ लोग काउंटर सेल पे जो मेडिसिन मिलते हैं, मेडिकल में जाके दर्द की दवाई ले लेते हैं, चला लेते हैं। अभी वो नस सड़ गई है।
0: हाँ।
1: नस सड़ने के बाद नीचे हड्डी के नीचे सेप्टिक जमना चालू होता है, उसको डेंटल एब्सेस बोलते हैं।
0: ये बहुत खतरनाक है।
1: यस, फिर कोई दवाई भी असर नहीं करती है, तब जाके डॉक्टर को याद किया जाता है, और तब जाके लोगों की नींद खुलती है कि हमें दांतों की समस्या है या फिर दांतों का ध्यान हमें रखना चाहिए। यहाँ पे मैं और एक चीज कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों में ना एक मिथ है कि मुंह में जितना दांत दिखता है ना उतना ही दांत होता है।
0: अच्छा।
1: पर असलियत ऐसी नहीं है। असलियत जितना मुंह में दांत दिखता है उसका कम से कम 1.5 गुना दांत अंदर होता,
0: होता है। हाँ।
1: हड्डी में बैठा होता है, जबड़े की हड्डी में, तभी हम लोग सारी चीजें चबा पाते हैं। नहीं तो अगर सिर्फ इतना सा दांत होता तो हम लोग जितनी चीजें खा रहे हैं आज, जिस तरीके की चीजें खा पी रहे हैं, वो जरा भी पॉसिबल नहीं था, मुमकिन ही नहीं था। तो ये मिथ लोगों ने थोड़ा तोड़ लेंगे अपना तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे, कि दांत मुंह में दिखता है उतना नहीं होता है, उससे 1.5 गुना दांत अंदर होता है। मतलब सिंपली अगर इस चीज को मैं समझाऊं तो बिल्डिंग जितनी बाहर दिखती है उसका पाया उतना नीचे गहरा होता है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तब जाके वो खड़ी रह पाती है।
0: सेम बात
1: यहाँ पे है। फिजिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है कि बेस अगर स्ट्रांग रहेगा तो ऊपर का स्ट्रक्चर काम करेगा, वही प्रिंसिपल यहाँ पे लागू होता है। तो ये चीज है। तो ये कैविटीज जब नस तक पहुंच गई है, नीचे एब्सेस बना रही है, तब जाके दवाई असर नहीं कर रही, तब लोग जाते हैं डॉक्टर के पास। अभी जैसे मैंने बोला कि कैविटी शुरुआत में स्टार्ट होती है, बैक्टीरियाज की वजह से होती है। ये बैक्टीरियाज कहां से आते हैं? तो बॉडी में बहुत तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन अपने मुंह में और अतड़ियों में, इंटेस्टाइन्स में, बहुत सारे तरीके के, मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि दुनिया में जितने अवेलेबल बैक्टीरियाज है उतने सारे तरीके के बैक्टीरियाज अपने इंटेस्टाइन में और मुंह में अवेलेबल है, लेकिन उसमें से कुछ बैक्टीरियाज बेनिफिशियल होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज हार्मफुल होते हैं, मतलब नुकसानदायी होते हैं। तो जब ये हार्मफुल बैक्टीरियाज बढ़ जाते हैं तब सड़न बढ़नी चालू होती है, क्योंकि वो सर्वाइव करते हैं कैल्शियम पे एंड हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल्स, जो इनामल का स्ट्रक्चर है, फाउंडेशन स्ट्रक्चर इनामल का, उसको गला के वो अपना कैल्शियम की नीड पूरी करते हैं। और ये कब होता है? दांतों पे चिपका हुआ कोई भी खाना कैविटी बना सकता है लंबे समय तक। हम लोग स्वीट्स को या चॉकलेट्स को जल्दी दोष दे देते हैं। हाँ, उसका कारण भी है वैसे, क्योंकि स्वीट्स खाने के बाद में नॉर्मली जो अपनी थूक है, सलाइवा है, उसका पीएच वो होता है 7.2 to 7.4, लेकिन जब हम लोग स्वीट्स खाते हैं तो इट ड्रॉप्स, वो कम हो जाता है इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर वो 4 से 5 के बीच में आ जाता है। मतलब न्यूट्रल रीडिंग होता है पीएच का 7, मतलब वो चीज ना एसिडिक है ना अल्कलाइन है, नॉर्मली सलाइवा अपना अल्कलाइन होता है। तो जब वो एसिडिक बन जाता है तो एसिडिक एटमोस्फियर में जो बैक्टीरियाज ग्रो होते हैं वो दांतों को गलाने के लिए, या फिर वो हार्मफुल बैक्टीरियाज है, वो खुद को सर्वाइव करने के लिए दांतों को गलाना चालू कर देते हैं,
0: और ये हम खुद इस तरह का माहौल बनाते हैं दांतों में।
1: एग्जैक्टली, नॉर्मली ये तभी होता है जब आप ब्रश नहीं कर रहे हो, या फिर स्वीट्स खाए हैं, टेस्ट अच्छा लग रहा है तो बहुत देर तक उसको मुंह में ऐसे ही घोलते बैठे हो
0: जी।
1: रात में नॉर्मली जब

0: लोग ब्रश नहीं करते हैं या फिर खाना खा के तुरंत सो जाते हैं, तो अपना जो थूक है, सलाइवरी सिक्रीशन है, वो भी कम हो जाता है। नहीं तो सुबह तक, वो भी कुदरती देन है, वो फंक्शन वैसा है, नहीं तो सुबह तक अपना तकिया पूरा सलाइवा से भर जाएगा,
1: बिल्कुल
0: ठीक है? तो वो सिक्रीशन कम होता है, तो इसकी वजह से जो सलाइवरी एंजाइम्स रहते हैं जो इम्यूनिटी का काम करते हैं, वो भी कम हो गए। सलाइवा का दूसरा काम होता है कि वॉश आउट करना, नेचुरल रिंसिंग देना दांतों को, तो वो भी नहीं हो पाता है। इसके लिए रात में जो लंबा समय 8 से 10 घंटे हम लोग जब सोते हैं, तब ये बैक्टीरिया जल्दी ग्रो करते हैं। इसके लिए रात में ब्रश करके सोना जरूरी होता है
1: हाँ, बिल्कुल।
0: जी।
1: और सुबह उठते ही ब्रश करना
0: ब्रश करना
1: बहुत
0: जरूरी
1: जरूरी
0: होता
1: है।
0: है।
1: डॉक्टर साहब, बातें ओरल हाइजीन की चल रही हैं और आपने बहुत सारी बातें बताई कि किस तरह से कैविटी पैदा होती है और बाकी तमाम चीजें हैं। आज हम देख रहे हैं कि पुरानी पीढ़ी के दांत बड़े मजबूत देखे गए हैं। हमारी दादी नानियां कड़क से कड़क चीज, मतलब
0: सही,
1: आपने गाजर और ककड़ी को कड़क कहा, उससे कहीं ज्यादा कड़क चीजों को मजे
0: अखरोट
1: से,
0: जैसे।
1: अखरोट जैसी चीजों को, गन्ने को मजे से छील के खा ले रही।
0: हाँ जी,
1: आज के बच्चों में तो वो, उनके दांतों में वो दमखम दिख ही नहीं रहा है। तो मुद्दा ये है कि क्या आज का समाज दांतों को लेकर कम अवेयर है और हम कमजोर दांतों वाले जमाने में आ गए?
0: अभी इसका एक्सप्लेनेशन मैंने जैसे पहले भी बताया था वैसे ही आएगा यहाँ पे, कि प्रॉब्लम ये हो चुका है ना कि ज्यादा पका हुआ खाना खाने की आदत बन चुकी है, सॉफ्ट खाना खाने की आदत बन रही है लोगों की, जिसकी वजह से मसल्स और जॉ बोन, हड्डी जो होता है जबड़े का, उतना स्ट्रांग बन ही नहीं पा रहा
1: जैसे पहले के
0: है।
1: बुजुर्गों का है।
0: एग्जैक्टली, क्योंकि वो कच्चा खाना खाते थे, खेतों में चलते चलते उनका गन्ना चूसने का काम होता था, गन्ना दांतों से छील के खाने का काम होता था, उनका खाना उतना फाइबरस था। फाइबर्स बोलते खाने में, बेसिक है, मतलब जैसे जिम जाते हैं हम लोग मसल्स बढ़ाने के लिए, वहां क्या करते हैं हम लोग, मसल्स को एक्स्ट्रा ट्रेन करते हैं, एक्स्ट्रा उसकी काबिलियत से ज्यादा उसके ऊपर लोड डाला जाता है, तब जाके मसल एक्स्ट्रा बड़ा बनता है। सेम फेशियल मसल्स का होता है, जो चबाने वाले मसल्स है उनमें भी वही चीज है, जितना काम आप उनको दोगे उतना वो बनेंगी, और ये चीज अगर डेवलपमेंटल स्टेज में हो तो ज्यादा अच्छा है। बट हम लोग, मैं ये नहीं बोलूंगा कि लोगों का अवेयरनेस कम हो रहा है, पैम्परिंग ज्यादा बढ़ गया है, बच्चों का पैम्परिंग ज्यादा बढ़ गया है। मतलब अगर हमारे भी बचपन की बात करें तो पेरेंट्स, ये बना है ये खाना पड़ेगा,
1: बिल्कुल
0: ये रूल होता था घर का, आज ऐसे होता है। मतलब मेरा बच्चा भी छोटा है अभी, तो हमारे घर पे भी ऐसा होता है बहुत बार, लेकिन मैं खुद वहां पे एक विलन का रोल ले लेता हूं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए।
1: ये तो खाना ही पड़ेगा।
0: हाँ जी, तो नॉर्मली आजकल खाना बनता है कि बच्चा तुझे क्या चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए,
1: हाँ, उनके मुताबिक बन रहा है।
0: हाँ उनके मुताबिक बन रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये चीज पूरी तरीके से गलत है, लेकिन एक लिमिट होना चाहिए, हम लोग वो लिमिट कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। भी इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, एक आध साल पहले की बात है, या फिर बहुत बार हुआ है वैसे, लेकिन ये एक एपिक पेशेंट मेरे क्लिनिक में आए थे जो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। 5 साल की बच्ची को लेके आए थे, दांतों में कैविटीज थे, मसूड़ों में सूजन थी, मतलब उसका एब्सेस बन गया था अंदर, इतना उसका इन्फेक्शन फैला हुआ था। उसके पिताजी उसको लेके आए थे, मैंने देखा, चेक किया, ट्रीटमेंट बताया, उन्होंने सुना, सुनने के बाद उन्होंने बच्ची को पूछा, बेटा आपको करवाना है? अभी 5 साल की बच्ची को क्या पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, जिसने पहली बार दांतों का दवाखाना देखा है। तो मैंने उनको पूछा कि आप उसे क्यों पूछ रहे हो, वो तो छोटी है, उसको क्या समझेगा क्या अच्छा क्या बुरा। लेकिन उनका जवाब बहुत यादगार था मेरे लिए, कि नहीं, आजकल बच्चों को पूछना पड़ता है।
1: ओहो,
0: अभी इतना बच्चों को पूछ के अगर आप जियोगे, तो मैंने उनको भी ये चीज हंसते हुए बोल दी थी कि ये थोड़े दिनों बाद आपको नहीं पूछेगी।
1: बहुत सही है, बहुत सही है।
0: तो ये जो दुलार है ना,
1: ये बहुत
0: इस,
1: नुकसानदेह है।
0: हाँ, मतलब एक लिमिट तक होना चाहिए। इसके लिए मैंने बोला ना कि पेरेंट्स को समझना चाहिए कि कहाँ प्यार करना है और कहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की बारी है, उसके बाद
0: अच्छा,
1: हम रूट कैनाल की बात करेंगे।
0: श्योरली। सो अभी किशोर दा का ही गाना सुनेंगे, मेरे नैना सावन भादो,
1: क्या बात है, महबूबा
0: क्योंकि
1: फिल्म का
0: दांतों में
1: गाना।
0: दर्द होता है तो नैनों से तो सावन
1: हा
0: बरसना
1: हा
0: ही है।
1: हा सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, रूट कनाल ट्रीटमेंट आजकल बहुत लोगों को कराना पड़ता है और दांतों को लेकर एक जरूरी ट्रीटमेंट है जब सड़न हो जाती है। क्या इससे बचा जा सकता है? किन मामलों में, किन सावधानियों के जरिए और कब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है?
1: जैसे मैंने आपको दांत का स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि नस अंदर होती है, उसके ऊपर डेंटिन होता है, उसके ऊपर इनामल होता है, तो जब सड़न नस तक पहुंची है तब जाके रूट कैनाल करना पड़ता है। रूट कैनल में बेसिकली क्या किया जाता है कि जो आपकी नस सड़ रही है उसको साफ किया जाता है और उसकी जगह पे नकली नस बोल सकते हो आप उसको, या फिर आर्टिफिशियल मटेरियल का फिलिंग किया जाता है।
0: Yes.
1: जिसकी वजह से दांतों का सेंसेशन तो चला ही जाता है बट उसका ब्लड सप्लाई भी काफी हद तक कम हो जाता है।
0: Yes.
1: इसके लिए रूट कैनल करने के बाद कैप लगाना मैंडेटरी हो जाता है।
0: जी
1: क्यों? क्योंकि एक तो दांत का स्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है, ब्लड सप्लाई कमजोर हो रहा है, मतलब जो न्यूट्रिशन मिल रहा है दांतों को वो भी कम हो रहा है, और तीसरी बात, जितना बड़ा गड्ढा होता है उतना बड़ा सीमेंट वहां पे टिके रहना मुश्किल होता है। चौथी बात यह है यहाँ पे कि नस तो चली गई, सेंसेशन चली गई, तो जब वापस उसमें अगर कैविटी लगेगी तो पेशेंट को भी पता नहीं चलेगा और दांत टूट जाएगा। अभी दांतों के ट्रीटमेंट्स कैसे होते हैं और किस तरीके से किए जा सकते हैं? सबसे पहली बात तो होती है नॉर्मल सफाई करना। जब आपके दांतों में सड़न नहीं है लेकिन दांतों पे कुछ परत दिख रही है आपको, तो उसको साफ कर लो। उसके बाद आता है फिलिंग करना। जैसे मैंने बताया कि शुरुआती दौर में कैविटी दांतों में एक ब्राउन स्पॉट या काला स्पॉट की तरह दिखती है, या फिर कभी कभार थोड़ा बहुत खाना फंस रहा है, उसी वक्त अगर उसको ट्रीट किया जाए तो सिंपल ट्रीटमेंट होता है कि उसको साफ किया जाता है, फिर वो गड्ढा बनता है उसमें सीमेंट भरा जाता है। अभी ये दांतों के स्पेशल सीमेंट्स होते हैं, कुछ लोगों का मिथ यहाँ पे ये भी है, और ये मॉक डेंटिस्ट या फिर स्ट्रीट डेंटिस्ट जो होते हैं वो ये चीज करते भी है कि बहुत बार दांतों में एक्रेलिक भर के दे देते हैं।
0: अरे
1: एमसील भरे हुए दांत देखे हैं मैंने,
0: अरे बाप रे,
1: व्हाइट सीमेंट भरा हुआ देखा हुआ है, जिसकी वजह से फिर कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि वो दांत तो चला ही गया, जबड़े का हड्डी भी गल गया, और उसकी वजह से आजू बाजू के भी दो दो तीन तीन दांत निकालने पड़े।
0: ओहो।
1: और ये होता है सस्ते के चक्कर में, जब लोग भागते हैं सस्ते में हमारा काम हो रहा है। सीधी सी बात है, दुनिया में आज हर कोई बिजनेस करने बैठा हुआ है। अगर कोई चीज 10 रुपए की बन रही है तो बनाने वाला उसको 15 रुपए की या 20 रुपए की बेचेगा।
0: बिल्कुल।
1: वो डिस्ट्रीब्यूटर वहां से लेगा, वो अपना मार्जिन जोड़ेगा, और फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास आ रही है या फिर पेशेंट के पास जा रही है, तो हर एक का मार्जिन जुड़ के अगर वो 10 रुपए की चीज आपको कोई 9 रुपए में ऑफर करे तो सीधी सी बात है उसकी बनावट में कुछ खोट है, खामियां है, कुछ भी है, मतलब बनावट खराब है। डेंटिस्ट्री मतलब बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं शरीर के मामले में कि जहां पे हम लोग शरीर में कुछ चीजें डाल रहे हैं जो एक्सटर्नल है, पर अगर वो शरीर से सुसंगत नहीं होंगी, शरीर के मुताबिक नहीं होंगी, तो शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा।
0: और लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि दांतों में कितना ज्यादा प्रेशर पड़ता है।
1: एग्जैक्टली।
0: तो उस चीज का मजबूत होना कितना जरूरी है।
1: एग्जैक्टली, मतलब अगर यहाँ पे नंबर वाइज मैं बताऊँ,
0: हाँ, वो ही मैं जानना चाहता हूँ।
1: दांतों का जो नॉर्मल हमारा बाइटिंग फोर्स रहता है, इट इज रेंजिंग फ्रॉम 110 to 130 pascal, दैट इज न्यूटन सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर पे 130 न्यूटन का प्रेशर हम लोग डालते हैं, ये नंबर वाइज।
0: ये बहुत ज्यादा है।
1: बहुत ज्यादा है। तो ट्रीटमेंट्स पे हम लोग थे, तो पहले तो फिलिंग हो गया, उसके बाद फिलिंग प्लस कैप होता है। ये बच्चों में भी होता है और बड़ों में भी होता है। ये कब किया जाता है? जब कैविटी से दांत का ऊपर का स्ट्रक्चर अच्छा खासा सड़ गया है लेकिन वो नस तक नहीं पहुंचा है, तो उतना बड़ा सीमेंट लोड नहीं ले पाएगा जितना हम लोग फोर्स की बात कर रहे थे अभी। तो वो सीमेंट को रिटेन करने के लिए, उसको एक स्ट्रक्चर रखने के लिए उसके ऊपर कैप लगाया जाता है।
0: यस।
1: फिर तीसरा ट्रीटमेंट आता है रूट कैनाल। जब नस छू गई है, नस इन्फेक्ट हो गई है या फिर नस के नीचे इन्फेक्शन हुआ है, फिर उसमें 2-3 बार नस के एरिया की सफाई की जाती है, पूरी सड़न साफ करके नस तक एक्सेस लिया जाता है, नस के एरिया की सफाई की जाती है, दवाई डाली जाती है ताकि जो बैक्टीरियाज अंदर चले गए वो मर जाए, खत्म हो जाए और वो पूरा एरिया असेप्टिक बने। फिर उसको पूरा स्टराइल करके, मतलब फिलिंग करने से पहले भी अलग अलग दवाइयां डालते हैं हम लोग उसमें ताकि वो पूरा एरिया स्टराइल हो जाए, डिसइन्फेक्ट हो जाए, और फिर हम लोग फिलिंग करते हैं। फिलिंग करते वक्त हम लोग इन चीजों का भी ध्यान रखते हैं कि जो पहले वाला फिलिंग या फिर सीमेंट निकाला हुआ है वो कहीं पे भी टच ना हो, या फिर थूक भी अपनी टच ना हो उसको, क्योंकि थूक में भी बैक्टीरिया होते हैं जैसे हमने बात की, तो वो भी वहां पे टच ना हो, ये ध्यान हम लोग रखते हैं। फिर उसके बाद फिलिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर कैप लगाई जाती है, और आखिरी ट्रीटमेंट होता है दांत निकालना, जबकि पूरा ही दांत टूट चुका है या फिर बहुत ज्यादा सड़न बढ़ चुकी है। जैसे बड़ी चौबर होती है पीछे वाली, उनकी 2 या 3 जड़ें होती है, वो जड़ों के बीच में क्रैक आने लग गया है, उस सिचुएशन में रूट कैनाल भी असर नहीं करता है, तब दांत निकालना पड़ता है। अभी यहाँ पे एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि दांत निकालने के बाद बच्चों में भी एक चीज होती है जिसको बोला जाता है स्पेस मेंटेनर, और बड़ों में एक चीज की जा सकती है, दांत बिठाने की जरूरत होती है। मुंह में एक इकलौता दांत ऐसा है जिसको बोलते हैं अक्कल दांत, विजडम टूथ, वो अगर निकाल दिया जाए और ना बिठाया जाए तो चलता है, क्योंकि नेचुरली भी जब हम लोग मुंह बंद करते हैं तो विजडम टूथ बहुत सारे केसेस में, मतलब मैक्सिमम केसेस में, वो टच होता ही नहीं ऊपर नीचे. तो खाना चबाने का एज सच कुछ फंक्शन नहीं होता उसका, ना दिखने में वो काम में आता है, तो इसके लिए वो दांत ना बिठाए तो चलता है. लेकिन उसे छोड़ के बाकी कोई भी दांत अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो उसे बिठाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. अभी ये क्यों होती है?
0: बिल्कुल,
1: नॉर्मली लोगों का सवाल आता है कि क्यों बिठाना है, मैं तो खा
0: इसके
1: पा
0: बिना
1: रहा
0: भी चल सकता है,
1: इसके बिना भी मेरा चल रहा है, क्योंकि एक ही साइड का एक दांत निकाला हुआ, पीछे की चौबर तो है, आगे के दांत है, दूसरे साइड में मेरे सब फाइन है. सबसे पहली बात ये होती है कि नॉर्मली जब हम लोग दांतों पे प्रेशर देते हैं तो जैसे हमने बोला कि उसकी 1.5 गुना जड़ें अंदर होती है, वो जड़ों के द्वारा हड्डी में फोर्स पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है. जो दांत के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है वो पूरे जबड़े के हड्डी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये उसका फंक्शन है. बॉडी की एक जनरल टेंडेंसी होती है कि जो भाग हम लोग यूज नहीं करते हैं बॉडी वहां पे न्यूट्रिशंस वेस्ट नहीं करती है. इसका एक क्लासिक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं यहाँ पे, तो किसी का हाथ अगर प्लास्टर में है, समझ लीजिए किसी वजह से फ्रैक्चर हुआ है प्लास्टर में, 1.5-2 महीने बाद जब प्लास्टर निकाला जाता है तो आपने भी देखा होगा कि वो हाथ उतना मजबूत नहीं दिखता है जितना उसका पहले था. क्यों? क्योंकि उतना फंक्शन वो कर ही नहीं रहा था 1.5-2 महीने तक. वहां पे न्यूट्रिशंस की सिर्फ जरूरत थी उस घाव भरने के लिए, वो हड्डी भरने के लिए उतने ही न्यूट्रिशंस पहुंचाए जाते हैं. तो वही होता है जबड़े की हड्डी के मामले में.
0: अच्छा,
1: जब दांत निकल गया वो हड्डी का फंक्शन खत्म हो गया तो हड्डी गलना चालू हो जाता है. वो गलते गलते इतना गल जाता है कि आजू बाजू के दांतों का भी हड्डी गल जाता है. एक चीज ये होती है. दूसरी चीज, आगे का दांत पीछे झुक जाता है, पीछे का दांत आगे झुक जाता है, ऊपर वाला दांत नीचे आता है या नीचे वाला दांत एंटी ग्रेविटी ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी ट्राइज टू रिस्टोर इट्स फंक्शन.
0: ओके,
1: खाना खाना तो चालू ही है, बॉडी को सिग्नल्स मिल ही रहे कि यहाँ पे खाना चबाया जा रहा है,
0: तो वो
1: बैलेंस करने के लिए जो दांत अवेलेबल है उनको वो एडजस्ट करने की कोशिश करती है.
0: ओके,
1: एक दो दिनों में ये चीज नहीं होती है, टाइम लगता है, लेकिन ये सब जब होता है और जब पेशेंट की नींद खुलती है तब उनके आजू बाजू के दांत भी खराब हो चुके होते हैं.
0: इसलिए डॉक्टर के पास जितने जल्दी हो सके, डेंटिस्ट के पास समस्या से पहले पहुंचना चाहिए.
1: सही बात है. और इसके लिए सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं करना है, डेली आप अगर ब्रश कर रहे हो ना तो उसी टाइम पे ब्रश होने के बाद मुंह में सिर्फ अपने झांकना है 1 मिनट के लिए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं दिख रहा, कहीं कुछ और तो नहीं दिख रहा, और अगर दिख रहा है नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकल रहा वो चीज, तो एक बार डेंटिस्ट का ओपिनियन लिया जाए.
0: ठीक बात है,
1: इतनी सी बात होती है. पर हमारा अभी लाइफस्टाइल इतना स्पीड वाला हो गया ना कि उतना भी वक्त हमारे पास नहीं है. और जब तक प्यास लगती नहीं है हम लोग कुएं के पास जाते नहीं है.
0: डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि आप गुनगुनाते भी हैं और गाने का शौक रखते हैं.
1: हाँ जी, शौकिया तौर पे रखता हूँ, मैं खुद को गायक नहीं मानता हूँ
0: जी,
1: बट हाँ कभी कभार छोटे मोटे घरेलू जो गेट टुगेदर होते हैं वहां पे हम लोग गा लेते हैं.
0: तो हमारे लिए भी गाइए.
1: ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ
0: जी.
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
0: क्या बात है, सुनते हैं ये गाना.

0: डॉक्टर साहब, जिंदगी एक सफर तो है, लेकिन जब दांतों का दर्द होता है तो इंसान बहुत सफर करता है। ये
1: सही
0: दूसरा वाला सफर जो है ये बड़ा खतरनाक है।
1: है।
0: माँ बाप दो बातों से परेशान रहते हैं, एक बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांत और दूसरे बाहर निकले हुए दांत। इन दोनों के लिए कुछ ना कुछ उपाय करने की कोशिश करते हैं। मैं देखता हूँ चारों तरफ ब्रेसेस लगे हुए बच्चे नजर
1: हाँ
0: आते
1: जी,
0: हैं,
1: हाँ
0: ये
1: जी।
0: सब क्या मामला है?
1: जैसे हमने बात की कि जब जबड़े की ग्रोथ बराबर नहीं होती है
0: हाँ,
1: तब दांतों को आने के लिए जगह नहीं होती है, परमानेंट दांत बड़े होते हैं तो वो जैसे जगह मिलती है वैसे अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, तब दांत आड़े टेढ़े हो जाते हैं।
0: अच्छा,
1: अभी आड़े टेढ़े दांत क्यों नहीं होने चाहिए? नॉर्मली लोग एक चीज समझते हैं कि एस्थेटिक वाइज दिखने के लिए वो ज्यादा अच्छा नहीं दिखता है, या फिर ज्यादा आगे है तो इसके लिए वो सोचते हैं कि हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन इसका और एक प्रॉब्लम होता है आगे चल के, क्या होता है ना, दांतों के ऊपर ही नहीं दांतों के बीच में भी गैप्स होते हैं नॉर्मली। वो गैप्स में जब खाना फंसता है, और अगर आपके दांतों के अरेंजमेंट ठीक नहीं है तो आपको फंसा हुआ खाना समझ में भी नहीं आता है,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: उसकी वजह से कैविटीज ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से दांतों के प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ते हैं, और वो व्यक्ति परेशान रहता है जिंदगी भर कि मेरे दांतों में हमेशा प्रॉब्लम ही होती है। दूसरी बात, हाँ हमने ब्रशिंग की बात की, यहाँ पे एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि दांतों के बीच के एरिया को साफ करने के लिए कोई भी ब्रश आज तक बना नहीं है, उसके लिए बना है लेकिन जब गैप्स उतने बड़े हो, उसको प्रोक्सा ब्रशेस बोला जाता है, तो वो डिपेंड करता है कि गैप कितना है, बट नॉर्मली जो टचिंग होते हैं दांत या फिर जो नॉर्मल गैप्स होते हैं जहां पे खाना फंस रहा है वो नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकलता है, तो उसके लिए करना

0: पड़ता है फ्लॉस,
1: फ्लॉस के लिए वो
0: धागा आता है,
1: धागा
0: नायलॉन
1: आता
0: का
1: है।
0: धागा रहता है, इसको फ्लॉस ही बोला जाता है, अलग अलग कंपनियां बनाती है उसको। उसमें भी दो तीन टाइप के आते हैं, आपके लिए कंफर्टेबल रहे वो आप कीजिए, ये मेरी सलाह रहेगी यहाँ पे। अभी आड़े टेढ़े दांतों की बात करेंगे, आगे आए हैं, एस्थेटिकली अच्छे नहीं दिखते हैं, तो ब्रेसेस, यस इट इज द सोल्यूशन। अभी तो ब्रेसेस में बहुत सारे एडवांसमेंट्स आए हुए हैं, अलाइनर्स करके चीज आई हुई है जो पूरे ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस होते हैं कि पहना है व्यक्ति ने कुछ समझ में नहीं आता है, जिसको अलाइनर्स बोला जाता है। तो अभी उसमें भी कैसा है कि बनाने वाली कंपनीज बहुत है, लेकिन अच्छा प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज बहुत कम है, और प्रोडक्ट जब तक अच्छा नहीं है तब तक रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा डिजिटल प्रोग्रामिंग होता है, स्कैन किया जाता है आपके जबड़े का पूरा,
1: जी
0: और वो प्रोग्राम बताता है कि वो सेट्स कितने लगेंगे अलाइनर्स के। फिर हर सेट आपको 15 से 20 दिन पहनना होता है,
1: हाँ
0: तब जाके कुछ चेंज होता है दांतों में, अरेंजमेंट में, तब दूसरा सेट पहनना होता है। अभी ये निकालने पहनने वाली चीज है, इसकी सबसे बड़ी खामी भी यही है और अच्छाई भी यही है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि खामी मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली लोग निकाल के भूल जाते हैं वापस पहनना। वो भले निकालने पहनने वाली चीज हो, लेकिन उसको दिन में 20 से 22 घंटे पहनना जरूरी होता है, वो सिर्फ ब्रशिंग के टाइम पे या खाना खाने के टाइम पे आप निकाल सकते हो, बाकी टाइम आपको पहन के रखना है, पहन के बात करनी है, पहन के सोना है, वैसे भी वो दिखता नहीं है, तो मोस्ट कंफर्टेबल थिंग। पर अभी भी कुछ चीजें हैं जो अलाइनस से नहीं की जा सकती, जैसे ज्यादा ही कॉम्प्लिकेशंस है, तो उसके लिए फिर हम लोग हाफ ब्रेसेस से करते हैं और हाफ अलाइनस से ट्रीटमेंट कर देते हैं कि हाँ नॉर्मल पे आ गया, फिर हम लोग अलाइनस पे शिफ्ट करेंगे। इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर बजट, बाकी फाइनल रिजल्ट जो आपको चाहिए होता है वो सब में आता है, सेम ही आता है, ये डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, आपकी चॉइस क्या है। जितनी एस्थेटिक चीजें आप लोगे जो ना दिखे या फिर दिखने में ज्यादा खूबसूरत हो, तो वो थोड़ी महंगी जाती है, और जितना सिंपल लुकिंग चीज रहेगा या फिर थोड़ा और दिखने के लिए होगा, जैसे नॉर्मली आप मेटल के ब्रेसेस देखते हो, स्टील के ब्रैकेट्स लगाए हुए होते हैं, वो एक सस्ता ऑप्शन है। क्योंकि मैं खुद पर्सनली पेशेंट्स को कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि महंगे वाली चीज के लिए जाइए आप, अनलेस एंड अनटिल उनका प्रोफेशन डिमांड ना कर रहा हो, या फिर लेट वो ब्रेसेस कर रहे हैं, मतलब बड़े उम्र में कर रहे हैं, तब मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इनविजिबल चीजों में जाइए। पर यंग बच्चा है जहां पे एस्थेटिक उसके कंसर्न नहीं है उतने, तब हम लोग नॉर्मली सस्ते वाले ब्रेसेस में भी जाने का ऑप्शन दे देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, दांतों की अरेंजमेंट ठीक हो जाती है, तो कहीं पे खाना फंस रहा है नहीं फंस रहा है वो सारी चीजें क्लीन रहती है, और जबड़े की हड्डी की ग्रोथ अच्छी रहती है। लॉन्ग टर्म में अगर आपके दांत आड़े टेढ़े हैं, आड़ा टेढ़ा प्रेशर पड़ रहा है उनके ऊपर, भले आप नॉर्मल खाना पीना भी खा रहे हो और फिर भी आड़ा टेढ़ा प्रेशर पड़ रहा है, तो फिर भी आपका हड्डी कमजोर हो जाता है, हड्डी गल जाता है, उसको ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन बोला जाता है, मतलब नॉर्मल बाइट की वजह से ट्रॉमा हो रहा है दांतों पर और वो हड्डी गल रही है, तो ये सारी चीजें आप ब्रेसेस से ठीक कर सकते हो, ये चीज है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, कई लोग होते हैं जिनके मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आती है, दांतों की बहुत सड़न होती है, पुराने जमाने से एक बहुत बड़ी समस्या पायरिया रही है,
0: हाँ जी
1: इसकी बात करते हैं, और उसके बाद उन मरीजों की बातें करेंगे जिनको पूरा डेंचर बदलने की जरूरत पड़ती है, एक्सट्रीम केसेस की बात उसके बाद करेंगे।
0: चलेगा। तो आपका पहला सवाल है पायरिया के बारे में। पायरिया जो चीज होती है, एक्चुअली ये बीमारी है जबड़े की हड्डी और मसूड़ों की,
1: अच्छा वो दांतों की बीमारी नहीं है।
0: दांतों की बीमारी नहीं है, ये
1: ओहो
0: पहले समझने वाली बात है। सबसे बुरी बात पायरिया की ये है, स्पेशली इंडियन पॉपुलेशन के लिए, कि इसमें मैक्सिमम लोगों को दर्द होता ही नहीं है, बहुत सारे केसेस में तो एक्सट्रीम बुरा हो जाता है तभी भी दर्द नहीं होता है। लोग सिर्फ इतना बोलते कि दांत अपने आप हिलने लग गए और अपने आप गिर गए, अपने आप कभी दांत नहीं हिलता है। आप खुद सोचिए कि जितना दांत मुंह में दिख रहा है उससे 1.5 गुना दांत अंदर हड्डी में बैठा हुआ है, वो हड्डी जब गलेगी तब
1: तब
0: उसका
1: तो
0: सपोर्ट
1: जाके
0: जाएगा,
1: यस
0: तब दांत हिलेगा,
1: ये
0: तो
1: लंबा
0: हड्डी
1: मामला है।
0: वो एक दिन में होता नहीं है, पायरिया का बीमारी एक दिन में होता नहीं, उसके भी 4 स्टेजेस है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 बोलते हैं हम लोग, उसमें टेक्निकल चीजें हैं। लेकिन ये क्यों होता है, तो दांतों के ऊपर जो परत जमती है, अभी इसमें जो काम करते हैं वो बैक्टीरियाज अलग है, दांतों को सड़ाने वाले बैक्टीरियाज अलग है, उसके डिटेलिंग्स में मैं नहीं जाऊंगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी चीजें। पर ये जो परत जमती है दांतों के ऊपर, खाने की परत समझ लो या फिर कोई भी स्वीट की परत है, उसमें बैक्टीरियाज पनपने चालू हो जाते हैं, स्पेशली जहां पे आप ब्रश नहीं कर रहे हो, या फिर बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि नॉर्मली लोगों को एक ही साइड से खाना चबाने की आदत होती है, तो दूसरे साइड में सलाइवरी सिक्रेशन कम होता है, तो वहां पे भी ये परत जमना चालू हो जाता है, तो उस परत में जो बैक्टीरियाज जमते हैं उनका भी खाना होता है कैल्शियम, वो मसूड़ों में से अंदर जाके हड्डी से कैल्शियम लेना चालू करते हैं, तब जाके हड्डी गलती है। तो इसमें पायरिया जो बड़ा टर्म है उसको दो टर्म्स में डिवाइड किया जाता है, एक जिंजिवाइटिस और फिर होता है पेरियोडोंटाइटिस।
1: ओके
0: दांत और हड्डी इनके बीच में एक लिगामेंट होती है जिसको बोलते हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट,
1: ओके
0: वो लिगामेंट की बीमारी होती है पेरियोडोंटाइटिस। तो ये जो बैक्टीरियाज है वो कहाँ से जा रहे हैं, दांतों के ऊपर जमी हुई परत से ही जा रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पे ध्यान रखनी जरूरी होती है, जैसे मैंने बोला कि जो चीज आपके ब्रश से साफ नहीं हो रही है तो उस चीज के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। उसको वक्त रहते ही आपने साफ कर लिया तो बहुत सारे केसेस में ग्रेड 1 वाली स्टेजेस में तो सेल्फ रिपेयरिंग चीज है, उसके लिए कोई ज्यादा मेडिसिन भी नहीं देने पड़ते, सिर्फ साफ करना पड़ता है और अपने आप बॉडी ठीक कर लेती है उसको। अभी पायरिया जब होता है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, एक मसूड़े में सूजन दिखना, अगर आप देखोगे तो समझ में आएगी, नॉर्मली लोगों के पास देखने के लिए वक्त है नहीं। वो आगे चल के मुंह से बदबू आना,
1: हाँ, ये थोड़ा विजिबल साइन है एक तरह
0: एग्जैक्टली
1: से।
0: ये विजिबल साइन है, लेकिन इसको भी लोग नजरअंदाज करते हैं क्योंकि अपने मुंह की बदबू अपने आप को नहीं आती है,
1: लेकिन वो एक सोशल डिलेमा बन जाता है।
0: सोशल डिलेमा बन जाता है अगर खुद को आई तो,
1: हाँ,
0: अगर आप उस बारे में अवेयर हो, नहीं
1: लोग
0: तो
1: आपसे दूर जाने लगते हैं।
0: हाँ नहीं तो आपको पता ही नहीं चलता। और नॉर्मली कोई आके खुल के आपसे ये बोलेगा नहीं कि भाई साहब आपके मुंह से बदबू आ रही है, इजीली बोलेगा नहीं, अनलेस अनटिल आपका उस बंदे के साथ या बंदी के साथ उतना क्लोज रिलेशनशिप ना
1: कनेक्शन
0: हो,
1: हो जी।
0: ठीक है। फिर उसके बाद में आगे होता है कि कभी कभार ब्लीडिंग होना चालू होता है मसूड़ों में से,
1: हाँ जी।
0: ब्रश करते वक्त खून आ गया, फिर उसके बाद चालू होता है दांत हिलना। ये एक स्लो पॉइजन है बॉडी में, मतलब ये बहुत कॉमन है। अभी कल की बात है, मेरे एक दोस्त के पिताजी के 4 दांत गिर गए, बोले शुक्रवार को गिरे हैं, मुझे कल फोन आया तो मैंने पूछा कैसे गिरे, अपने आप गिर गए।
1: कितना नॉर्मल है ना।
0: कितना नॉर्मल है। आपको अभी जो आगे की चीज है कि पूरा डेंचर वगैरह, उसमें जब हम लोग जाएंगे तो मैं आपको समझा दूंगा कि कितनी महंगे दांत है
1: बिल्कुल।
0: जो हमें फ्री मिले हैं, इसके लिए हम लोग उसकी कदर नहीं कर रहे, ऐसा मुझे बहुत बार लगता है, जिसके लिए मुझे बुरा लगता है।
1: यस।
0: या फिर पूरे शरीर की ही कीमत आप लगा लो, रिपेयरिंग की कीमत लगा लो तो करोड़ों में जाती है, कई
1: बिल्कुल
0: 100 करोड़ों में जाती है,
1: यस
0: लेकिन हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि फ्री में मिला हुआ है,
1: बिल्कुल।
0: उल्टा उसको बर्बाद करने वाली चीजों पे हम लोग खर्चा करते हैं। फिर उसमें वो सुपारी आ गई, पान आ गया, अभी मुंह के बारे में बात कर रहे तो
1: वो सारी
0: एक वो
1: चीजें
0: सारी
1: भी,
0: चीजें आई,
1: तंबाकू,
0: तंबाकू,
1: स्मोकिंग।
0: स्मोकिंग, और बहुत यंग एज में बहुत गंदी हालत देखी हुई है मैंने
1: दांतों की
0: दांतों की, ओवरऑल मुंह की, मसूड़ों की, जबड़ों की। मतलब बहुत बार मैंने जो पेशेंट को लाइन बोली है मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, 25-30 साल की उम्र है लेकिन उनका दांत का कंडीशन होता है 60-65 साल की उम्र के बुढ़ों की तरह,
1: अरे अरे
0: तो उनको भी मैं ये समझा देता हूँ। और ये नॉर्मली हैबिट्स जब होती है तभी होता है,
1: बिल्कुल।
0: और जब ये पेशेंट मेरे पास ट्रीटमेंट मांगते हैं तो मैं उनसे एक ही चीज मांगता हूँ कि आप अपनी हैबिट बंद कर दो, मैं बाकी की सारी चीजें रिपेयर करने की जिम्मेदारी ले लेता हूँ। लेकिन अगर आप अपनी हैबिट चालू रखोगे तो कुछ भी आप कर लो, आप पूरा पैसा डाल के आप अपना भी वक्त खर्चा करोगे, मेरा भी करवाओगे, मेरी मेहनत भी लगवाओगे, लेकिन बाद में बर्बादी आप करोगे। तो इसके लिए जो फ्री मिला है उसकी थोड़ी वैल्यू कर लो,
1: बिल्कुल
0: ये
1: बिल्कुल।
0: सजेशन मैं यहां दूंगा।
1: इसी
0: हाँ
1: बात पर एक गाना सुनते हैं और उसके बाद वो डेंचर वाली बात करते हैं।
0: सही है, तो हम यहाँ पे सुनेंगे, यहाँ पे दांत बोलेंगे कि हम बेवफा हरगिज न थे
1: वाह, पर हम वफा करना सीखे क्योंकि आप
0: क्योंकि
1: हमारी केयर
0: आपने
1: करना सीखे।
0: एग्जैक्टली
1: क्या बात है, सुनते हैं।
2: हम

0: डॉक्टर साहब, बहुत एक्सट्रीम केसेस की अब हम बात करना चाहते हैं। जो आपने कहा कि इतने महंगे दांत हैं और फ्री में मिले हैं तो हम कदर नहीं करते, इसको जरा तफसील से बताइए कि कितने लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं अपने दांतों को वापस लाने के लिए, जब पूरा डेंचर बदलना पड़ता है।
1: हाँ जी, अभी जैसे हमने बात की कि एक दांत भी अगर आपका निकला है तो उसको इमिडिएटली रिप्लेस करवाना चाहिए, क्योंकि उसका फंक्शन रेस्टोर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
0: बिल्कुल
1: ठीक है, तो वैसे ही ऑप्शंस क्या क्या है उसके, पहले तो ये बताऊंगा मैं कि वहां पे मुंह में दो ही कड़क स्ट्रक्चर है जिनके ऊपर हम लोग सपोर्ट लेके परमानेंट वाला फिक्स दांत दे सकते हैं। एक तो खुद दांत अपने, या फिर हड्डी जिसमें दांत बैठे हुए, जबड़े की हड्डी। तो दांतों के ऊपर सपोर्ट लेके जो चीज की जाती है उसको बोलते हैं ब्रिज। जैसे बीच में एक दांत नहीं है तो आगे के एक दांत को छोटा किया जाता है, पीछे के एक दांत को छोटा किया जाता है, और तीन
0: लेवल में लाए जाते
1: हैं। एग्जैक्टली, और तीन कैप एक साथ बिठाए जाते हैं, जिस चीज को बोलते हैं ब्रिज, क्योंकि जो बीच वाला है वो ब्रिज है।
0: करेक्ट,
1: दो दांतों के सपोर्ट पे। ये हो गया एक ऑप्शन। अभी उसमें भी अलग अलग टाइप के कैप्स आते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपके दांत कैसे हैं, कौन से तरीके का कैप आपके केस में बेटर रहेगा, ये आपके डेंटिस्ट आपको अच्छे से सलाह दे सकते हैं।
0: इसमें दांतों का प्रेशर भी काम करता है।
1: एग्जैक्टली, आपका बाइट फोर्स कितना है,
0: जी जी,
1: आपके फूड हैबिट्स कैसे हैं, दांतों का अरेंजमेंट कैसा है।
0: यस,
1: क्योंकि जैसे लंबे स्पैन वाले ब्रिज होते हैं, तो अगर आपके अपोजिट साइड के दांत नीचे के जबड़े का कर रहे, तो ऊपर साइड के दांत अगर आपके आड़े टेढ़े हैं, तो ब्रिज के ऊपर सीधा फोर्स नहीं पड़ने वाला, आड़ा टेढ़ा फोर्स पड़ेगा। तो उसके लिए कौन सा मटेरियल ज्यादा सूटेबल रहेगा, वो डिपेंड करता है आपके अरेंजमेंट के ऊपर। क्योंकि वो फोर्स जहां पे पड़ेगा वहां पे अगर टूटते रहेगा तो क्या होता है ना, ये भी एक चीज है कि एक दो बार टूटता है तो पेशेंट खुद ही गिव अप कर देते हैं और नहीं करना है बोल के छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे उनको ये चीज समझनी जरूरी है कि हर बार महंगी चीज ही अच्छी होगी जरूरी नहीं है, और हर बार सस्ती चीज ही आपके केस में काम करेगी वो भी जरूरी नहीं है। तो केस टू केस डिपेंड करता है कि क्या आपके केस में सबसे बेस्ट होगा, वो आपके डेंटिस्ट आपको बेस्ट तरीका बता सकते हैं। अभी दूसरा तरीका जो है रिप्लेसमेंट का, उसको बोलते हैं डेंटल इम्प्लांट्स, जहां पे हड्डी में एक इम्प्लांट डाला जाता है। एक स्क्रू जैसी चीज होती है, एक्चुअली उसका डिजाइन स्क्रू जैसा होता है, एक्चुअल में स्क्रू नहीं होता। वो डिजाइन स्क्रू की तरह देने का कारण ये होता है कि उतना ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होता है हड्डी को उसके साथ पकड़ बनाने के लिए। तो इसके लिए वो इम्प्लांट जाता है हड्डी के अंदर, उसके ऊपर एक अटैचमेंट लगती है जिसको अबटमेंट बोलते हैं, और उसके ऊपर कैप लगाई जाती है। ये सबसे बेस्ट तरीका है आज की तारीख में दांत बिठाने का, क्योंकि इस तरीके में नेचुरली जैसे दांत फंक्शन करता है वैसे ही दांत हम लोग रिस्टोर कर रहे हैं। और अभी टेक्नोलॉजीज इतनी आ चुकी है, ये तो एक इम्प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो पूरे मुंह के इम्प्लांट्स 2 दिन में 3 दिन में हम लोग केसेस खत्म करते हैं। पूरे मुंह के दांत हम लोग इमीडिएट इम्प्लांट करके पेशेंट को 2 दिन में फाइनल दांत दे देते हैं।
0: बहुत जल्दी होने लगा ये,
1: बहुत जल्दी होने लगा है। हाँ, खर्चीली चीजें है। अभी इसका खर्चा अगर मैं बताऊं तो लाखों में जाता है
0: बाकायदा,
1: क्योंकि जो हड्डी में स्क्रू जा रहा है वो बना होता है टाइटेनियम से,
0: और वो महंगी चीज है।
1: टाइटेनियम सोने से भी ज्यादा महंगा आता है, तो वो महंगी चीज है। प्लस उसके टेक्निकल चीजों में अगर मैं जाऊं तो जो कंपनीज उसको बनाती है, तो उसके जो मशीन्स होते हैं, मतलब एक बार चालू कर दी मशीन तो बल्क प्रोडक्शन करेगी तभी वो रुका पाओगे आप, नहीं तो एक या दो सैंपल पीस बना के आप रोक नहीं सकते, वो हजारों में बनाने पड़ते हैं। ये कंपनी की मजबूरी है क्योंकि मशीन्स वैसे है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनको खर्चा ज्यादा करना पड़ता है उसके पीछे। ऑब्वियस सी बात है, वो बाहर भी अपना नफा जोड़ेंगे। तो अगर मैं आपको अंदाजा दूं तो कम से कम 20-25 हजार से लेके 70-80 हजार, 1 लाख रुपए तक का इम्प्लांट होता है एक दांत का।
0: एक दांत का,
1: तो अगर हम लोग पूरे मुंह की बात करें तो कम से कम 4-5 लाख रुपए से लेके 20-25 लाख तक आपका खर्चा जा सकता है, सारे दांत अगर आपको फिक्स में बिठाने हैं। ये हो गए फिक्स दांतों की बात। अभी आते निकालने पहनने वाले दांतों पे, डेंचर्स, या फिर हमने बहुत अपने दादा दादी को वगैरह देखा होगा पहनते हुए, निकालते हुए, वो निकाल के डब्बे में रखते हैं दांत, तो वो चीज आज की तारीख में ज्यादातर आउटडेटेड हो चुकी है। वो चीज वही पुरानी जनरेशन ही पहनना चाहती है जो पहले से पहन रहे हैं, लेकिन वो चीज का ड्रॉबैक बहुत सारा है। एक, जैसे हमने दांतों के ऊपर फोर्स की बात की थी, 120-130 न्यूटन सेंटीमीटर का प्रेशर रहता है, डेंचर में आपको प्रेशर रेस्टोर होता है 5-15 का।
0: बहुत कम है,
1: बहुत कम है। वही हम लोग इम्प्लांट के साथ रेस्टोर कर पाते हैं 110-115 तक।
0: इक्विवेलेंट है,
1: ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। तो इसके लिए डेंचर पे आप बहुत सारी चीजें नहीं खा पाते हो,
0: पर इम्प्लांट बहुत महंगा
1: होता है। इम्प्लांट बहुत महंगा होता है
0: जी,
1: डेंचर उसके मुकाबले काफी सस्ते होते हैं।
0: तो कुल मिलाकर डॉक्टर साहब, आज की इस पूरी बातचीत का जो सबक है वो ये है कि दांत बहुत बेशकीमती हैं, और जैसा कि आपने कहा कि चूंकि मुफ्त में मिले हैं तो लोग उनकी केयर, उनकी कदर नहीं करते।
1: Exactly.
0: तो रोजमर्रा की स्थिति में इन दांतों को बचाकर रखना जरूरी है। अब अगर मैं आपको कहूं लास्ट में एक वन लाइनर दे दीजिए अपने मरीजों को, सुनने वालों को, तो आप वो दांतों की केयर के लिए क्या वन लाइनर देंगे?
1: स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज क्यों? क्योंकि दांत अच्छे हैं तो आप खुल के स्माइल भी करोगे, और खुल के
0: बिल्कुल
1: स्माइल करोगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया,
1: थैंक यू सो मच सर।
2: ये थी जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश घुगे से यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
5: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओं, अभी तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ओम मिन आउं लाइन ने आज नई दिल्ली में ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के बारे में द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत के साथ बातचीत के लिए कल मुंबई भी जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। इस समझौता पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि इस समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल वस्त्र, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण, चमड़ा, ऑटोमोबाइल और समुद्री उत्पाद जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता मिलेगी।
1: I am confident that this comprehensive agreement...
2: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
1: Of our shared future.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पर श्री गोयल के एक लेख को साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये समझौता भारतीय निर्यातकों को बाजारों में विविधता लाने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। इस दौरान क्षेत्र में निर्बाध व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप समुद्र के अन्य वैध उपयोगों के लिए मजबूत समर्थन भी व्यक्त किया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियों पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रहा है।
3: डोमेस्टिक LPG घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं। उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के रामसिया गांव में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य कृषि भूमि की रक्षा करना और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। श्री चौहान ने कहा कि खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य मिट्टी और कृषि भूमि की रक्षा करना है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक महिला की उन्नाव स्थित जिला विधि सेवा प्राधिकरण के 2018 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके पति ने जिला विधि सेवा प्राधिकरण के समक्ष दर्ज समझौते को तलाक का निर्णय मानकर पुनर्विवाह किया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। कल तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में गरज और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।
5: बड़ी बहू ये तुम्हारे ना,
6: इतनी भी क्या जल्दी थी।
5: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना,
7: और ये मेरी गुड़िया के नाम।
8: पर दादी आपके नाम?
9: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
5: शुभ शुभ बोलो क्या
9: आरबीआई कहता है।
10: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित व रिले होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम रूपरेखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे भजन संध्या का कार्यक्रम। युव मंच कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5:30 पर। शाम 6:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। सफर सुहाने गाने नए पुराने लेकर हम हाजिर होंगे शाम 6:05 पर। कार्यक्रम खेती बाड़ी का समय रहेगा शाम 6:30 पर। 7:00 आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 7:05 पर सुनिएगा देशगान। 7:10 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से विशेष कार्यक्रम भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विषय गरीब कल्याण। 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या और रात्रि 9:00 आप सुनेंगे न्यूज एट 9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। रात्रि 10:00 सुनिएगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। रोमांटिक फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें लेकर हम हाजिर होंगे रात्रि 10:30 पर। 11:00 आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं ये थी जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित व रिले होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र FM 101.8 MHz पर शाम के 5:08 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए भजन संध्या। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं करनैल राणा और साथियों के गाए इस लोक भजन के साथ।

भजन संध्या कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति जोगिंदर बल्ला और साथियों की आवाजों में।

भजन संध्या कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति शेर सिंह और साथियों की आवाजों में।

संजीव दीक्षित और साथियों के गाए इसी लोक भजन के साथ आज का भजन संध्या का कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम युवमंच।

युवा दोस्तों जय हिंद। कार्यक्रम युवा मंच सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं उनके अपने खास कार्यक्रम युवा मंच में। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अनूप। युवा दोस्तों का अपना कार्यक्रम युवा मंच और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक लेकर आते हैं जानकारियां, मनोरंजन और भी बहुत कुछ खास रहता है। तो बिल्कुल युवा दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लेकर आए हैं जानकारी। जी हाँ, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न भरने की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन ठहरिए, नए आयकर रिटर्न कानून के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए इस बार जो है वो थोड़े बदलाव किए गए हैं, जिनके बारे में आज हम आपको जानकारियां देंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, साल भर देखिए वक्त रहता है कि हम जो हैं वो अपनी जेब, बैंक स्टेटमेंट और कमाई का पूरा हिसाब किताब एक जगह समेट कर हमें बैठना होता है और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न भरने का जो बिगुल है वो बज चुका है। लेकिन इस बार जो है वो टैक्स फाइलिंग कोई रूटीनी कागजी कार्रवाई नहीं, एक नए आयकर कानून के पूरी तरह से जमीन पर उतारने के साथ ही इस बार जो रिटर्न फॉर्म्स हैं उनके भीतर भी बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। क्या बदलाव हैं वो आपको बताने वाले हैं। और अगर आप भी अपनी जो गाड़ी कमाई है और उस पर सही तरीके से आप झंझट नहीं चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म भरने पड़ेंगे। और इस बार जो है वो फॉर्म्स का भरने का तरीका जो है वो बदल गया है। तो दोस्तों, ITR फॉर्म नंबर 1 का दायरा बढ़ा है। पहले यदि आपके पास एक से अधिक मकान से किराए की आय होती थी तो आप सीधे बड़े फॉर्म के चक्कर में फंस जाते थे। अब सरकार ने ITR 1 और ITR 4 दोनों का दायरा बढ़ा दिया है। अब दो मकानों से आय रखने वाले करदाता भी इस सरल फॉर्म के जरिए अपना टैक्स भर सकते हैं। जो किराया नहीं मिला उसका नया कॉलम है और यह वह किराया है जो मकान मालिक को मिलना था पर किराएदार ने नहीं दिया। तो आप जो हैं वो ITR 1 और ITR 4 यानी 4 दोनों में एक नया स्पेशल कॉलम जोड़ा गया है ताकि आपको ना मिले हुए पैसे पर टैक्स ना देना पड़े। इसके साथ ही ITR 4 यानी ITR 4 की बात करें तो बैंक बैलेंस बताना ज़रूरी। छोटे व्यापारी हो या फिर कंसल्टेंट हो, इनके लिए भी ये फॉर्म भरा जाना वाला है। और ITR 4 जो है वो सुगम इस बार काफ़ी सख्त और विस्तृत हो गया है। वित्तीय विवरणों के कॉलम में अब तक जो बैंक खाते का बैलेंस बताना वैकल्पिक था, इस बार इसे अनिवार्य कर दिया है। और इसके साथ ही संपत्तियों वाले हिस्से में भी आपके निवेश को पूछने के लिए एक नया फील्ड जोड़ा गया है। तो बिल्कुल जी, ये कुछ जो हैं वो कुछ नए, आप कह लीजिए बदलाव हैं, नए नियम हैं, कुछ नए रूल्स हैं, इनके ज़रिए जो है वो आपको कार्य करना होगा। और अब तक जो लोग आधार कार्ड ना होने पर आधार नामांकन ID का इस्तेमाल कर लेते थे उनके लिए रास्ते बंद हो चुके हैं। अब सिर्फ वास्तविक आधार नंबर ही स्वीकार किया जाएगा। और इस फॉर्म में अब जो है वो आप धारा 112A के तहत 1.25 लाख रुपए तक के शेयर और म्यूचुअल फंड के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेम्स को घोषित कर सकते हैं, बेशर्ते आपका कोई पुराना कैपिटल लॉन्ग आगे कैरी फॉरवर्ड ना हो रहा हो। तो दोस्तों, जानकारियों का ये सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक संगीत में विराम के लिए। आप सुनते रहिए कार्यक्रम युवमंच।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: है द टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है, FM 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवमंच। कार्यक्रम युवमंच में आज हम बात कर रहे हैं आयकर रिटर्न फॉर्म के बारे में। तो बिल्कुल दोस्तों, बहुत सारी जानकारियां हमने आपको बता दी, किस तरह से जो है वो ITR फॉर्म नंबर 1 का दायरा बढ़ा है और इसके अंतर्गत आप क्या कुछ कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको बता देते हैं कि पुरानी टैक्स व्यवस्था को हतोत्साहित करने का, आप ये देखिए कि एक तरीका था वो पुराना और उसको जो है वो बदल दिया गया है। और आपको बता देते हैं कि अगर आप अब भी पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत जो है वो डिडक्शन या क्लेम करके टैक्स बचाना चाहते हैं तो विभाग ने आपके लिए नियम और कड़े कर दिए हैं। अब जो है वो बिल्कुल आप नहीं बच पाएंगे किसी तरह के डिडक्शन से, क्लेम से। और ई फाइलिंग पोर्टल पर धारा 80C और 80U तक की कटौतियों को आप सीधे हाथ से टाइप नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए आपको जो है वो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया गया है जहां से आपको स्टी क्लॉज और उपधारा को चुनना होगा। धारा 89A के तहत विदेशी रिटायरमेंट खातों पर मिलने वाले दोहरे कराधान की राहत को अब ITR 1 और ITR 4 से पूरी तरह से हटा दिया गया है। इस राहत का दावा ITR 2 और ITR 3 के जरिए संभव होगा। अगर आप वेतन भोगी हैं तो शुरुआती यूटिलिटी देखकर तुरंत रिटर्न भरने की गलती ना करें। 15 जून तक इंतजार करिएगा। नियोक्ता द्वारा काटा गया TDS और आपके वित्तीय लेन देन के सारे आंकड़े फॉर्म 26AS और AIS में पूरी तरह से अपडेट होने में 15 जून तक का समय लगता है। अगर आपने AIS और 26AS को पूरी तरह से देखिए जो है वो पहले रिटर्न दाखिल कर दिया है तो कोई ना कोई आय छूट जाएगी, बाद में संशोधन रिटर्न भरने की लंबी कसरत करनी पड़ेगी। इसलिए सही डाटा के साथ रिटर्न भरिएगा। जानकारियों का ये सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे। एक बार फिर रुक रहे हैं एक संगीत में विराम के लिए।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र FM 101.8 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवा मंच। जी दोस्तों, आयकर रिटर्न फॉर्म के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। और ITR दाखिल करने से पहले आपको चेक लिस्ट रखनी है, क्या क्या चेक लिस्ट रखनी है उसके बारे में आपको बता देते हैं। AIS फॉर्म, 26 AS फॉर्म और 16 और बैंक स्टेटमेंट को आपस में मिलान कीजिएगा। सभी TDS जो हैं वो आपके क्रेडिट को ध्यान से सत्यापित होने चाहिए, वो आपको करने पड़ेंगे। ब्रोकर की रिपोर्ट के साथ पूंजीगत लाभ का मिलान भी कीजिएगा। पिछले वर्षों के कैरी फॉरवर्ड लॉसेस की आपको जांच करनी होगी। इसके साथ ही चैप्टर 4A के तहत दावा की गई कटौतियों की समीक्षा भी करनी होगी। कर मुक्त आय के खुलासों को सत्यापित करना होगा। जहां लागू हो वहां विदेशी संपत्ति के खुलासे पूरे होने सुनिश्चित कीजिएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको करनी हैं। और जैसा कि हमने आपको बता दिया, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म भरने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आपको जितनी हमने जानकारी दी है उसके अनुरूप और भी आप जो है वो अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे माध्यम हैं आजकल जानकारी प्राप्त करने से और करने की, और रेडियो भी एक माध्यम है जहाँ से हम लोग आपके लिए नई नई जानकारियाँ लेकर आते हैं अलग अलग प्रोग्राम्स के जरिए। और हमने आपको बता दिया कि इस तरह से आपको जो है वो अपना रिटर्न फॉर्म भरना है और किस तरह से क्या क्या चीज़ें जो हैं उनमें बदलाव आया है उनके बारे में भी आपको हमने बता दिया है। अब दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता देते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं कि किसके लिए कौन सा फॉर्म भरा जाएगा। तो आयकर विभाग का सिस्टम पूरी तरह डाटा संचालित है, यानी आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको जो है वो स्क्रूटनी के जाल में फंसा सकती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ITR एक सहज जो है वो किसके लिए है। ये फॉर्म जो है वो 50 लाख तक की आय वाले निवासी जिनकी कमाई सैलरी, दो घर, अन्य स्रोतों, 5,000 तक कृषि आय और 1.25 लाख तक LTCG से हो, तो इनको जो है वो ITR एक सहज फॉर्म भरना है। ITR दो की बात करें तो बिना बिजनेस आय वाले व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं। ITR तीन जो है वो बिजनेस या पेशे से आय वाले व्यक्ति और HUF ये जो लोग हैं ये ITR तीन भर सकते हैं। ITR चार सुगम, जी हाँ, ये फॉर्म जो है वो अनुमानित आय योजना और इसके साथ चुनने वाले छोटे व्यवसायों वाले पेशेवर और पार्टनरशिप फर्मों के लिए जो फॉर्म है वो मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। ITR 5 फॉर्म के लिए

0: एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई ट्रस्ट और सहकारी समितियों के लिए जरूरी है। आईटीआर 6 की बात करें तो सभी प्रकार की कंपनियों के लिए ये फॉर्म जरूरी है। और आईटीआर 7, जी हाँ, आईटीआर 7 जो है वो चैरिटेबल, धार्मिक ट्रस्टों, सेक्शन 8 कंपनियों, राजनीतिक दलों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए ये फॉर्म भरना जरूरी है। तो बिल्कुल दोस्तों, ये आज हमने आपको जानकारी दे दी कि किस तरह से जो है वो आयकर रिटर्न फॉर्म आपने भरना है और क्या इसमें बदलाव आ चुका है। अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं कि देखिए, एटीएम से आपने कैश निकाला लेकिन आपके पैसे कट गए और कैश नहीं मिला, और उधर आपकी जो स्टेटमेंट है वो बैंक की आगे की, आपने जो है वो कैश निकाल लिया है, तो इस वक्त आपको क्या करना चाहिए वो आपको बता देते हैं कि देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एटीएम से जो निकली पर्ची है, मोबाइल मैसेज है और लेन देन की जो संख्या है उसे सुरक्षित कर लीजिएगा। ज़्यादातर मामलों में 5 कार्य दिवस के भीतर रिफंड आ जाता है और तय सीमा पर ऐसा ना आने पर आपको बैंक के कस्टमर केयर से बात करें और वहां पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। फोन पर समाधान ना हो तो होम ब्रांच में जाकर आप लिखित शिकायत दे सकते हैं। बैंक स्तर पर सुनवाई ना होने के मामले में बैंक के मुख्य शिकायत अधिकारी या रिजर्व बैंक के लोकपाल के पास आप जो है वो शिकायत कर सकते हैं। और अगर फिर भी बात ना बने तो आपको क्या करना है वो आपको बता देते हैं। देखिए, यदि बैंक की लापरवाही जारी रहती है, अगर बैंक की तरफ से लापरवाही है, तो आप राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यानी आप कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हैं, कंज्यूमर फॉर्म में आप जा सकते हैं, वहां पर अपनी शिकायत जो है वो आप दर्ज करवा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको चलते चलते दे देते हैं। अब जो है वो व्हाट्सएप पर मिलेंगे पीएफ के सारे अपडेट। जी हाँ, ईपीएफओ जल्द ही अपनी आधिकारिक सेवाएं व्हाट्सएप पर लॉन्च करने वाला है और सदस्यों को इसके वेरिफिकेशन नंबर पर हेलो लिखकर भेजना होगा और सेवाएं शुरू हो जाएंगी। पीएफ से जुड़े हुए सभी अपडेट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिलेंगे और जो है वो पूरी बातचीत स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध रहेगी। तो दोस्तों, ये थी आज के यू मंच की आपके लिए कुछ जानकारियां और कार्यक्रम का समय हो रहा है यहीं पर पूरा। तो दीजिए अनुमति अपने रेडियो दोस्त अनूप को। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम यो मंच, आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र एफएम 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने को है। अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी,
1: फीस तो देखो।
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: हाँ, फीस की टेंशन।
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही।
4: रास्ता क्लियर, बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
3: वो कहाँ है?
4: मिठाई।
5: आरबीआई कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती घटनाओं और इनसे उत्पन्न गंभीर खतरों के दृष्टिगत राज्य सरकार सक्षम व प्रतिरोधी अधोसंरचना के निर्माण की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस क्रम में सरकार ने 2688 करोड़ रुपए की हिमाचल प्रदेश रेजिलिएंट एक्शन फॉर डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रिकवरी एचपी रेडी परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य आपदा प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजना इस वर्ष जनवरी से नवंबर 2030 तक चलेगी। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्पन्न परिस्थितियों से पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश सर्वाधिक प्रभावित है और प्रदेश प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। पिछले 3 वर्षों में आई प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने राहत केंद्रित शासन से प्रतिरोधी केंद्रित प्रशासन की ओर बढ़ने पर भी बल दिया। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने आज लोकभवन शिमला से ऑल इंडिया एनसीसी माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन दल को कुल्लू की माउंट देव टिब्बा के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देश भर से चुने गए 24 एनसीसी कैडेट्स का ये दल 6001 मीटर ऊंची चोटी फतह करने के लिए पीर पंजाल रेंज जाएगा। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि ऐसे अभियान युवाओं में साहस, अनुशासन और राष्ट्रप्रेम की भावना मजबूत करते हैं। कविंद्र गुप्ता ने सभी कैडेट्स को सुरक्षित और सफल आरोहण की शुभकामनाएं भी दी।
5: मुझे पूरा विश्वास है कि ये कैडेट जब इस सारे ट्रेनिंग से गुजरेंगे तो आने वाले समय में ये समाज के लिए, हमारे देश के लिए एक एसेट बने, तो मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। इनकी जो मेहनत, इनकी जो लगन, जो इनकी तपस्या रहेगी, जो देशभक्ति की भावना, वो अपने आप में एक जो विकसित भारत 2047 का हमारा सपना है उसको भी आगे बढ़ाएगी।
7: लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ेगी और सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश के 4 में से 3 नगर निगमों में भाजपा की जीत को लेकर उन्होंने माना कि इन चुनावों में कांग्रेस को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन इसके कारणों पर पार्टी स्तर पर चर्चा और समीक्षा की जाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पालमपुर क्षेत्र में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कई क्षेत्रों में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को जनता का समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं,
8: चुनाव खास करके लोकल फैक्टर्स के ऊपर लड़े जाते हैं। मैं तो यही कह सकता हूँ कि मैं जो जनादेश मिला है वो वहाँ के लोगों को मिला है, स्थानीय निकाय के लोगों को मिला है, स्थानीय प्रधानों को मिला है, उप प्रधानों को मिला है, बीडीसी मेंबर्स को मिला है, जिला परिषद मेंबर्स को मिला है। उस पर हम मिलकर आने वाले समय में कार्य करेंगे और हर जगहों पर जहाँ पे समितियां बननी है, जहाँ पे जिला परिषद बनना है, उस पर पूरा प्रयास भी किया जाएगा कमेटीज बनाने का, और मिलकर हम फिर आगे कार्य आने वाले समय में करेंगे।
7: प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व विधायक राकेश जम्वाल ने कहा है कि स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव परिणामों ने कांग्रेस सरकार की वास्तविक स्थिति उजागर कर दी है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अब बौखलाहट में जनता को गुमराह करने के लिए निराधार बयानबाजी कर रहे हैं। राकेश जम्वाल ने कहा कि जनता का विश्वास भाजपा के साथ लगातार बढ़ रहा है और 3 नगर निगमों में जनता ने कांग्रेस का राजनीतिक बहिष्कार किया है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव हिमाचल की सत्ता का सेमीफाइनल था, जिसे भाजपा ने निर्णायक रूप से जीत लिया है और 2027 के विधानसभा चुनाव में भी जनता भाजपा को अपना पूर्ण समर्थन देगी। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा है कि शहरी निकाय व पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में कांग्रेस ने व्यापक जन समर्थन प्राप्त कर अपनी मजबूत राजनीतिक स्थिति को पुनः प्रमाणित किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 54 शहरी निकायों में से 32 में कांग्रेस समर्थित प्रतिनिधियों की जीत हुई है, जिससे स्पष्ट है कि जनता कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों, पारदर्शी प्रशासन और विकासात्मक दृष्टिकोण पर पूर्ण विश्वास व्यक्त कर रही है। विनय कुमार ने कहा कि नगर निगम चुनाव परिणामों को लेकर कांग्रेस संगठन द्वारा विश्लेषण किया जाएगा, ताकि भविष्य में संगठनात्मक स्तर पर और अधिक मजबूती लाई जा सके। केंद्र सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू रूप आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
0: आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सफर सुहाने, गाने नए पुराने। नए पुराने गीतों का ये सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपका रेडियो हम सफर अनूप। कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम का नाम है सफर सुहाने, गाने नए पुराने। के बदल जाया करते हैं वो अक्सर वक्त के साथ, बदल जाया करते हैं वो अक्सर वक्त के साथ, जो अपने वक्त को बदलने का हुनर नहीं जानते।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
4: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र FM 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रहे कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने। के बदला नहीं लूंगा बस बदल जाऊंगा मैं, किसी को गिराऊंगा नहीं बस खुद संभल जाऊंगा मैं।

श्रोतो, इसी के साथ आज का सफर सुहाने गाने नए पुराने कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र एफएम 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम खेती बाड़ी।

किसान भाइयों के पसंदीदा कार्यक्रम खेतीबाड़ी की शुरुआत हुई गई। कहने आज के इस कार्यक्रम में किसान भाइयों सोगी ढेर सारिया गल्लां बातां जानकारियां साझा करने दे ताए आशा कने रमा भी बिल्कुल

0: पशुआं जो जी आसे साफ सुथरा स्वच्छ जल जी आसे तिना जो पियाना ही है, क्योंकि अहां दे कई एड़े आवारा पशु या फिर आवारा जानवर होंगे पक्षी होंगे हैं सह एकदम जे आसे अहां दे पशुओं दियाँ बाल्टियां ते पानी पी लेंदे या फिर यहाँ बाल्टियां खुलियां रखी हों तिथे ते पानी जे आसे पींदे रहेंदे हैं, तो तिना जो कई तरह के संक्रमण जे आसे हो सकते हैं सह संक्रमण जे आसे अहां दे माला पशु जो भी हो सकते। तो हाँ पशुओं दी ऐसे जो बाल्टियां हैं तिना जो टक्की करने रखना ये आ कने अगर जरूरी है या तो तिना जो छाया जी ऐसे हाँ जरूर रखना ये आ।
1: जी कने पौष्टिक चारा जे है पशुओं जो देना भी है या आजकल आहे दिख दे कि जेड़ा हरा चारा है ना तिस दी उपलब्धता जे इसे थोड़ी घटी आंदी भी है, तो इन्हें दिन च जे है पशुओं जे जेड़ा पाड़ा है ना से आहां ज्यादा बधाई देना भी है ताकि पशुओं जो पोषक तत्व जे ऐसे भरपूर मिलते रहे ना आहां दे पशुओं जे जेड़ा दुग्ध उत्पादन आ से सही बनी रह रहे वो भी है, क्योंकि जान लीजिए पशुओं जो हरा चारा या पौष्टिक तत्व नहीं मिली पाते हैं तो दुग्ध उत्पादन भी पशुओं का घटी आंदा भी है या इस दे ताए जी ऐसे जेड़ा दाना मिश्रण है या फिरी पशुओं जो खनिज लवण है इसे टाइमा टाइमा च अहाँ देंदे रहना। कने एक ही गल्ला दा हाँ होर ध्यान रखना कि जेड़ा दाना मिश्रण पशुओं जो दिंदे ना से इस तरीके रहना चाहिए जिस दी जे तासीर जे इसे थोड़ी ठंडी हो जी आहे जो कणक इन्हां दी मात्रा जे इसे पशुओं दे चारे च ज्यादा बधाई सकते भी है ताकि पशुओं दा शरीर भी ठीक रहो कने तिन्हां ते उत्पादन भी आ जो ठीक मिलता रहो।
0: बिल्कुल ठीक ला दे अंत दिखा पई कार्यक्रम च गल्ला बातें जे अनसह तुहां सोगी हां होर साझा करनी है न, क्योंकि अज जे ऐसे हां तुहां सोगी जानकारी साझा करनी है कमर तोड़ रोग ते बचाव ताई क्यारियां जो फार्मलिन ते शोधित जैसे किन्ना करना ही है, तो इस विषय ऊपर जैसे गलबात करनी है हाँ इस प्यारे जे लोकगीत ते बाद।
1: जी

0: जो हां मिलाना भी आया कने प्रति हेक्टर रे साबा ने कने जे ऐसे बिजाई ते पहले खेतरा चा हां पाई देना भी आया।
1: बिल्कुल
0: इसते अलावा जे असे अरबी च झुलसा रोग नियंत्रण ताई जे असे यहां मेटलाक्सिल कने मैनकोजेब 0.1% दा छिड़काव कर सकदे हन। कने अपने पशु पालक भाई बहना जो भी आहे एही गलाना चांदे कि मौसम दे साबे जे असे यहां पशुआं दी रेख देख करनी भी आई कने अगर आहां जो लगो कि आहां दे पशुआं जो जे असे किसी तरह दी कोई समस्या आना लग रही भी आई तो भई जेड़े आहां दे नजदीकी पशु चिकित्सक हुंदे भी आए तिन्हां ने कने आहां सलाह ले लेनी भी आई कने पशुआं दा टीकाकरण जे असे टाइमा टाइमा च करी लेना भी आया ताकि जेड़े भी ए संक्रमण दी बीमारियां लगने दा डर रहंदा भी है ऐसे पशुआं जो नी रहो भी आया तो इस तरीके ने कने जाली जाए अपने खेती बाड़ी दे कम्मा कारा जो दिखते अपने पशु पालन दे कम्मा कारा जो दिखते भी आए ना तो फिर यहाँ जो आमदनी भी बनी रही रहती भी आई कने यहाँ दे काम कार भी रूटीन जे ऐसे चली रहे रहते भी आए।
1: बिल्कुल दिखा पे एक काम कार ताई सही तरीके कने चले दे आने अगर अगर हाँ दी सेहत बिल्कुल ठीक है तो गर्मियों के दिनों जे ऐसे यहाँ अपनी सेहत का भी खूब ख्याल जैसे रखना ही है ज्यादा धुप्पियों बिच जैसे कोई भी काम कार जैसे यहाँ नहीं करना ही है सलेला सलेला पर जे ऐसे सारे काम निपटाए लेने हैं बाहर ले कने दिने जे ऐसे तालू धुप्पा पे जाता ही है तो ताली अहां अपने अंदर ले सजे वहां दे रसोई दे या फिर यहां दे घर दे बाकी काम हुंदे हैं तिना जो जे ऐसे निपटाए सकदे हैं
0: जी। इस होगी जे ऐसे अपने खान पान का भी यहाँ खास ख्याल रखना जी। यहाँ बोलिया ना कि आजकल गर्मिया के दिन ने तो गर्मिया चाहे दिखते भी एकदम से कोई भी चीज जे इसे खराब हो जाती भी है तहां जो ताजा ही खाना जे ऐसे बनाना चाहिए भी है या कने सब्जियां भी बनाने ते पहले जे इसे अच्छे तरीके ने करने यहाँ धोनी भी है साफ सफाई है तहां खास ख्याल रखना भी है या इन गल्लां दा ध्यान रखते हुए जाली जाए कामकार करदे तहां दी सेहत भी बनी रही रहती कने फिर जेड़े अहां दे कामकार है जिन्हां ने करने चाहे जुड़ी रहे सह भी अहां दे चली रहंदे भी है।
1: बिल्कुल जी तो दिखा पे यही गल्लां बातां जी इनसे कार्यक्रम च तो होर भी जरूर करनी है पर इससे पहले जैसे सुन लेना एक होर बांका जिहा
0: लोक गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी पर महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि साझा बौद्ध विरासत और सदियों पुराने जन संबंध भारत म्यांमा संबंधों को अनूठी पहचान प्रदान करते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि इस समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। एलपीजी आपूर्ति के संबंध में उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई, वहीं 1,22,00,000 से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्री परिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। शपथ लेने वाले सदस्यों में स्वपन दासगुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शंकर घोष और अन्य शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। प्रधानमंत्री ने हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 19 पदक जीतने पर बधाई दी है। इस प्रतियोगिता में भारत दूसरे स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है FM 101.8 MHz पर।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र FM 101.8 MHz पर। लीजिए अब सुनिए देशगान।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।
0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:10 होने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम। विषय है गरीब कल्याण।

0: महिलाओं के लिए अगर हम बात करें?
1: द इफेक्ट दैट इज हैपनिंग इज यू नो अगेन समथिंग विच इज समथिंग विच वी डिडंट एक्सपेक्ट अर्लियर. सो द वे टू पुट इट इन इज दैट दिस इज समथिंग, दिस वॉज समथिंग दैट वॉज एक्सपेक्टेड अगेन टू हैपन एट अ लेटर लेवल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी. दैट has begun to happen now. Why? Because Mudra Yojana essentially says that somebody who is able to take a loan for self, for entrepreneurship, should have the financial literacy to be able to carry that sort of a enterprise. Now, typically, somebody who's poor and who's doing an enterprise because she or he has been forced to do it is different from somebody who's doing a financial enterprise out of share, out of because he wants or she wants to do it. There's a difference. That difference, Posh, because of the fact that a ecosystem of support, partially again through the JAM Trinity, has come in where people are confident that they can run a financial enterprise seamlessly. You know, because otherwise, what has been happening is that there are several amounts, several types of interventions to create entrepreneurship which had been tried, which had not worked, primarily because people lack the confidence that whether the back end of an enterprise will be something that they can sustain. It's actually a very big thing, because unlike a salaried person who gets some money at the end of the month, does the work and is all assured and comfortable that you'll get a salary, and so that's about it. Here, a person is daily selling his ware, services, manufactured products, whatever it is, and earning income and keeping a track of it, and then also being able to sustain it and being able to pay, repay loans. And then, because the Mudra loan, as you can see, is of three stages: the Shishu, then Kishore, and then Tarun. So there are three stages in which, so you graduate from one to another. To be able to do that sort of a thing, you need a considerable amount of financial, what I should say, architecture in place. And that is a very interesting innovation that has been created. Obviously, compared to, say, Ujwala or Sakshat Mission or missions like the Swachh Bharat Mission, this is relatively more recent. So it'll start showing its effect later. But already you can see from the PLFS survey, the Periodic Labor Force survey, that about 50% of Indians are now reporting self-employment. And that self-employment is not distress employment. It is employment, self-employment that is being made possible for a large number percentage of them, because they are confident that they can take on these enterprises and can take on capacity building, capacity, I mean, expansion of their products and services, which wasn't possible earlier. How it will pan out is a very big thing. Remember, we are talking about a population base, which is the largest population base in the world. To be able to create self-employment in that sort of a large population, with being able to support themselves, being able to support their families, being able to carry on the business for long length of time, not being drawn into the race for getting a job. Here, there we are talking of plenty of changes, which is not very easy to think of as just, you know, suddenly that we've done it and it's one-time support. It's not a one-time support. It's something which is actually a result of series of interventions, which brings a scheme like Mudra into being a success that it is being envisaged.
0: राइट राइट शुभ मैं देती अभी शुभ मैंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात की. स्टैंड अप इंडिया स्कीम भी एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत 15,000+ करोड़ लोन अभी तक डिसबर्स किए जा चुके हैं. इस बारे में भी थोड़ा हमें बताएं. और पीएम स्वनिधि योजना जो कि एक एक बहुत ही जिसे कह सकते हैं एक फ्लैगशिप स्कीम जिसे कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को ये लाभान्वित कर रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे?
2: देखिए, ये जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है ये एक बहुत कॉन्सिक्वेंशियल रिफॉर्म है. वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे याद है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ साथ ही इसका आरंभ किया गया था COVID-19 के दौरान. जून 2020 में ये शुरू की गई थी. उस वक्त मंशा ये थी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो बहुत बुरी तरीके से हिट हुए थे, जिनकी वजह से हम और आप कोविड से लड़ पाए थे, क्योंकि वो सब्जी बेच रहे थे, वो वेयर्स बेच रहे थे, तो हम उसको खरीद रहे थे.
0: इवन अगर गिग वर्कर्स की बात करें,
2: बिल्कुल गिग वर्कर्स की भी स्वनिधि में वो भी काफी हद तक कवर होते हैं. तो उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी कि बेसिकली आइडिया था कि वर्किंग कैपिटल जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको दी जा सके, ताकि वो ऐसा ना हो कि COVID-19 की वजह से बिल्कुल ही त्रस्त हो जाएं. तो तब से इतनी इंपॉर्टेंट बन गई स्कीम. और इसका लाभ इतना दिखाई देने लगा फाइनेंशियल सिस्टम में कि स्ट्रीट वेंडर्स को डिग्निटी मिली, फाइनेंशियल इंक्लूजन मिला. सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वर्किंग कैपिटल हाथ में है तो आप 10 तरीके की चीज़ें कर सकते हैं. तो अब क्या किया गया है, हाल ही में 2025 में यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को रिस्ट्रक्चर भी किया है और लोन देने की जो अवधि है वो 2030 तक बढ़ा दी गई है. और ना सिर्फ ये किया गया है, 3 लेवल्स पर लोन दिया जा रहा है स्वनिधि में स्ट्रीट वेंडर्स को. पहले लेवल पर आप ये 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है, वैसे ही दूसरे लेवल पे 20,000 से 25,000 कर दिया गया है और फाइनल लेवल जो है वो 50,000 है. और इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है उन लोगों को जो टाइमली रीपेमेंट कर रहे हैं. प्लस एक बहुत महत्वपूर्ण जो इस स्कीम का बिंदु है वो ये है कि अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर पा रहे हैं तो उस स्थिति में आपको कैशबैक इंसेंटिव भी दे रही है ये स्कीम. तो अभी तक अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि करीब 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स पूरे देश में हैं जो इसमें लाभान्वित हो चुके हैं और करीब 17,000 करोड़ तक का जो लोन है वो दिया जा चुका है. 122 लाख लोन्स दिए जा चुके हैं करीब 17,000 करोड़ के.
0: राइट अदिति, लेट्स टॉक द वुमेन फोक लखपति दीदी अभियान. ये लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं बन चुकी हैं लखपति दीदी और 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी है, कुछ बताएं इसके बारे में.
2: जी, ये एक बहुत बड़ी मुहिम है सरकार की. और किसान सम्मान निधि की जो बात हुई उसमें बस छोटी सी एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि जब ये अमाउंट तय हो रहा था तब एक स्टडी करवाई गई थी कि फार्मर्स का कॉस्ट इनपुट क्या है, उनकी कॉस्ट कवर करने का ये कवायद है.
0: जी,
2: जो 6,000 की रकम तय की गई है, ऐसा पाया गया कि अगर ये दे दी जाए तो एटलीस्ट उनका जो इनपुट है वो कवर हो जाएगा. इस वजह से ये 6,000 पे तय हुई थी. पर अब जो महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, महिलाओं को क्या किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बहुत सारे वक्तव्यों में ये कहा है कि विकसित भारत के 4 स्तंभ होंगे, जिसमें से पहले हम चर्चा कर चुके हैं गरीबों की, उसके बाद हम चर्चा कर चुके किसानों की, तीसरा यूथ, आपने स्टैंड अप इंडिया की बात की, और अब चौथी आप बात कर रहे हैं महिलाओं की. ये 4 स्तंभ हैं. जब तक आप इनको फाइनेंशियली एम्पावर नहीं करते तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि आप विकसित भारत के गोल को अचीव कर पाएं. जिसकी वजह से ये हुआ है कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की मूवमेंट इस देश में चल रही है. करीब 80 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस वक्त कार्यरत हैं. उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिलाएं जो भाग ले रही हैं, लखपति दीदी योजना उसके तहत ये कोशिश कर रही है कि हर महिला 1 साल में 1 लाख रुपए अपने बलबूते पर कमा सके. उसमें तरीके तरीके के प्रावधान किए गए हैं, जैसे द्रोन दीदी का प्रोग्राम भी उसके साथ इंटीग्रेट किया गया है. कुछ महिलाएं द्रोन दीदी प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग लेकर खेतों में ड्रोन के माध्यम से मतलब पेस्टिसाइड्स छिड़काव कर रही हैं या और बहुत चीज़ें कर रही हैं. सिमिलरली कुछ लोगों को आप हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व कर रहे हैं. इस तरीके से डाइवर्सिफाई किया जा रहा है. फिशरीज़ में भी इन्वॉल्व कर रहे हैं महिलाओं को. उनका फाइनेंशियल जो इक्वेशन है, फाइनेंशियल जो एम्पावरमेंट है, उसको बढ़ाने की कवायद है. और एक चीज़ की वर्ल्ड बैंक की अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी जिसको हम जिनी इंडेक्स के नाम से जानते हैं. वो देशों को मापती है इस माध्यम से कि कितनी इक्वल सोसाइटीज़ हैं और जो फ्रूट्स ऑफ पावर हैं वो कितनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं लोगों में. ये जितना कम होता है इसका वैल्यू, उतना एक सोसाइटी को इक्वल माना जाता है. तो वहाँ मैं पढ़ रही थी कि भारत का जो वैल्यू है जिनी इंडेक्स में वर्ल्ड बैंक की, वो 25.5 है और चाइना का 35.7 है और US का 41.8 है. कहने का मतलब है कि ये जो सरकार ने एक लैंडस्केप तैयार किया है वेलफेयरिज्म का, इससे ये प्रूव हो रहा है. और ये थर्ड पार्टी ऑडिट है, दुनिया की बहुत बड़ी एजेंसी है वर्ल्ड बैंक, ये हम और आप नहीं कह रहे हैं या सरकारें नहीं कह रही हैं यहाँ बैठकर, ये एक थर्ड पार्टी ऑडिट एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी कह रही है कि भारत में अब धीरे धीरे वेलफेयर बेनिफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने लगे हैं. और जैसा आपने अपने वक्तव्य में कुछ देर पहले कहा कि एक्सट्रीम पावर्टी जिसका मेजर क्या है, उसका मेजर है कि $3 से कम पर प्रतिदिन कितने लोग इस देश में रहते हैं. उसकी जो संख्या है वो 16.2% 2011-12 में थी और अब घट के 5.3% रह गई है. तो धीरे धीरे एविडेंस क्रिएट हो रही है. इसी वजह से बहुत सारी एजेंसीज जो सरकारी ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल एजेंसीज भी अपने एविडेंस बेस्ड पेपर्स में ये कह रही है कि भारत अब उस तरफ बढ़ रहा है जहां उसको विकसित भारत बनने के लिए जो मैकेनिज्म्स चाहिए थे वो इन प्लेस हैं. विकसित भारत का क्या मतलब है? विकसित भारत का मतलब है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है हमने अपनी.
0: जी,
2: अभी हम लो मिडिल इनकम कंट्री के कैटेगरी में हैं. हमें हाई इनकम कंट्री बनना है 2047 तक, वो बनने के लिए चर्चा की है आपने जिन तबकों की, उनको आपको धीरे धीरे फाइनेंशियली इंक्लूसिव बनाना है, उनको एम्पावर
0: करना है. राइट राइट, थैंक यू सो वेरी मच शुभमा आदिति, बोथ ऑफ यू फॉर हैविंग जॉइंड अस एंड शेयर योर व्यूज ऑन द टॉपिक. थैंक यू सो वेरी मच.
2: थैंक यू.
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं और उनका जमीनी असर. इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक सुभमोय भट्टाचार्य जी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन. कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशित कुमार. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल News on AIR Official पर भी सुन सकते हैं. इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है AIR@nsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044.
4: In the special series, you are listening to a discussion on 12 years of the Modi government, key welfare schemes and their grassroots impact. Participants were Shubhamoy Bhattacharjee, economic analyst, and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Nishit Kumar. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.

0: और बस अब से कुछ ही देर बाद।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से विशेष का प्रसारण। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 101.8 MHz पर शाम के 7:45 होने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
2: जीवन सबर रहे,
3: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
4: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
3: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत स्वगणना अभियान का किया शुभारंभ। प्रदेशवासियों से अभियान को सफल बनाने में सहयोग का किया आह्वान। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, प्राकृतिक आपदाओं के दृष्टिगत सक्षम व प्रतिरोधी अधोसंरचना के निर्माण के लिए सरकार प्रयासरत। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अनुसार, स्थानीय निकाय व नगर निगम चुनावों में कांग्रेस की झूठी गारंटियों को जनता ने नकारा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, नगर निगमों के चुनाव में अपेक्षित परिणाम न मिलने के कारणों पर मंथन करेगी कांग्रेस। और गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय ग्रैपलिंग प्रतियोगिता में प्रदेश के खिलाड़ियों ने हासिल किए 38 पदक। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज लोकभवन शिमला से जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत स्वगणना अभियान का शुभारंभ किया। ये अभियान आज से 15 जून तक प्रदेश भर में संचालित किया जाएगा, जिसके माध्यम से नागरिक डिजिटल पोर्टल पर स्वयं अपनी जनगणना संबंधी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। राज्यपाल ने इस अवसर पर स्वयं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी स्वगणना प्रक्रिया पूर्ण कर प्रदेशवासियों को इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व में सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जनगणना लोकतंत्र की आधारशिला है और इसके माध्यम से प्राप्त आंकड़े देश व प्रदेश की नीतियों, विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण का आधार बनते हैं। राज्यपाल ने कहा कि जनगणना 2027 पहली बार डिजिटल माध्यम से आयोजित की जा रही है। उन्होंने प्रदेशवासियों से स्वगणना प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कर इस राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान देने का आह्वान किया।
1: जनगणना लोकतंत्र की आधारशिला है। इसके माध्यम से प्राप्त आंकड़े देश और प्रदेश की नीतियों, विकास कार्यों तथा कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण का आधार बनते हैं। हिमाचल प्रदेश हमारे देश का एक सुंदर पहाड़ी राज्य है, जो कि इस प्रक्रिया में विशेष महत्व रखता है। आपकी दी गई सही जानकारी न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश के विकास की दिशा तय करने में एक महत्वपूर्ण मदद करेगी। जनगणना 2027 पहली बार डिजिटल माध्यम से आयोजित की जा रही है। इस बार स्वगणना की सुविधा भी उपलब्ध है। सभी प्रदेशवासी जनगणना 2027 के इस महत्वपूर्ण कार्य में सक्रिय रूप से भाग लें।
0: इस दौरान हिमाचल प्रदेश जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक दीपशिखा शर्मा सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बीच राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज लोकभवन शिमला से ऑल इंडिया एनसीसी माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन दल को कुल्लू के माउंट देव टिब्बा के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देश भर से चुने गए 24 एनसीसी कैडेट्स का ये दल 6001 मीटर ऊंची चोटी फतह करने के लिए पीर पंजाल रेंज जाएगा। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि ऐसे अभियान युवाओं में साहस, अनुशासन और राष्ट्र प्रेम की भावना मजबूत करते हैं। कविंद्र गुप्ता ने सभी कैडेट्स को सुरक्षित और सफल आरोहण की शुभकामनाएं भी दी।
2: मुझे पूरा विश्वास है कि ये कैडेट जब इस सारे ट्रेनिंग से गुजरेंगे तो आने वाले समय में ये समाज के लिए, हमारे देश के लिए एक असेट बने, तो मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। इनकी जो मेहनत, इनकी जो लगन, जो इनकी तपस्या रहेगी, जो देशभक्ति की भावना, वो अपने आप में एक जो विकसित भारत 2047 का हमारा सपना उसको भी आगे बढ़ाएगी।
0: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती घटनाओं और इनसे उत्पन्न गंभीर खतरों के दृष्टिगत राज्य सरकार सक्षम व प्रतिरोधी अधोसंरचना के निर्माण की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस क्रम में सरकार ने 2688 करोड़ रुपए की हिमाचल प्रदेश रेजिलिएंट एक्शन फॉर डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रिकवरी HP रेडी परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य आपदा प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजना इस वर्ष जनवरी से नवंबर 2030 तक चलेगी। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्पन्न परिस्थितियों से पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश सर्वाधिक प्रभावित है और प्रदेश प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। पिछले 3 वर्षों में आई प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने राहत केंद्रित शासन से प्रतिरोधी केंद्रित प्रशासन की ओर बढ़ने पर भी बल दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में हुए स्थानीय निकाय व नगर निगम

0: चुनाव परिणामों में जनता ने भाजपा को अपना भरपूर समर्थन दिया है और कांग्रेस की करारी हार हुई है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि राज्य के लोग कांग्रेस की झूठी गारंटियों और मुख्यमंत्री की बात पर अब भरोसा नहीं कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री को स्थानीय निकाय व पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव परिणामों में अपनी हार का पहले से अंदेशा था, इसीलिए वे इन चुनावों को टालना चाहते थे। उन्होंने राज्य सरकार को साजिश करने के बजाय जनहित में निर्णय लेने और केंद्र सरकार द्वारा भेजी जा रही आर्थिक सहायता को पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने की सलाह भी दी। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, xhandle@AIRnews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ेगी और सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश के 4 में से 3 नगर निगमों में भाजपा की जीत को लेकर उन्होंने माना कि इन चुनावों में कांग्रेस को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन इसके कारणों पर पार्टी स्तर पर चर्चा और समीक्षा की जाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पालमपुर क्षेत्र में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कई क्षेत्रों में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को जनता का समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं।
1: ये चुनाव खास करके लोकल फैक्टर्स के ऊपर लड़े जाते हैं। मैं तो यही कह सकता हूँ कि मैं जो जनादेश मिला है वो वहाँ के लोगों को मिला है, स्थानीय निकाय के लोगों को मिला है, स्थानीय प्रधानों को मिला है, उप प्रधानों को मिला है, BDC मेंबर्स को मिला है, जिला परिषद मेंबर्स को मिला है। उस पर हम मिलकर आने वाले समय में कार्य करेंगे और हर जगहों पर जहाँ पे समितियां बननी है, जहाँ पे जिला परिषद बनना है, उस पर पूरा प्रयास भी किया जाएगा कमेटीज बनाने का और मिलकर हम फिर आगे कार्य आने वाले समय में करेंगे।
0: भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी कमलेश कुमार पंत ने शिमला में हिमाचल प्रदेश के कार्यकारी मुख्य सचिव के रूप में पदभार संभाल लिया है। वर्ष 1993 बैच के उत्तराखंड मूल के कमलेश कुमार पंत के पास प्रशासनिक कार्यों का लंबा अनुभव रहा है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्रमुख जिम्मेदारी होगी। के पंत ने कहा कि सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रशासनिक तंत्र को अधिक मजबूत और जवाबदेह बनाया जाएगा। उन्होंने भरोसा जताया कि सामूहिक प्रयासों से प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से हासिल किया जा सकेगा। असम के गुवाहाटी में 29 से 31 मई तक आयोजित 3 दिवसीय 19वीं राष्ट्रीय ग्रैपलिन प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल 38 पदकों पर कब्जा जमाया है। इनमें 12 स्वर्ण, 13 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल हैं। भारतीय ग्रैपलिंग संघ के अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार ने खिलाड़ियों की इस अद्भुत सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि ये सफलता राज्य के युवाओं की कड़ी मेहनत और प्रतिभा का प्रमाण है। पंचायती राज संस्थाओं के हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में जनादेश प्राप्त करने वाले हमीरपुर जिले की बगवाड़ा, गवारडू और कराह पंचायतों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने आज भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल से भेंट की। इस अवसर पर प्रोफेसर धूमल ने सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पंचायतें विकास की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को गति देने, जन समस्याओं के त्वरित समाधान और समाज के प्रत्येक वर्ग तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए समर्पित भाव से कार्य करना आवश्यक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत स्वगणना अभियान का किया शुभारंभ। प्रदेशवासियों से अभियान को सफल बनाने में सहयोग का किया आह्वान। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, प्राकृतिक आपदाओं के दृष्टिगत सक्षम व प्रतिरोधी अधोसंरचना के निर्माण के लिए सरकार प्रयासरत। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अनुसार स्थानीय निकाय व नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की झूठी गारंटियों को जनता ने नकारा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, नगर निगमों के चुनाव में अपेक्षित परिणाम न मिलने के कारणों पर मंथन करेगी कांग्रेस। और गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय ग्रैपलिंग प्रतियोगिता में प्रदेश के खिलाड़ियों ने हासिल किए 38 पदक। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर।

0: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM 101.8 MHz पर।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के ठीक 8 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपका रेडियो दोस्त अनूप। कि हार मत मानो, सफर लंबा सही, हर कदम सीख देगा कुछ नया करने की। जो गिरते हैं वही उठते हैं और दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं।

फिल्म संगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। जो डरते हैं वही हारते हैं, जो कोशिश करते हैं वही जीतते हैं, हर मुश्किल में छुपा है अवसर, बस दृष्टि बदलो और आगे बढ़ो।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। समय और परिश्रम ही सबसे बड़े गुरु हैं। जो लगन से मेहनत करता है उसका नाम सफलता के पन्नों में लिखा जाता है।

फिल्म संगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो।

फिल्म संगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं।

मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं।

इसी के साथ आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र FM बैंड 101.8 MHz पर रात्रि के 8:45 होने को है। अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमा के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
2: I am confident that this comprehensive agreement
3: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
0: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनेरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलिया रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
2: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है।
1: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बैनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
3: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
5: मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में ये 3,000 रुपए भी इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
3: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में

सुनिए आरजू फिल्म का गीत आशा भोसले मुबारक बेगम की आवाजों में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए थे।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने कोदे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

अभिनेत्री जिसने कई दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज किया, जिसने एक काली अंधेरी रात में चमकते चांद को देखकर ये बात कही थी।

का असली नाम था रशीद फातिमा। पैदा हुई 1 जून 1929 को कोलकाता में। नरगिस दत्त की माँ थी जद्दनबाई, जो उस जमाने की बहुत ही मशहूर शास्त्रीय गायिका थी। इसके अलावा वो नर्तकी, निर्देशक, संगीतकार और अभिनेत्री के तौर पर बहुत ही मशहूर थी। यहाँ तक कि भारतीय सिनेमा में संगीत देने वाली पहली महिला संगीतकार थी जद्दनबाई। हमेशा वो ये चाहती थी कि उनकी बेटी फातिमा रशीद अभिनय की दुनिया में जाए, लेकिन नरगिस का ऐसा कोई इरादा नहीं था। आपको बताते हैं कि सन 1935 में, जब फातिमा रशीद सिर्फ 6 बरस की थी, जद्दनबाई ने उन्हें अभिनय का मौका दिया। फिल्म थी तलाश-ए-हक। बतौर बाल कलाकार नरगिस के अभिनय की पारी शुरू हो गई।

जैसा कि हमने आपको बताया, नरगिस का अभिनय का कोई इरादा नहीं था। वो तो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन माँ ने जिद पकड़ रखी थी कि बेटी बनेगी तो केवल अभिनेत्री। एक दिन जद्दनबाई ने उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए भेजा जाने माने निर्माता निर्देशक महबूब खान के पास। चूंकि नरगिस का मन नहीं था एक्टिंग करने का, इसलिए उन्होंने बड़े बेमन से स्क्रीन टेस्ट दिया। बस यूं ही अपने डायलॉग्स बोल दिए, ये सोचकर यूं ही बोल दिए कि महबूब खान उन्हें फेल कर देंगे और वो डॉक्टर बनने के रास्ते पर चल पड़ेंगी। लेकिन उनका ये अंदाजा गलत निकला। महबूब खान ने अपनी फिल्म तकदीर के लिए नरगिस को नायिका चुन लिया। ये फिल्म सन 1943 में रिलीज हुई। इसके बाद सन 1945 में महबूब खान ने फिल्म हुमायूं में काम करने का मौका दिया नरगिस को। इसके 4 बरस बाद नरगिस का करियर चमक उठा। सन 1949 नरगिस की 2 फिल्में आईं। एक थी राज कपूर की फिल्म बरसात।

जैसा कि हमने कहा, सन 1949 में नरगिस का करियर चमक उठा। बरसात के अलावा इस साल आई दूसरी महत्वपूर्ण फिल्म थी अंदाज।

अंदाज में राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ नरगिस का प्रेम त्रिकोण था। नरगिस अपने अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींचने में कामयाब रही।

जिंदगी की राहों में कामयाबी और नाकामी जैसे बारी बारी से आती रहती हैं। सन 1949 में चमका नरगिस का तारा सन 1950 के बाद अचानक धूमिल पड़ने लग गया। एक के बाद एक उनकी कई फिल्में नाकाम होती रहीं। इन फिल्मों में खास थीं शीशा, बेवफा, आशियाना, अंबर, अनहोनी, शिकस्त, पापी और धुन। सन 1955 का जैसे नरगिस के करियर को इंतजार था, राज कपूर के साथ उनकी फिल्म आई श्री 420।

श्री 420 बेहद कामयाब रही। राज कपूर और नरगिस की जोड़ी बहुत पसंद की गई और उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में फिल्में एक साथ की। यहाँ आपको बता दें कि राज कपूर और नरगिस ने सबसे पहले सन 1948 में फिल्म वर्षा में काम किया था। इसके बाद बरसात, अंदाज, जान पहचान, प्यार और फिर आई आवारा।

आह के बाद धुन, पापी और जागते रहो राज कपूर और नरगिस की फिल्में हैं। इसके अलावा एक और फिल्म जो राज कपूर ने प्रोड्यूस नहीं की, सन 1956 में आई चोरी चोरी राज कपूर और नरगिस के अभिनय वाली आखिरी फिल्म थी।

0: प्यारा प्यारा।
1: राज कपूर की फिल्म जागते रहो में नरगिस ने अतिथि कलाकार के तौर पर भूमिका निभाई और इस फिल्म के आखिर में लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना नरगिस पर फिल्माया गया।

नरगिस की अभिनय यात्रा में हम आ पहुंचे थे सन 1956 तक। अब चलते हैं आगे, साल 1958, महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया।

महबूब खान और नरगिस का नाता पुराना रहा है और आज नरगिस की अभिनय यात्रा में हमने आपको बताया है कि किस तरह से बहुत कम उम्र में महबूब खान ने नरगिस से अपनी फिल्मों में काम करवाया था। जब अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म मदर इंडिया की तैयारी महबूब खान ने की तो जाहिर है नायिका नरगिस ही होनी थी, लेकिन नरगिस के जीवन में ये फिल्म अभिनय के अलावा दूसरे कारण से बड़ी महत्वपूर्ण बनी। फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग बिलीमोरा में चल रही थी। दृश्य था आग से नरगिस को बचाने का। नरगिस आग में घिर गई थी। उनके बेटे की भूमिका निभा रहे सुनील दत्त ने आग में कूदकर नरगिस की जान बचाई। वो सुनील दत्त से इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें अपना जीवन साथी बना लिया। 11 मार्च 1958 नरगिस और सुनील दत्त ने शादी कर

दिलचस्प बात यह है कि बलराज दत्त जब रेडियो में बतौर अनाउंसर काम करते थे तो उन्होंने अपने जमाने की नामी अभिनेत्री नरगिस का इंटरव्यू किया था। नरगिस को इंटरव्यू करने का इस नौजवान का अंदाज बड़ा पसंद आया था। बलराज दत्त फिल्मों में आए सुनील दत्त के नाम से। सुनील दत्त और नरगिस एक साथ पर्दे पर ज्यादा नजर नहीं आए। सन 1964 में आई फिल्म यादें जरूर ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों ने ऑन स्क्रीन अपनी मौजूदगी दिखाई। शादी के बाद सुनील दत्त और नरगिस के जीवन में तीन बच्चों की किलकारियां गूंजी, संजय दत्त, नम्रता और प्रिया दत्त। सुनील दत्त और नरगिस के जीवन का एक दिलचस्प किस्सा। फिल्म हमराज की शूटिंग चल रही थी। सुनील दत्त को इस फिल्म के कुछ दृश्यों में 110 बरस के बूढ़े का किरदार निभाना था। पंडरी जुकर ने उनका मेकअप कर लिया था और वो एक बूढ़े बाबा के भेष में सेट पर मौजूद थे। नरगिस सुनील दत्त से मिलने आई, सबसे पूछती रहीं दत्त साहब कहाँ हैं। वहीं मौजूद एक बूढ़े बाबा ने कहा, वो तो सेट पर आए ही नहीं हैं। नरगिस हार मानकर वहां से जाने लगी। इस बीच तकरीबन 2 घंटे बीत गए। मेकअप मैन पंडरी दादा ने धीरे से नरगिस को बताया कि जिस बूढ़े बाबा से आपने दत्त साहब के बारे में पूछा, असल में वही दत्त साहब हैं। इतने शानदार मेकअप को देखकर नरगिस दंग रह गईं। उन्होंने मेकअप मैन पंडरी दादा को अपनी कीमती घड़ी भेंट कर दी। सुनील दत्त और नरगिस का ऐसा था दिलचस्प जीवन। नरगिस भारतीय सिनेमा की ऐसी पहली अभिनेत्री थीं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। समाज सेवा के लिए उन्हें राज्यसभा में सदस्य के रूप में चुना गया था। फिल्म मदर इंडिया में बेमिसाल अदाकारी के लिए नरगिस को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार। शादी के बाद नरगिस ने खुद को अभिनय से दूर कर लिया। वो परिवार और समाज सेवा में लग गईं। लेकिन अनवर हुसैन और अख्तर हुसैन जो नरगिस के भाई थे, उनके जोर देने पर नरगिस ने सत्येन बोस की फिल्म रात और दिन साइन की। सन 1967 में आई रात और दिन। इस फिल्म के लिए नरगिस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।

सन 1958 कार्लोवी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में नरगिस को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार। 3 मई 1981 पैंक्रियाटिक कैंसर ने नरगिस के हिस्से की सांसें खत्म कर दी। एक अभिनेत्री इस दुनिया से विदा हो गई।

पैंक्रियाटिक कैंसर ने नरगिस को जब उनके चाहने वालों और उनके परिवार से छीना। नरगिस महज 51 साल की थी। सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली बात यह है कि वो अपने लाडले बेटे को रुपहले पर्दे पर बतौर हीरो आते नहीं देख पाई। संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी नरगिस दत्त के देहांत के बाद रिलीज हुई और संजय दत्त को इसका हमेशा से अफसोस रहेगा। सन 1982 में नरगिस की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई। ये फाउंडेशन कैंसर पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए आज तक काम कर रहा है। नरगिस एक जागरूक नागरिक, एक बेमिसाल अभिनेत्री, एक शानदार इंसान। अभिनेत्री नरगिस को हमारा विनम्र नमन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें थीं अभिनेत्री नरगिस की। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। संपादन आकांक्षा सिंह। प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है FM 101.8 MHz पर। रात्रि के ठीक 10 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

दोस्तों नमस्कार, लेकर हाजिर हुए हैं आपके लिए कहानी का सफर। जी हाँ बिल्कुल, आज का कार्यक्रम है एक ही शीर्षक से, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपके लिए लेकर आते हैं कोई एक फिल्म, बात करते हैं उसकी कहानी की, सुनवाते हैं आपको उसी फिल्म के प्यारे प्यारे से गीत। और इसी क्रम में हमारी आज की फिल्म है कृष। हर महान कहानी की एक शुरुआत होती है श्रोताओं, और आज हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे वैज्ञानिक से जिसने सितारों से दोस्ती की थी। एक ऐसा वैज्ञानिक जिसका नाम था रोहित मेहरा। रोहित मेहरा केवल एक वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि एक सपने देखने वाले इंसान थे। उनका विश्वास था कि ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। अपने शोध और प्रयोगों के माध्यम से उन्होंने ऐसे रहस्यों को छुआ जिनकी कल्पना भी आम इंसान नहीं कर सकता था। लेकिन विज्ञान की इस यात्रा में उन्होंने बहुत कुछ खोया भी था, और फिर उनकी विरासत पहुंची उनके बेटे तक। एक ऐसे बेटे तक जो पहाड़ की शांत वादियों में अपनी दादी के साथ रहता था। नाम था कृष्णा। कृष्णा को नहीं पता था कि उसके पिता कौन थे, ना ही उसे अपनी असाधारण शक्तियों के बारे में मालूम था। वो बस इतना जानता था कि वो बाकी लोगों जैसा नहीं है। वो हवा से बातें कर सकता था, पहाड़ों को लांग सकता था और मुश्किलों से खेल सकता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि किस्मत उसे एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा सुपर हीरो बनाने वाली है। और इसी सफर की शुरुआत होती है एक खूबसूरत मुलाकात से। ये थी कृष्णा और प्रिया की मुलाकात।

प्यार की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। प्रिया शहर लौट गई और पहली बार कृष्णा को एहसास हुआ कि दिल की दूरी पहाड़ों की दूरी से कहीं ज्यादा होती है। प्यार उसे अपने गांव से उठाकर सिंगापुर तक ले गया और यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य सामने आया। उसे पता चला कि उसके पिता रोहित मेहरा जीवित हैं। जिस पिता को वो खो चुका समझता था, वो आज भी उसके इंतजार में थे। सोचिए जरा, एक बेटा अपने पिता से वर्षों बाद मिलने जा रहा हो, उस पल की खुशी कैसी होगी?

लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी आसान नहीं थी। जहां अच्छाई होती है वहां बुराई भी होती है। एक लालची वैज्ञानिक जिसे शक्ति चाहिए थी, दुनिया पर राज करना था, और उसके रास्ते में खड़ा था एक साधारण सा दिखने वाला लड़का कृष्णा। अब समय था फैसला करने का। क्या वो अपनी शक्तियों को छुपाकर रखेगा या दुनिया की रक्षा करेगा? और उसी पल एक मुखौटा पहना गया, एक नई पहचान बनी और जन्म हुआ क्रिश का। जी हाँ, क्रिश उस समय आया। अब वो सिर्फ कृष्णा नहीं था, वो उम्मीद था, वो हौसला था, लाखों लोगों का विश्वास था। और अब आ चुका था वो पल जिसका इंतजार पूरी कहानी कर रही थी। एक तरफ था लालच, अहंकार और शक्ति का गलत इस्तेमाल, और दूसरी तरफ था साहस, प्यार और इंसानियत। क्रिश और विलेन के बीच भयंकर मुकाबला हुआ। हर वार के साथ ऐसा लग रहा था मानो अच्छाई और बुराई आमने सामने खड़ी हों। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब जब बुराई ने सिर उठाया तब तब अच्छाई ने उसे झुकाया है, और आखिरकार क्रिश ने अपनी ताकत, बुद्धि और हिम्मत से विलेन की सारी साजिशों को नाकाम कर दिया। बुराई हार गई और अच्छाई की जीत हुई।

लेकिन दोस्तों कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली जीत किसी दुश्मन को हराने में नहीं बल्कि अपने लोगों को वापस पाने में होती है। आज वर्षों बाद एक बेटे को उसका पिता मिल गया था, रोहित मेहरा, जो बरसों से अपने बेटे से दूर थे, आज गर्व से अपने सामने खड़े उस युवक को देख रहे थे जो अब सिर्फ उनका बेटा नहीं पूरी दुनिया का सुपर हीरो बन चुका था। सोचिए, एक पिता के लिए इससे बड़ा गर्व क्या होगा कि उसका बेटा उसकी अधूरी विरासत को आगे बढ़ा रहा है। रोहित मेहरा ने विज्ञान से दुनिया को रोशनी दी और क्रिश ने इंसानियत से। इस जीत के बाद क्रिश के पास दो रास्ते थे, एक सामान्य जिंदगी जीने का और दूसरा अपनी शक्तियों को समाज सेवा में लगाने का, और क्रिश ने दूसरा रास्ता चुना, क्योंकि असली नायक वही होता है जो अपनी खुशी से पहले दूसरों की सुरक्षा के बारे में सोचता है। उस दिन से जब भी कोई मुसीबत में होता, जब भी किसी को उम्मीद की जरूरत होती, जब भी अंधेरा बढ़ता, लोग एक नाम याद करते, क्रिश। लेकिन दोस्तों, क्रिश केवल फिल्म का एक किरदार नहीं है, वो एक सोच है, एक प्रेरणा है, एक संदेश है कि अगर आपके पास कोई प्रतिभा है तो उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए कीजिए। अगर आपके पास ताकत है तो कमजोर का सहारा बनिए, और अगर आपके पास ज्ञान है तो समाज को बेहतर बनाने में लगाइए, क्योंकि हर इंसान के भीतर एक छोटा सा क्रिश छुपा हुआ है। जरूरत होती है तो बस उसे पहचानने की।

0: तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, फिल्म थी क्रिश। और अब एक ही शीर्षक से इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अपनी रेडियो दोस्त सुषमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र FM 101.8 MHz पर।

आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है FM 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए रोमांटिक फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें।

कार्यक्रम चांदी रातें सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अनूप। बताने की बात तो नहीं पर बताने दोगे क्या, बताने की बात तो नहीं पर बताने दोगे क्या, इश्क बेपनाह है तुमसे मुझे हक जताने दोगे क्या।

हम आपकी हर चीज से प्यार कर लेंगे, आपकी हर बात पर एतबार कर लेंगे, बस एक बार कह दो कि तुम सिर्फ मेरे हो, हम जिंदगी भर आपका इंतजार कर लेंगे।

चांदनी रातें कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। दिल की हसरत जुबां पर आने लगी, तूने देखा और जिंदगी मुस्कुराने लगी। ये इश्क की इंतहा थी या दीवानगी मेरी, हर सूरत में सूरत तेरी नजर आने लगी।

कि कौन कहता है इश्क एक बार होता है, जितनी बार देखता हूं तुम्हें मुझे हर बार होता है।

बिन तेरे मेरी हर खुशी अधूरी है, बिन तेरे मेरी हर खुशी अधूरी है, फिर सोच तू मेरे लिए कितनी जरूरी है।

0: और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक रक्षा सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा

0: पर्यटन विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अय्यप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिसमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitarakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन नवी ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज के साथ तूफानी मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब हमारे आज के प्रसारण यहीं पर संपन्न होते हैं। प्रातः 5:55 पर पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।